सुप्रभात, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम एफ के 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी रांची है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया इंतजार करिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका यह कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और यह एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। यह दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम है खेती किसानी।
3: किसान कॉल सेंटर किसान भाई बहनों को सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर कृषि संबंधी सूचना टेलीफोन और मोबाइल के माध्यम से पहुंचाने का केंद्र है। इसे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य में भी यह सुविधा है। यह सुविधा देश के अन्य राज्यों के किसानों के साथ साथ झारखंड के किसानों के लिए भी है। किसान कॉल सेंटर त्रिस्तरीय संरचना के आधार पर कार्य करता है। प्रथम स्तर पर कृषि स्नातक हैं, इन्हें टेलीफोन कंप्यूटर तथा कॉल कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त रहती है। जब कोई किसान प्रश्न पूछते हैं तो ये व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर में खोजते हैं और जो भी संग्रहित उत्तर और अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसानों के प्रश्न का जवाब देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्तर एक के व्यक्ति किसानों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तब यह प्रश्न कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के पास भेज दिया जाता है, जो किसानों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह स्तर दो की संरचना है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो प्रबंधन और नीति से संबंधित होते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्तर तीन के पदाधिकारी देते हैं। नोडल केंद्र का यह दायित्व है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर किसानों को 72 घंटे के अंदर मिल जाए। किसान कॉल सेंटर से किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए टेलीफोन संख्या 1551 डायल करना होगा। किसान भाई, यदि आप किसान कॉल सेंटर का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीफोन संख्या 1551 डायल करना होगा। उसके बाद मन में जो भी प्रश्न है वे इस प्रश्न को रिसीवर उठाने वाले व्यक्ति से पूछे। वह व्यक्ति आपके इन प्रश्नों का जवाब देगा, उत्तर देगा। 1551 पर मोबाइल से भी प्रश्न किया जा सकता है। 1551 पर किसान भाई सिर्फ अपने लैंडलाइन फोन से ही बात कर सकते हैं। मोबाइल से उन्हें बात करने के लिए 1800-180-1551 पर डायल करना होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन ले किसान भाइयों, अगर आप 1551 पर फोन करते हैं तो सिर्फ इस पर लैंडलाइन से ही बात होगी, और यदि आप मोबाइल से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मोबाइल से प्रश्न पूछने के लिए आपको 1800-180-1551 पर डायल करना होगा। झारखंड राज्य के लिए किसान कॉल सेंटर वर्तमान में पटना से कार्य कर रहा है। जब कोई किसान इस पर कॉल करते हैं तो उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड आवाज के लिए निर्देशानुसार 2 दबाना होगा, तब उनका कॉल झारखंड राज्य को सेवा देने वाले व्यक्ति उठाएंगे। संबंधित किसान भाई बहनों को यदि और भी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी निश्चित रूप से मिल जाएगा। किसान कॉल सेंटर के व्यक्ति जब फोन उठाते हैं तो किसान भाई बहनों से उन्हें कुछ आवश्यक जानकारी मांगते हैं। किसान भाई बहनों को यह जानकारी अवश्य देनी चाहिए क्योंकि इसका डाटाबेस बनता है और इस बात का भी आंकड़ा रखता है कि किसानों को प्रश्नों की क्या जानकारी मिली। किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कार्य करता है। इस अवधि के बाद भी यदि किसान कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वे अपना प्रश्न रिकॉर्ड करा सकते हैं, जिनका जवाब उन्हें बाद में मिल जाता है।
0: किसान कॉल सेंटर। श्रोताओं, अब सुनिए आज का चिंतन।

सदियों से भारतवर्ष की पावन धरा पर गुरु और शिष्य का स्नेहिल संबंध रहा है। सनातन परंपरा में गुरु अपनी सदाशयता, सद्भावना और आत्मीयता के विलक्षण स्वरूप से हर एक मानव मन में चरित्र निर्माण, आपसी प्रेम और भाईचारे का बीज बोता रहा है। सशरीर होते हुए भी गुरु तत्व है, संसार की सबसे पवित्र ईश्वरीय देन है। वो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के अंध तमस को दूर कर उसे दिव्य प्रकाश देता है। गुरु के बिना मनुष्य का जीवन बिना पतवार की नौका के समान होता है। गुरु के बिना ज्ञान मिलना कठिन है। गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना सत्य को पहचानना असंभव है। गुरु बिना मन के विकारों का मिटना मुश्किल है। लौकिक जगत में महापथ का पथिक गुरु धार्मिकता का प्रथम पुरुष होता है, जो अपने दिव्य ज्ञान से शिष्य के अंतःकरण के तारों को झंकृत कर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरु शिष्य की हर उलझीवी समस्या का समाधान करता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ उपदेश दिया, बल्कि हर उस वक्त उन्हें उचित निर्देश दिया जब जब वे दिग्भ्रमित नजर आए। गुरु के मुख से निकला हर शब्द ब्रह्म होता है, जो सत्य की गहराई से निकलता है। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्रों में गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वो शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वो शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु साक्षात महेश्वर भी हैं क्योंकि वो शिष्य के सभी दोषों का संहार करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि गुरु के प्राण शिष्यों में और शिष्यों के प्राण गुरु में बसते हैं। गुरु मानव चेतना के विकास के हर एक पहलू को जागृत करता है। शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। एक संबुद्ध गुरु को यदि एक चेतनावान शिष्य मिल जाए तो वो अपने परम संबोधि के विस्फोट से नए युग का निर्माण कर सकता है। शिष्य के सदा के बंद द्वार खोल सकता है। उसके जीवन में एक नया संगीत भर सकता है। आज के समय में एक बार पुनः गुरु शिष्य परंपरा की अनंत श्रृंखला को कायम रखने की महती आवश्यकता है। यदि सही गुरु मिल जाए तो जीवन की दिशा सुधारी जा सकती है।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

साथियों, अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। अब आइए हम आप सभी को जानकारी दे दें श्रेष्ठ कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत और 7 हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। स्वास्थ्य चर्चा ये कार्यक्रम होगा 7:05 पर। आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल से ली गई भेंट वार्ता, मोबाइल पर रील का चस्का और सेहत पर इसका प्रभाव। बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। सुबह सुरीली ये प्रोग्राम होगा 7:15 से। आप सुनेंगे पुराने फिल्मों के गाने। गांधी कथा आप सुनेंगे 7:45 पर और 8 से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। हम अपने केंद्र रांची से आप सभी को सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। 8:45 पर लोक रंग कार्यक्रम होगा, आप सुनेंगे संथाली लोकगीत और 9 से होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 9:23 से। आज आपको सुनवाए जाएंगे सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप, कलाकार होंगे चिर सत्य ठाकुर। उर्दू प्रोग्राम आप सुनेंगे 10 से 10:30 पर जोहर रांची और 11 आप सुनेंगे स्वर यात्रा के 90 वर्ष।

गृह लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 12 बजे से, और 12:30 बजे यानी 12:23 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और 1 बजे से आप से हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण सुन सकते हैं। साथियों, आगे के कार्यक्रम हम समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल आप इस वाद्य वादन का आनंद लीजिए और इंतजार करिए समाचार के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का यह सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे समाचार, ये आकाशवाणी रांची है। और अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए मोबाइल पर रील का चस्का और सेहत पर प्रभाव।
3: नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय मोबाइल का है। मोबाइल के सहारे हम दिन भर चिपके रहते हैं, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, बच्चे हों या फिर अन्य वर्ग के लोग हों। हर समय मोबाइल से चिपके रहना, स्क्रॉल करते रहना, रील का चस्का उन्हें लगा हुआ है और तरह तरह की जानकारियां हासिल करने की कोशिश भी करते हैं, तो रील देखने के चक्कर में समय बीत जाता है, मोबाइल पर आँख की नज़र रहती है और ऐसे में समय गुजरता जाता है, अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है, सर में दर्द, आँखों में जलन और कभी कभी तो हम अवसाद के भी शिकार हो जाते हैं। तो आखिर ये रील देखने का चस्का क्यों पड़ गया है और इसका क्या नुकसान है, हमारे सेहत पर किस प्रकार ये प्रभाव दिखला रहा है और हमारे समय को ये कितना बर्बाद कर रहा है और कैसे इनसे हम बच पाए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल। डॉक्टर साहब स्वागत है।
4: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब। रील देखने का चस्का लोगों में पड़ा हुआ है, छोटे बच्चे हो, नौजवान साथी हो या फिर हमारे बुजुर्ग साथी हो, दिन भर रील चलता रहता है, क्या कारण है?
4: बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, कोई ऐसा उम्र के लोग नहीं है जो रील को नहीं देखते हैं, स्क्रॉल नहीं करते हैं, उससे मजा नहीं लेते हैं। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 10 साल के लोग, 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के उम्र तक के लोग इसका जनरली सेवन करते हैं और उसमें ये रिसर्च हुआ है और उसके आधार पर ये देखा गया है कि इन लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहिए वो है कि लोगों में रील का चस्का क्यों लगता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि रील हम लोग मोबाइल के द्वारा देखते हैं और कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का चस्का तभी लगता है जब वो चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव हो, यानी वो चीज़ जो रील बनाया जाता है उसमें जो वीडियो बनाया जाता है या जो कुछ दिखाया जाता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि जो मुझे उसको देखने में मन लगता है, उसे देखने में मज़ा आता है, इसके कारण से हम उसको देखना पसंद करते हैं और एक रील को देखने के बाद फिर मन करता है कि दूसरा रील हम देखें और फिर इस तरह से हम देखते चले जाते हैं और इस तरह से हमारी समय बर्बाद होती जाती है। एक दूसरा फैक्टर है इसके कारण से इसका चस्का लगता है, ये जनरली जिसके पास समय होता है वो ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। मेरा कहने का मतलब है सब लोग देखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित वो होते हैं जिसके पास ज़्यादा समय होती है और क्रिएटिविटी उसमें जिसमें कम होती है, वो लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ये जानना जरूरी है कि लोग रील का चस्का, मतलब रील क्यों बनाते हैं। रील बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें एक अलग तरह की एक चीज़ें होती है जिसमें खुद को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना है, हमारा फॉलोअर बनाना है और अपना जो एक्टिविटी है उसके लोगों को दिखाना है और कभी कभी तो ये एक इनकम का सोर्स भी बन जाती है और इस तरह से लोग रील एक के बाद एक बनाते रहते हैं और लोगों को इससे इसके साइट पर भेजते रहते हैं, उसके मोबाइल में भेजते रहते हैं, जिसके कारण से लोगों में रील की आदत लग जाती है।
3: जी, तो रील का चस्का लोगों को अपना गुलाम बना रहा है, मोबाइल पर उंगलियां नाचती रहती हैं लेकिन उन्हें यह भान नहीं होता है कि समय कितना निकल गया।
4: बिल्कुल,
3: और समय निकलने के साथ साथ मन मस्तिष्क को कितना प्रभावित कर रहा है, तो क्या क्या नुकसान हो जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हमें तो ये भी सुनने में आता है कि आंखों में जलन, सर का भारी होना, सही से नींद नहीं ले पाना, रात को देर तक मोबाइल चलाना और रील देखते रहना।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज़ें आपने कहा और यानी रील के कारण से हमारे सेहत पर बुरी असर पड़ता है, चाहे हमारी शारीरिक सेहत हो, शारीरिक हेल्थ हो या मानसिक हेल्थ हो, दोनों पर बुरा असर पड़ता है। सबसे कॉमन चीज़ है रील के देखने वालों के चस्का, रील का चस्के वाले लोग को, रील देखने वाले को के साथ है कि इसका एडिक्शन हो जाती है, यानी अगर उसे रील नहीं मिले तो उसके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें होती है, जैसे हम सभी जानते हैं कि एडिक्शन में साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है लोगों को और एक फिजिकल डिपेंडेंस होता है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब है यदि रील उसे नहीं मिले तो वो बहुत परेशान हो जाता है, वो खोजता रहता है कि किस तरह का फिर रील मिले और फिर उसको फिर देखने की कोशिश करता है, यानी एक साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाता है। फिजिकल डिपेंडेंस की बात अगर करें तो अगर नहीं मिलने के कारण से उनमें नींद की कमी आना, मतलब अनिद्रा जो कह सकते हैं, इरिटेशन होना, भूख नहीं लगना, सिर दर्द होना, इत्यादि लक्षण उसमें मिलने लगता है। और जैसे ही रील फिर उसे मिलता है, मतलब इस तरह की वीडियो उसे मिलता है, इस तरह का मटेरियल मिलता है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो एडिक्शन एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये रील के साथ जो पैदा होती है, जिसको रील का एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन के का एक पार्ट है, जो उसको हम रील एडिक्शन कहते हैं। इसके कारण से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है, यानी अगर कोई भी आदमी इसमें फंस जाए, रील का चस्का लग जाए, तो जो शारीरिक और मानसिक विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसमें समय की भी बहुत बर्बादी होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि हमारा समय कैसे ही आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा गुजर गया है, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव होता है, उसका बातें इतनी अच्छी, उसको वीडियो और जो ऑडियो है इतना अच्छा लगता है कि समय पता नहीं चलता है और हमारी समय

0: समय की बर्बादी होती है। एक दूसरी चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी क्रिएटिविटी का लॉस होता है, मतलब हमारे दिमाग में जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो नहीं आ पाती है, क्योंकि अगर हम समय बर्बाद कर देंगे ये सब सारी चीज़ों में तो हम क्रिएटिव कैसे हो पाएंगे। तो क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है, लोगों में अच्छे काम नहीं कर पाती हैं। और जैसा मैं बताया कि अगर इसकी एडिक्शन हो जाती है तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो डेवलप होता है वो है नींद की कमी हो जाना, सिर में दर्द हो जाना, एंजाइटी डेवलप करना, मेंटल स्ट्रेस होना, इरिटेशन होना, कभी कभी गुस्सा आना, और जैसा आपने बताया है कि कभी कभी अवसाद यानी डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं इसके कारण से, रेगुलर यूज करने के कारण से जब एडिक्शन लोग में कन्वर्ट हो जाता है ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सेहत में नुकसान जो पहुंचती है ये सब चीज़ें हैं। और सब एक और चीज़ें हैं कि जब हम रील का एडिक्ट हो जाते हैं इसके कारण से हमारे रूटीन पर बुरा ही असर पड़ता है, यानी जो हम टाइम पर सो नहीं पाते हैं, टाइम पर खा नहीं पाते हैं, टाइम पर अपना रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, अपने घर का काम नहीं कर पाते हैं, ऑफिस का काम नहीं कर पाते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, ये सब सारी चीज़ें प्रभावित होती है, यानी मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके कारण से हमारी पारिवारिक और सामाजिक रिलेशनशिप में भी कमी आता है, क्योंकि हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। तो इन सारी चीज़ें नुकसान की कैटेगरी में आता है इसके सेवन, रील के सेवन करने से।
1: जी, कैसे हम बाहर हों इस रील के चस्के से, और जो इतना समय हम इस पर लगाते हैं उस समय को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में हम लगाएं तो हमारा भी फायदा होगा और देश समाज को भी लाभ होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मोबाइल का यूज करें, मिसयूज नहीं करें, मोबाइल को पॉजिटिवली यूज करें, जो ज़रूरत है उतना ही यूज करें, अगर मोबाइल की ज़रूरत नहीं है तो उसका यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट नाइट मोबाइल को ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आप मोबाइल आपका खुला रहेगा तो आप परेशान होंगे। रील एवं मोबाइल का एडिक्शन से बचें, जो रेगुलर एट्रैक्टिव वीडियो को कम से कम देखें, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो बार बार मन करेगा देखने के लिए, तो ऐसा नहीं करें। रूटीन को अपना मेंटेन करें, यानी टाइम पर सोना, खाना पीना, प्रॉपर डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना, पानी प्रचुर मात्रा में पीना, और रूटीन को मेंटेन में जैसे योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, ये सब सारे रूटीन वे में पूरा करना चाहिए। फैमिली और फ्रेंड को भी टाइम देने की ज़रूरत है, उसके साथ इंटरेक्शन को कम नहीं होने दें, समय को बर्बाद कभी नहीं करें, खुद को क्रिएटिव बनाएं, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, यानी मनोचिकित्सक की या और कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो उनकी सलाह जरूर लें अगर आप इसका एडिक्ट हो गए हैं तो अगर ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत हद तक आप इससे बच सकते हैं।
1: लोगों से मिलिए, दोस्त बनाइए और घर परिवार को पर्याप्त समय दीजिए। यदि आप ज़्यादा समय मोबाइल में लगाएंगे तो आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, घर परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो क्या कहेंगे लोगों को, मिलते जुलते रहिए, दोस्त बनाइए और कोशिश कीजिए कि मोबाइल के सहारे ना मिलकर उनसे प्रत्यक्ष जाकर मुलाकात करें।
0: हेल्दी जो रिलेशनशिप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है अपने दोस्तों और फैमिली के बीच में, और अपनी रूटीन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। खुशहाल रहने के लिए ये सब चीज़ से, रील जैसी और मोबाइल जैसी चीज़ जो मिसयूज ऑफ मोबाइल से बचने की ज़रूरत है। यदि ये सब चीज़ हम करते हैं तो अपने आप को बहुत खुशहाल रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं, एवं दूसरे को भी खुद प्रभावित कर सकते हैं, उसको भी सीख मिल सकती है अगर हम ठीक रहते हैं तो।
1: जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप मोबाइल का यूज करें और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक समय घर परिवार को दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन कुमार बर्णवाल, प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ रांची, आज आप इस कार्यक्रम में आए। और कम से कम मोबाइल का यूज करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज करें, और रील का जहाँ चस्का लगता है तो समय की बर्बादी और बहुत सारी बीमारियों का आमंत्रण। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे मोबाइल पर रील का चस्का और सेहत पर प्रभाव, बता रहे थे डॉक्टर पवन कुमार बर्णवाल, बातचीत कर रहे थे संजय कुमार लाल। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम है सुबह सुरेली।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आखिरी खत ये थी फिल्म जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे। और अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर मां की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: साथियों, इसी के साथ सुबह सुरीली प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी कथा।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की, वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

1915 में अफ्रीका से भारत वापसी के उपरांत पूना में श्री गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के उपरांत गांधी जी शांति निकेतन गए। उनका विचार वहां कुछ समय रहने का था, परंतु एक हफ्ते ही हुए थे कि श्री गोखले के देहावसान की सूचना मिली। शोक में डूबे गांधी जी ने पत्नी और मगनलाल गांधी को साथ ले पूना के लिए प्रस्थान किया। इसके लिए वे वर्धमान पहुंचे।

प्रस्तुत है वर्धमान से आरंभ पूना की उनकी यात्रा का विवरण स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। वर्धमान पहुंचकर हमें तीसरे दर्जे का टिकट लेना था। उसे लेने में परेशानी हुई। जवाब मिला, तीसरे दर्जे के यात्री को टिकट पहले से नहीं दिया जाता। मैं स्टेशन मास्टर से मिलने गया, उनके पास मुझे कौन जाने देता। किसी ने दया करके स्टेशन मास्टर को दिखा दिया। मैं वहां पहुंचा, उनसे भी उपयुक्त उत्तर मिला। खिड़की खुलने पर टिकट लेने गया, पर टिकट आसानी से मिलने वाला न था। बलवान यात्री एक के बाद एक घुसते जाते और मुझ जैसों को पीछे हटाते जाते। आखिर टिकट मिला, गाड़ी आई, उसमें भी जो बलवान थे वे घुस गए, बैठे हुए और चढ़ने वालों के बीच गाली गलौज और धक्का मुक्की शुरू हुई। इसमें हिस्सा लेना मेरे लिए संभव न था। हम तीनों इधर से उधर चक्कर काटते रहे, सब ओर से एक ही जवाब मिलता था, यहां जगह नहीं है। मैं गार्ड के पास गया, उसने कहा जगह मिले तो बैठो, नहीं तो दूसरी ट्रेन में जाना। मैंने नम्रतापूर्वक कहा, लेकिन मुझे जरूरी काम है। यह सुनने के लिए गार्ड के पास समय नहीं था। मैं हारा, मगन लाल से कहा जहां जगह मिले बैठ जाओ। पत्नी को लेकर मैं तीसरे दर्जे के टिकट से डेढ़े दर्जे में घुसा। गार्ड ने मुझे उसमें जाते देख लिया था। आसनसोल स्टेशन पर गार्ड ज्यादा किराए के पैसे लेने आया। मैंने कहा मुझे जगह बताना आपका धर्म था, जगह न मिलने के कारण मैं इसमें बैठा हूं। आप मुझे तीसरे दर्जे में जगह दिलाइए, मैं उसमें जाने को तैयार हूं। गार्ड साहब बोले, मुझसे बहस मत कीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, पैसे न देने हों तो गाड़ी से उतरना पड़ेगा। मुझे तो किसी भी तरह पूना पहुंचना था, गार्ड से लड़ने की मेरी हिम्मत न थी। मैंने पैसा चुका दिया, उसने ठेठ पूना तक का डेढ़ा भाड़ा लिया। यह अन्याय मुझे अखर गया। सवेरे मुगलसराय स्टेशन आया। मुगलाल ने तीसरे दर्जे में जगह कर ली थी। मुगलसराय में मैंने तीसरे दर्जे में गया। टिकट कलेक्टर को मैंने वस्तु स्थिति की जानकारी दी और उससे इस बात का प्रमाण पत्र मांगा कि मैं तीसरे दर्जे में चला आया हूं। उसने देने से इनकार किया। मैंने अधिक किराया वापस प्राप्त करने के लिए रेलवे के उच्च अधिकारी को पत्र लिखा। उनकी ओर से इस आशय का उत्तर मिला, प्रमाण पत्र के बिना अतिरिक्त किराया लौटाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, पर आपको मामले में हम लौटा दे रहे हैं। वर्धमान से मुगलसराय तक का डेढ़ा किराया वापस नहीं किया जा सकता। इसके बाद के तीसरे दर्जे की यात्रा के मेरे अनुभव तो इतने हैं कि उनकी एक पुस्तक बन जाए। शारीरिक असमर्थता के कारण तीसरे दर्जे की मेरी यात्रा बंद हो गई। यह बात मुझे सदा खटकी है और आगे भी खटकती रहेगी। तीसरे दर्जे की यात्रा में अधिकारियों की मनमानी से उत्पन्न होने वाली विडंबना तो रहती ही है, पर तीसरे दर्जे में बैठने वाले कई यात्रियों का उजड़पन, उनकी स्वार्थ बुद्धि और उनका अज्ञान भी कुछ कम नहीं होता।

दुख तो यह है कि अक्सर यात्री यह जानते ही नहीं कि वे अपशिष्टता कर रहे हैं, अथवा गंदगी फैला रहे हैं, अथवा अपना ही मतलब खोज रहे हैं। वे जो करते हैं वह उन्हें स्वाभाविक मालूम होता है। हम सभ्य और पढ़े लिखे लोगों ने उनकी कभी चिंता ही नहीं की है। थके मादे हम कल्याण जंक्शन पहुंचे, नहाने की तैयारी की। मंगनलाल और मैंने स्टेशन के नल से पानी लेकर स्नान किया। पत्नी के लिए कुछ तजवीज कर रहा था कि इतने में भारत समाज के एक भाई कॉल ने हमें पहचान लिया। वे भी पूना जा रहे थे। उन्होंने पत्नी को दूसरे दर्जे के स्नान गृह में स्नान कराने के लिए ले जाने की बात कही। इस सौजन्य को स्वीकार करने में मुझे संकोच हुआ। पत्नी को दूसरे दर्जे के स्नान घर का उपयोग करने का अधिकार नहीं था, इसे मैं जानता था। सत्य के पुजारी को यह भी शोभा नहीं देता। पत्नी का वहां जाने का कोई आग्रह नहीं था, पर पति के मोह रूपी सुवर्ण पात्र ने सत्य को ढांक लिया। पूना पहुंचने पर गोखले की उत्तर क्रिया आदि संपन्न करके हम सब इस प्रश्न की चर्चा में लग गए कि अब सोसाइटी किस तरह चलाई जाए और मुझे उसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। मुझ पर भारी बोझ आ पड़ा। गोखले के जीते जी मेरे लिए सोसाइटी में दाखिल होने का प्रयत्न करना आवश्यक न था। मुझे केवल गोखले की आज्ञा और इच्छा के वश होना था। यह स्थिति मुझे पसंद थी। भारतवर्ष के तूफानी समुद्र में कूदते समय मुझे एक कर्णधार की आवश्यकता थी और गोखले के समान कर्णधार की छाया में मैं सुरक्षित था। अब मैं अनुभव किया कि मुझे सोसाइटी में भर्ती होने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। मुझे यह लगा कि गोखले की आत्मा यही चाहेगी। इस समय सोसाइटी के लगभग सभी सदस्य पूना में उपस्थित थे। मैंने उन्हें मनाना और मेरे विषय में जो डर था उसे दूर करना शुरू किया, किंतु मैंने देखा कि सदस्यों में मतभेद था। एक राय मुझे दाखिल करने के पक्ष में थी, दूसरी दृढ़तापूर्वक मेरे प्रवेश का विरोध करती थी। हमारी चर्चा मीठी थी और केवल सिद्धांतों का अनुसरण करने वाली थी। विरुद्ध पक्ष वालों को लगा कि अनेक विषयों में मेरे और उनके विचारों के बीच उत्तर दक्षिण का अंतर था। इससे भी अधिक उन्हें यह लगा कि जिन ध्येयों को ध्यान में रखकर गोखले ने सोसाइटी की रचना की थी, मेरे सोसाइटी में रहने से उन ध्येयों के ही खतरे में पड़ जाने की पूरी संभावना थी। स्वभावतः यह उन्हें असहाय प्रतीत हुआ। लंबी चर्चा के बाद हम एक दूसरे से अलग हुए। सदस्यों ने अंतिम निर्णय की बात दूसरी सभा तक उठा रखी। घर लौटते हुए मैं विचारों के भंवर में पड़ गया। बहुमत से दाखिल होने का प्रसंग आने पर क्या वैसा करना मेरे लिए इष्ट होगा? क्या वह गोखले के प्रति मेरी वफादारी मानी जाएगी? अगर मेरे विरुद्ध मत प्रकट हो तो क्या उस दशा में मैं सोसाइटी की स्थिति को नाजुक बनाने का निमित्त न बनूंगा? मैंने स्पष्ट देखा कि जब तक सोसाइटी के सदस्यों में मुझे दाखिल करने के बारे में मतभेद रहे, तब तक स्वयं मुझे को दाखिल होने का आग्रह छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार विरोधी पक्ष को नाजुक स्थिति में पड़ने से बचा लेना चाहिए। उसी में सोसाइटी और गोखले के प्रति मेरी वफादारी है। ज्यों ही मेरी अंतरात्मा में इस निर्णय का उदय हुआ, त्यों ही मैंने शास्त्री को पत्र लिखा कि वे मेरे प्रवेश के विषय में सभा बुलाए ही नहीं। विरोध करने वालों को मेरा यह निश्चय बहुत पसंद आया। वे धर्म संकट से बच गए। उनके और मेरे बीच की स्नेह गांठ अधिक दृढ़ हो गई और सोसाइटी में प्रवेश पाने की अपनी अर्जी को वापस लेकर मैं सोसाइटी का सच्चा सदस्य बना।

श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से प्रतिज्ञा करवाई थी कि उन्हें एक वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। इस प्रकार वे देश से पूर्ण परिचित हो सकेंगे। तब तक किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर विचार बनाने या प्रकट करने से बचना था। गांधी जी ने उनके निर्देशों का पालन किया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति थी गौरव शिखर राय की और वाचन स्वर था अवनीश कुमार सिन्हा का।
1: आप सुन रहे थे गांधी कथा। और अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के

0: सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में

0: यह सूचकांक 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरूआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon.
4: Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
5: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
4: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
6: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
4: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
6: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
4: Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions made by the Monetary Policy Committee at 10 a.m. in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. Here is more from our correspondent.
0: The government has set consumer price index plus inflation target at 4% with upper tolerance of 6% and a lower tolerance level of 2% for the central bank. The CPI rose slightly to 3.48% in April, mainly due to higher prices of gold and silver jewelry as well as some kitchen items. As the CPI is within the tolerance level, economists are expecting that the key interest rate will be kept unchanged at 5.25%. It also says that the central bank will adopt a cautious approach in view of Asia conflict posing challenges for the inflation as well as economic growth. Jeevan Bhavsar, Akashwani News, Mumbai.
4: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the passing of Dr. Kashyap. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training has informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkanth Mishra as Executive Director, World Bank Headquarters, Washington, D.C., for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training has informed that the tenure of Parameswaram Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The NDA Alliance in Andhra Pradesh has decided to allot 3 of the 4 vacant Rajya Sabha seats to the Telugu Desam Party TDP and 1 seat to the Janasena Party. The decision was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu after a meeting of NDA Alliance partners held at its camp office in Amravati the previous night. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with the heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the U.S. does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. The Russian president also said that Russia proposed to India to work jointly on manufacturing the fifth generation Su-57 fighter jet. Putin added that his country is ready to provide India with critical technologies for major defense platforms and weapons. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Program to build awareness to save life on Earth. A report.
3: The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Minister of State, Kirti Vardhan Singh, will participate in a tree plantation program at Namo Oxygen Park at Maidangadi in the national capital under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. Several union ministers, chief ministers, ministers, MPs, MLAs will participate in World Environment Day events at the state level. The day raises awareness, mobilizes action, and promotes environmental sustainability. Through campaigns, events, and initiatives, the day inspires individuals and communities to make changes, fostering a sense of urgency and addressing environmental challenges for a sustainable future. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has extended greetings to the citizens on World Environment Day. In a social media post, Dr. Jaishankar encouraged everyone to work towards a greener, cleaner and more sustainable future. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav also urged the countrymen to renew their pledge to remain inspired by nature for the climate and future. Union Minister Dr. Jitendra Singh will inaugurate 2-day Lavender Festival at Bhadarwa in Jammu and Kashmir tomorrow under the theme Lavender Goes Global. The 4th Lavender Festival is being held at Government Degree College, Bhadarwa in Dora district on June 6 and 7. The festival will witness enthusiastic participation of scientists, startups, aroma industries, entrepreneurs, policymakers, agribusiness stakeholders, students, progressive farmers and representatives of fragrance and wellness companies from across the country. A 2-day national workshop on seafood exports will begin in Visakhapatnam today to discuss ways to increase India's seafood exports and strengthen the sector across the country. The workshop will focus on improving seafood exports through better infrastructure, value addition, certification, traceability and policy support. Discussions will also be held on increasing the participation of startups and small businesses in the export sector. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. According to the Met Department, Arunachal Pradesh is expected to witness thunderstorms and lightning today. Moving on to sports, India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final.

0: collaboration in pharmaceuticals and critical minerals. India-Venezuela vow deeper energy ties, writes the Tribune. As a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. In its editorial titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under 18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। भाजपा की पहली सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक, झारखंड में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना। और धनबाद में आज से झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का होगा चयन। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। हालांकि इस सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नवाचार आधारित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। विभाग के सचिव ने बताया कि इनोवेटिव स्कीमों की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत चयन के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट से भोजपुरी, मगही

0: और मैथिली को हटाए जाने के मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मंत्रियों के बीच समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार की आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि सरकार इस मामले में एक मत नहीं दिख रही है।
1: तो यहाँ पर सरकार में एक मंत्री कुछ कह रहा, दूसरा मंत्री कुछ और कह रहा है। भाषा का विवाद झारखंड में खड़ा हो रखा है, या विवाद जानबूझकर के मूल जो मुद्दे है उसको भटकाने के लिए तैयार किया गया। आप किसी भी स्टेट में लैंग्वेज पॉलिटिक्स देखते, कोई फैसला लिया गया है तो उसके पहले प्रॉपर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है, जिसमें प्रोफेसर होते हैं, लैंग्वेज के जानकार होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उसके बाद उस कमेटी के फैसले के दम पर कोई भी फैसला लिया जाता है।
0: वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद जताई है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र मुख्यमंत्री को सौंपेगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
2: कमिटी के प्रतिवेदन के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी, तो हमें लगता है कि अभी प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया अभी जब तक खत्म न हो तब तक भारतीय जनता पार्टी विधवा विलाप करना छोड़ दे। जांच के पहले किसी को अपराधी घोषित कर देना, प्रक्रिया चल रही हो उस पर बयान दे देना और फिर बाद में बैकफुट पे आ जाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है।
0: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए रांची में 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां बीएलओ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को गंभीरता से कैंप चलाने, शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने बूथ पर जाकर मैपिंग जरूर कराएं। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ईसीआई नेट के उपयोग को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण के विभिन्न चरणों में ईसीआई नेट के प्रभावी उपयोग और डेटा प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की। आयोग के विशेषज्ञों ने प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय की योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है।
3: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड के विभिन्न जिलों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर वन प्रमंडल और एलिफेंट प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से दो मुहानी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। दिल्ली में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटना के बाद बोकारो जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
4: पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा, दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें रख दी गई हैं जिससे जाम हो गया है। इमरजेंसी एग्जिट पे ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ सारी सामान रख देते हैं। मैंने इसका स्वयं देखा, महसूस किया है कि जो इमरजेंसी फायर एग्जिट है वहीं पर सामान रखे हुए हैं। फायर सेफ्टी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी इस जाँच टीम में रहेंगे।
0: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि इनके पास से हथियार और

0: और कारतूस बरामद किए गए हैं।
1: इन लोगों को पकड़ा गया, इसमें दो लोग हैं, जो एक है जाहिद हुसैन उर्फ विक्की जो सलाई का रहने वाला है और एक मोहम्मद रेहान हुसैन है जो सलाई क्षेत्र का। तो ये दोनों लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके पास से लोहे का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल सेट इनके द्वारा इनके माध्यम से प्राप्त किए गए।
0: और अब मौसम। केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने के बाद अब झारखंड में इसके आगमन का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 17 से 20 जून के बीच संताल परगना क्षेत्र के रास्ते मॉनसून के प्रवेश की संभावना है। धनबाद के डॉ जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में झारखंड राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन आज शाम 5 बजे होगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ और धनबाद जिला कबड्डी संघ द्वारा एसपी क्लब के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की 36 महिला पुरुष टीमें और 30 तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का चयन किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने इस पर लिखा है, मशीन से निकला धुआं और आईसीयू में लगी आग, 5 लोगों की मौत। दैनिक भास्कर की लीड है, दिल्ली के होटल अग्निकांड में बोकारो की सुरभि की मौत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, प्रत्येक जिले में एक आईटीआई बनेगा मॉडल। हिंदुस्तान लिखता है, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का निधन। और बुलेटिन का आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। भाजपा की पहली सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक, झारखंड में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना। और धनबाद में आज से झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का होगा चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली हैं। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन

बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: साथियों, अब हमारा कार्यक्रम है लोकरंग और इस समय सुनेंगे संथाली लोकगीत।

अभी आप संथाली लोकगीत सुन रहे थे, कलाकार थे बादल चंद्र मुर्मू और साथी, और अब हमारा कार्यक्रम है रसरंजन। आप सुनेंगे फिल्मी गाने।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

साथियों, अभी आप रसरंजन कार्यक्रम में फिल्मी गाना सुन रहे थे और अब हमारा कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का, और इस समय आप सुनेंगे सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप। कलाकार हैं चिर सत्य ठाकुर।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपने सुना सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद प्रस्तुत थी। दो गते विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध थी। गायक कलाकार थे चीर सत्य ठाकुर और तबले पर संगत कर रहे थे संदीप चटर्जी।

0: आकाशवाणी रांची से नशर हमारे उर्दू प्रोग्राम में हमारे तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करती हूँ। सामईन को फौजिया का प्यार भरा आदाब। सामईन, आज आपसे मुखातिब है आपकी दोस्त फौजिया और हमारे साथ है हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह। आदाब फौजिया।
0: आदाब।
1: और कैसे हैं?
0: बखैर हूँ।
1: तो फौजिया, बगैर देर किए हुए आप ये बताएं हमारे सामईन को कि आज किन तमाम मौजूआत पर आप हमारे सामईन से रूबरू हैं।
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो बात करूंगी हिदायतुल्ला, आज ही का दिन 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे।
1: जी,
0: उसके बाद 6 जून को सुरक्षित भोजन बेहतर जिंदगी यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेज, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। उसके बाद हम बातें करेंगे हमारे बाबा बिरसा मुंडा जिनकी 9 जून को पुण्यतिथि है यानी कि यौमे वफात का दिन।
1: बिल्कुल फौजिया, आलमी यौम माहौलियात कहें या वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कहें, जो कि 5 जून को पूरी दुनिया में हम मनाते हैं। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद आवाम में माहौलियाती तहफ्फुज और जमीन पर बढ़ती हुई आलूदगी के बारे में शऊर बेदारी पैदा करना है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर ये बात

0: छूता है, दरवाजे का हैंड है, टेबल है, कुर्सी है, तो सब में कुछ ना कुछ कीटाणु जर्म्स
1: हाँ
0: रहते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल
0: जो हमारे हाथ में लग जाते हैं, और आप अगर उसी हाथ से खाना खा लेते हैं
1: बिल्कुल
0: तो वो जरासीम आपके अंदर चला जाता है।
1: जी
0: तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हाथ धोकर ही खाना खाएं।
1: बिल्कुल
0: बातें बहुत सारी हो गई हैं हिदायतुल्ला, तो अपने सामईन को लिए चलते हैं नगमे की तरफ और सुनवाते हैं।
1: और नगमा जो हम सुनवाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत नगमा, आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है। आइए सुनते हैं सामीन ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

उसके घर वाले उसकी तस्वीर लेते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक पर डाल देते हैं। अगर आपने उस वक्त से जुगाड़ लगा लिया तो समझ लीजिए आप कामयाबी से हमकनार हो जाएंगे, गोया आपकी तस्वीर बच्चे के साथ आ सकती है। दूसरा मौका है जब किसी जवान की शादी हो रही हो, उस वक्त भी कैमरामैन लोगों की तस्वीरें उतारता है। तीसरा मौका है जब किसी का इंतकाल होता है, उस वक्त भी तस्वीर कशी बड़ी तेज़ रफ्तारी से होती है, वहाँ भी आप एक चांस ले सकते हैं। चौथा मौका जो सबसे अहम है, इस्लाह माशरा के जलसा जुलूस में, यहाँ माइक और मजमा दोनों मिलता है जो सबके नसीब में नहीं होता। नहायत ही अफसोस के साथ ये ऐलान, बेगम बोली, सुनते हैं? ऐलान सुनिए, लगता है किसी का इंतकाल का ऐलान हो रहा है। अरे 3 बार ऐलान हुआ, इसका मतलब है शहर का कोई ख़ास आदमी का इंतकाल हुआ है, वरना 2 से ज़्यादा बार किसी आम आदमी का ऐलान नहीं होता। शहर की अहम शख्सियत के इंतकाल पर ही मौज़िन साहब 2 से ज़्यादा बार ऐलान करते हैं। बेगम बोली, आज अच्छा मौका है, आज आपकी तस्वीर खींची जाएगी, कब्रिस्तान जल्द ही जाकर पहली सफ पे इमाम के पीछे जगह ले लेंगे, आज आपकी तस्वीर साफ आएगी। नहा धोकर वजू बनाकर जोहर से पहले ही कब्रिस्तान में लगी कुर्सियों पर जाकर बैठ गया। जनाजा आया, लोग सफबंदी करने लगे, मैं ठीक इमाम के पीछे खड़ा हो गया जैसा कि बेगम ने कहा था, मगर ये क्या, एक साहब आए और कहने लगे, आपको पहचाना नहीं? मैंने कहा, मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ। वह तो ठीक है, मगर आप पिछली सफ में चले जाएं, पहली सफ में मैयत के घर के लोग और शहर के सामाजिक कारकुन रहेंगे, इसलिए कि तस्वीर कशी होगी तो तस्वीर साफ आनी चाहिए। मैं मायूस होकर दूसरी सफ में लग गया, अपने सर को दाएं बाएं करता रहा ताकि किसी तरह कैमरा के सामने मेरा चेहरा आ जाए। एड़ी उठाकर उंगलियों पर भी खड़े होने की कोशिश की, हालांकि एड़ी में दर्द था। मैंने ये दर्द इसलिए बर्दाश्त किया, सुना था कि हर दुख के बाद सुख है। अपना कद ऊंचा करने की मैंने पूरी कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। मैंने महसूस किया कि अगर आप कद में छोटा भी हैं और ओहदा में बड़ा हैं तो आपका कद जमे गफीर में भी ऊंचा हो रहेगा। बेगम ने मशवरा दिया कि आप खुद मुकर्रर क्यों नहीं बनते, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा, इसमें प्रैक्टिस की क्या बात है, घंटा 2 घंटा तो मैं बोल ही सकता हूँ। तो ऐसा कीजिए, इस्लाह माशरा करने वालों से राब्ता करें, वहाँ चांस मिल ही जाएगा। रंग बिरंगे लिबास जेबतन करना होगा, उसी से बड़े खतीब होने का रोब जमता है। मैंने कहा, कुछ कपड़े तो हैं और कुछ नए डिज़ाइन का बनवा लूँगा। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ अनाउंसर, अब आपके सामने बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान मुकर्रर, दीवारे मिल्लत, सुतून मिल्लत, साहिबान मिल्लत, ऐवान मिल्लत, गुबार मिल्लत, धुआंधार मिल्लत, अंदलीब मिल्लत, हजरत जलजला संतरा आबादी आपके सामने माइक पर। हजरात, आप लोग इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं, आपसे ज़्यादा हमारी खुशनसीबी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आबाओं माओं भाइयों बहनों चाचाओं चचानियों फूफाओं फूफियों मामाओं ममानियों खालुओं खालाओं बेपर्दा और पर्दा नशीन ख्वातीन और नौजवान दोस्तों, वक्त बर्बाद किए बगैर मैं असल मौजू पर आता हूँ। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। समाज के लोगों, शराब पीने वालों, सिगरेट पीने वालों, बीड़ी पीने वालों, गांजा पीने वालों, अफीम चरस पीने वालों, गुस्सा पीने वालों, शरबत पीने वालों, जूस पीने वालों, पेप्सी कोका कोला पीने वालों, फ्रूटी पीने वालों, सिरप पीने वालों, चाय कॉफ़ी पीने वालों, सूद खाने वालों, चुगली खाने वालों, बिरयानी खाने वालों, जले पर नमक लगाने वालों, स्नो पाउडर लगाने वालों, मोबाइल देखने वालों, टीवी देखने वालों, दूसरे की बीवी को देखने वालों, हवा में हाथ लहरा लहरा कर उंगलियों से इशारा करके बोलिए सुभान अल्लाह। एक आदमी, तकरीर शबाब पर है, ज़ोरदार नारा, नारे तकबीर, पूरा मजमा अल्लाह अकबर, दीवार मिल्लत जिंदाबाद। मौलाना साहब बोले, हाथ लहरा कर फोटो फोटो फोटो, जहेज लेने वालों, जहेज देने वालों, दूसरे के दरवाजे पर कूड़ा डालने वालों, नाली जाम करने वालों, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों, बेगम को पार्क घुमाने वालों, कैमरा

0: मैं तस्वीर लेते हुए, क्रिकेट खेलने वालों, गेंद खेलने वालों, लूडो खेलने वालों, कैरम खेलने वालों, किसी की इज्जत से खेलने वालों, एक आवाज़ आप बैठ जाइए। ज़मीन पर बैठने वालों, कुर्सियों पर बैठने वालों, आँखों पर बैठने वालों, पलकों पर बैठने वालों, बुज़ुर्गों के सामने बैठने वालों, कार में बैठने वालों, जहाज़ में बैठने वालों, चौक चौराहों पर बैठने वालों, मैकदे में बैठने वालों, रात के 3 बज रहे हैं, ज़िंदगी ने भाफा की तो फिर अगली कॉन्फ्रेंस में। आप लोग पूरे तौर पर बेदार हो जाएं, वक्त का तकाजा है। मुसलसल रात में जागने की वजह से दिन का गलबा है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाप था। गालिब कहते हैं कि कुछ और चाहिए उस वक्त मेरे बयां के लिए। वाखिर दावाना। कुछ लोग काना फूसी कर रहे थे, बाप रे ऐसा मौलाना की तकरीर तो हम आज तक नहीं सुने थे। जब पीने पर बोल रहे हैं तो पीने ही पर, जब खाने पर बोल रहे हैं तो खाने ही पर, लगाने पर बोल रहे हैं तो लगाने ही पर बोले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। देखने पर बोल रहे हैं तो देखने ही पर, बगैर सांस लिए इतनी रवानी से बोल रहे हैं, पहलू बदल बदल करके, हाथों को हवा में लहरा के, एकदम मौलाना साहब लोगों के दिलों में उतरते चले गए। हम लोग इतनी रवानी से 100 तक गिनती भी नहीं गिन सकते, इसमें भी गड़बड़ा जाएंगे। जानते हो दोस्त, ये रटी हुई तकरीर नहीं है, बल्कि मौलाना साहब बहुत किताब पढ़े हैं, हर मौजू पर धड़ल्ले से बोलने लगते हैं। एक आदमी ज़रा सा बोला कि आप बैठ जाइए, तो बैठने पर ही वो 10 मिनट तक बोलते रहे। हम तो ऐसा मौलाना की तकरीर पहली बार सुन रहे हैं। हम भी ऐसी तकरीर नहीं सुने थे यार, उनका प्रोग्राम जहाँ भी होगा हम तो जाएंगे, मज़ा आ गया। और तुम? हम भी चलेंगे यार। सुबह अब्बा हाथ में अखबार लिए कैज़ो गज़ब के साथ घर में दाखिल हुए, गरज कर बोले, कहाँ है जलजलवा? अभी आया। क्या है अब्बा? सुन रहे हैं तू तोर फुलो फोटो छपल हो, यानी तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपी है। कहाँ है अब्बा? कहाँ है अब्बा? देखे ना अब्बा। अरे अब्बा के बच्चे, आओ आओ, इधर आओ, और करीब आओ। अब्बा का तेवर देख कर हम घर से बाहर गली में निकल गए, बाहर गली में, गली से सड़क पर, सड़क से शाहरा पर भागे जा रहे हैं। आगे मैं, पीछे हाथ में छड़ी लिए अब्बा दौड़ाते जा रहे हैं। अब्बा तस्वीर कशी के सख्त खिलाफ थे, मैं आगे आगे, अब्बा पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। सुबह में सैर तफरी पर निकलने वाले लोगों ने देखा, एक बूढ़ा एक नौजवान को दौड़ा रहा है, लोग सेल्फी लेते रहे। इन्हीं लोगों में कुछ मीडिया वाले भी थे। सुबह अखबार में माँ तस्वीर खबर छपी, एक बूढ़ा एक जवान को दौड़ा रहा है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। बूढ़ा जवान को क्यों दौड़ा रहा है, इनका इंकशाफ अभी नहीं हुआ है, तहकीक जारी है।
1: सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब तबीब अहसन ताबिश से उनका इंशाइया, काश छप जाती मेरी भी तस्वीर। और फौजिया, एक बहुत ही अहम मौजू, बाबा बिरसा मुंडा, बगावत, शहादत और अवामी बेदारी, जिनकी पुण्यतिथि है 9 जून को।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हिदायतुल्लाह हिंदुस्तान की तारीख के एक अजीम इनकलाबी और कबायली रहनुमा थे, जिन्होंने 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेनी हुकूमत के जुल्म और ज़मीनी इस्तेहसाल के खिलाफ उलगुलान अजीम बगावत का अलम बुलंद किया। महज 24 साल की उम्र में 10 जून 1900 को रांची जेल में उनका इंतकाल पुरअसरार हालत में हुआ, जिसे ब्रिटेनी हुकूमत ने हैजा करार दिया था। उनकी यौम वफात महज एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रिटेनी साम्राज्य के खिलाफ उनकी बेमिसाल शुजात, कुर्बानी और अपने लोगों के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए की गई जद्दोजहद को याद करने का दिन है, जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में आज़ादी की शमा रोशन रखता है।
1: बिल्कुल फौजिया, इस अजीम शख्सियत की पैदाइश 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिला, मौजूदा झारखंड के गांव एलीहातू में हुई। उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की और बाद में चाईबासा में मिशन स्कूल में पढ़ा, जहां वो बरतानवी इस्तेहसाली पॉलिसियों से बाखबर हुए। उन्होंने कबाइलियों को मुत्तहिद करने के लिए एक नया मजहब बरसाईत शुरू किया। उन्होंने जादू टोना को तर्क करने, शराब नोशी तर्क करने और सादगी से जिंदगी गुजारने की तलकीन की।
2: ان کی برسی کے موقع پر ملک بھر میں بالخصوص قبائلی علاقوں میں انہیں گہری عقیدت و احترام کے ساتھ خراجی عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ برسا منڈا کو ان کے پیروکار اور قبائلی معاشرہ دھرتی آبا کے نام سے پکارتے ہیں۔

0: अमीन ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसके ऊपर हम चाहे जितना भी बात करें ये कम है। इन जैसे शख्सियत की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा भारत आज़ाद है और हम आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हिदायतुल्ला, बातें बहुत हैं लेकिन वक्त की कमी के बास हमारे अपने प्रोग्राम को यहीं पे अख्तिताम पज़ीर करने की सामईन से इजाज़त लेते हैं,
0: बिल्कुल, तो इसी के साथ सामईन आप अपने दोस्त हिदायतुल्ला
1: और फौजिया दोनों को अगली मुलाकात तक के लिए दें इजाज़त।
0: आदाब।
1: आदाब।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। हमारा अगला कार्यक्रम जुहार रांची बस कुछ ही पलों में।

आप सभी का हार्दिक स्वागत है जुहार रांची के इस खास कार्यक्रम में और आप सभी श्रोताओं को आभा का जुहार। दोस्तों, हर रोज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ढेरों जानकारियां साझा करते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत हम करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ। कहते हैं जीवन मुश्किल नहीं होता, हम अपने दिमाग से उसे मुश्किल बना देते हैं। बार बार सोचना, हर चीज़ को समझना, हर स्थिति को पकड़कर बैठ जाना, यही हमारे मन को भारी बना देता है। लेकिन सच बहुत सरल है, आपको हर विचार पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं, हर बात को समझना ज़रूरी नहीं, हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है। सादगी का मतलब कम करना नहीं है, बल्कि अनावश्यक बातों को सोचना छोड़ देना ज़रूरी है। थोड़ा भरोसा कीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, जीवन को बहने दीजिए, क्योंकि जैसे ही मन सरल होता है हमारा जीवन अपने आप हल्का हो जाता है, क्योंकि हर शुद्ध भावना आपकी खुशी का आधार बनता है।

जुहार रांची में आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। तो आपको बता दें, केरल में गुरुवार को मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन झारखंड के लोगों को इसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। झारखंड में 17 से 20 जून के बीच संताल परगना के रास्ते मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना है। और आपको बता दें, 5 जून को रांची सहित राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना जताई गई है।

आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो इतिहास के पन्ने अगर हम पलटें तो जानेंगे कि 5 जून 1507 में इंग्लैंड और नीदरलैंड व्यापार समझौते पर सहमति हुई थी। सन 1659 में मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और 1661 में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। बात करें वर्ष 1674 में तो आज ही के दिन शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाने के लिए पहली बार पतंग उड़ाई कि बिजली विद्युत का एक स्रोत है। 5 जून 1857 में कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया और नाना साहब को पेशावा घोषित कर दिया गया था। बात करें 1875 की तो आज ही के दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की गई थी। 1915 में डेनमार्क ने अपने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था। 1953 में आज ही के दिन डेनमार्क में संविधान लागू हुआ था। और आज ही के दिन 1984 में सिखों के धर्म स्थल पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारतीय सेना ने अंजाम दिया था। और 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और आज ही के दिन 2010 में भारत सरकार ने सुरक्षा अनुबंध नियम के संशोधित रूप को अधिसूचित कर शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में आम निवेशकों की कम से कम 25% हिस्सेदारी को अनिवार्य कर दिया था। और 5 जून 2013 में पहली बार एक अंग्रेजी अखबार में छपा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी अमेरिका में लाखों लोगों के फोन रिकॉर्ड जुटा रही है। और बात करें वर्ष 2017 की तो आज ही के दिन सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark III D1 का सफल परीक्षण हुआ था।

हम बातें कर रहे हैं इतिहास की, तो जानते हैं किन हस्तियों ने आज इस दुनिया में कदम रखा था। तो बात करें 5 जून 1879 में, तो नारायण मल्हार जोशी का जन्म हुआ था, जो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। 1892 में सिकंदर हयात खान का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक काल में पंजाब राज्य के प्रधानमंत्री थे और भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर थे। गोविंद शंकर गुरु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इस दुनिया में कदम रखा था 5 जून 1901 में। 1939 में सुब्रमण्यम रामास्वामी का जन्म हुआ, जो भारतीय राज्य पुडुचेरी के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री थे। और 1961 में रमेश पूर्व कृष्णन का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। और 5 जून 1972 में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं और ये हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। तो हमारी तरफ से इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों आज है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु विश्व पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के प्रति हमारे संकल्प और जिम्मेदारी को याद दिलाने का दिन है। प्रकृति और पर्यावरण ने हमें जीवन जीने के लिए अनमोल उपहार दिए हैं, जैसे स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरी भरी धरती। लेकिन आधुनिकता और विकास की दौड़ में हम इन्हीं उपहारों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक पल के लिए अगर हम अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि क्या आज हमारी हवा उतनी ही शुद्ध है जितनी हमारी पुरानी पीढ़ियों के पास थी, क्या हमारे जल स्रोत सुरक्षित हैं, तो शायद हमें जवाब मिलेगा ना। ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जो हमारे प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम आज से ही सामूहिक प्रयास शुरू करें तो शायद इससे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। वर्ष में एक दिन पर्यावरण की रक्षा का संकल्प तो हम सब लेते हैं, परंतु उस पर अमल नहीं करते। लेकिन पर्यावरण की रक्षा हमें हर कीमत पर करनी होगी, हमें ये समझना होगा। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम कुछ छोटे छोटे और महत्वपूर्ण संकल्प लें, जैसे पेड़ लगाएं और बचाएं। अपने घर के आसपास, अपनी बालकनी में या किसी खाली जगह पर एक पौधा जरूर लगाएं। प्लास्टिक को कहें ना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें और कपड़े या जूट के थैलों को अपनी आदत बनाएं। जल और ऊर्जा की बचत करना सीखें। आवश्यकता न होने पर बिजली

बंद करें और पानी की हर एक बूंद को बचाएं और प्रकृति का सम्मान करें। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। प्रकृति हमें जीवन देती है, हमें पालती पोसती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी प्रकृति और पर्यावरण की ढाल बने। याद रखें, पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, यह हमारा और आपका साझा कर्तव्य है कि हम इस सुंदर धरती को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखें। तो आप सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

जुहार रांची में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह ना दें और ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अपनी दोस्त आभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जुहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं स्वर यात्रा के 90 वर्ष। पूर्व कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार, माफ कीजिएगा, अनिल किशोर सहाय की मीनाक्षी शर्मा से बातचीत। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की।

0: नमस्कार श्रोताओं, भारत की आत्मा की आवाज, भारत के खेत खलिहानों, नदियों पहाड़ों, जल जंगल जमीन के साथ ही जन जन की आवाज, आकाशवाणी के 90 वर्षों की स्वर यात्रा के स्वर्णिम पड़ाव पर हम एक बार फिर आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं आवाज की दुनिया के आपके दोस्त मीनाक्षी आपके साथ हूँ। साथियों, हम सब उस संस्था के 90 वर्षों की शानदार यात्रा का उत्सव मना रहे हैं जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है, जिसने संस्कृतियों को आगे बढ़ाया है, विरासत को सहेजा है और राष्ट्र चेतना को एक नया स्वर दिया है। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर यात्रा में आकाशवाणी रांची साक्षात्कारों की श्रृंखला के माध्यम से उन शख्सियतों से आपके मुलाकात करवा रहा है जिन्होंने इस संस्थान को अपना अमूल्य योगदान दिया, अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष इसके साथ बिताए और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसके साथ जुड़ने का काम किया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी रांची में कई वर्षों तक कार्यक्रम अधिशासी के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले, इसके साथ ही आकाशवाणी के कई केंद्रों में अपनी सेवाएं देने वाले, यहां से प्रसारित कार्यक्रमों को सजाने संवारने वाले श्री अनिल किशोर सहाय जी। सर, सबसे पहले तो आपके आकाशवाणी में, आपके जाने पहचाने स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं।
1: धन्यवाद मीनाक्षी जी।
0: सर, जब हम 90 वर्षों की स्वर यात्रा का उत्सव मना रहे हैं आकाशवाणी की, तो यकीनन हर किसी के हृदय में एक रोमांच है, हर किसी की यादें जो है वो फिर से बहुत जीवंत तो हो उठ रही हैं। चूंकि आप काफी लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़े रहे, तो जब आप यहाँ प्रवेश कर रहे थे, पहला सवाल ये कि कैसा रोमांच था आपके हृदय में और आकाशवाणी के मायने क्या है आपकी जिंदगी में?
1: मीनाक्षी जी, मैंने 33 वर्षों तक आकाशवाणी में अपनी सेवा दी
0: जी,
1: और मैं भी जब आ रहा था तो आप आकाशवाणी के हर केंद्र में देखेंगे अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। और मैं बताऊं कि मैं जब यूथ था, भागलपुर में मेरी पढ़ाई हुई
0: जी,
1: तो मैं अलीगंज में आकाशवाणी भागलपुर का ट्रांसमीटर था, स्टूडियो भी वहीं था, तो मुझे लगता था कि मैं इसके अंदर जाऊं कैसे, वहां तो अनाधिकार प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, तो युवानी कार्यक्रम में मेरा पहला प्रवेश हुआ और मैं पहले दिन गया था तो इतना रोमांचित था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने एक एक स्टूडियो को देखा, घूम घूम कर देखा, ट्रांसमीटर क्या होता है, इंजीनियरिंग स्टाफ कहाँ बैठते हैं, और डॉक्टर गंगेश गुंजन जो हमारे DDG होकर रिटायर हुए, वे उसमें पुराने एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने कई बार मुझे बाद में अवसर दिया। तो ये जो एक शब्द है अनाधिकार प्रवेश वर्जित है,
0: ये अपने आप में रोमांच,
1: ये रोमांच पैदा करता है कि अंदर है क्या,
0: है क्या आखिर,
1: क्यों ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो सुरक्षा के कारणों से है, वैसा है नहीं, क्योंकि आकाशवाणी का काम ही है लोगों से जुड़ना, लोगों को जोड़ना। तो ये मैं आज भी आ रहा था तो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा।
0: पुरानी बात आपको याद
1: आ गई? बातें मुझे याद आई।
0: बिल्कुल। और सर, पहली बार जब आपके पास ऑफर लेटर आया होगा, पहली बार आपको ये सूचना मिली होगी कि जिस आकाशवाणी को आप अपने हृदय से चाह रहे थे, अपने दिल से आप चाह रहे थे, उस आकाशवाणी में आपका पदस्थापन हुआ है, आपकी नौकरी सुनिश्चित हुई है, कैसा था वो रोमांच, कैसा था वो?
1: हुआ ये कि अभी तो मान लीजिए कि हम लोग पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि फलां कवि की अच्छी कविता आई है, मैं खुद संपर्क करता था, उन्हें बुलाता था, लेकिन उन दोनों वैसे कोई बात थी नहीं। तो उसमें क्या था कि मैं TNB कॉलेज भागलपुर का छात्र था, तो हुआ ये कि एक बार वहां देखा नोटिस बोर्ड पर कि आकाशवाणी के युवानी कार्यक्रम में कविता पाठ के लिए कवियों का चयन किया जाना है और उसके लिए कॉलेज स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित होगी। बड़ा मजेदार चीज में सुनाना था, अच्छा आपने छेड़ दिया इसको, तो मैंने भाग ले लिया। उसके बाद हमें नहीं पता सामने में आकाशवाणी कौन लोग थे, कभी गया ही नहीं था, और ये बात है 1975 की, यानी मेरा 19वां वर्ष चल रहा था और मैं इंटर लास्ट में छात्र था। तो फिर वो अचानक में मुझे एक लड़का मेरे घर पर पता लगा, मुझे कॉन्टेक्ट लेटर दे गया। तो मैंने पढ़ा कि मुझे कविता पाठ के लिए बुलाया गया है। मुझे मेरे मतलब हर्ष की सीमा नहीं थी, मतलब अतिरेक में था मैं, मुझे लगा मैं आकाशवाणी में कविता पढ़ने जा रहा हूं,
0: भले ही उसका मानदेय कितना भी हो, लेकिन
1: 25 रुपए।
0: लेकिन वो जो कागज मिला होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, वो अपने आप में उसकी अहमियत।
1: कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मैंने संभाल कर रखे हैं, मैं कभी अगर ये विजुअल होता तो मैं दिखाता
0: जी।
1: और मुझे उसके बाद उन्होंने परिचर्चा में भी बुलाया, एक नवोदित कवित्री की कविताओं की समीक्षा के लिए भी मुझे बुलाया गया। मुझे खुद आश्चर्य था, मैं खुद नवोदित हूँ और नवोदित कवित्री थी।
0: लेकिन आकाशवाणी की मुझे लगता है ये खासियत है, वो हुनर को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं और जो आपके अंदर टैलेंट है उसको पहचान लेते हैं और उसका सम्मान भी आकाशवाणी का केंद्र पूरी तरह से करता है। मैंने ऐसा बहुत महसूस किया है सर।
1: आकाशवाणी का काम ही है टैलेंट को खोजना। आप जैसे मान लीजिए कि आकाशवाणी भागलपुर का 18 जिला प्रसारण क्षेत्र है, तो उन 18 जिले के प्रसारण क्षेत्र के हर टैलेंट को आपको खोजना है।
0: बिल्कुल।
1: और मैं बताऊं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में, और संजोग देखिए कि मेरी पहली पोस्टिंग ही मुख्यालय दिल्ली में हो गई। मैं विविध भारती से वहां था, तो वह 5.5 वर्षों तक वहां रहा और वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने यह सीखा कि कैसे केंद्र के इंटरनल मैटर में एक डीडीजी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कई घटनाएं थी जो मुझसे जुड़ी हुई थी, लेकिन उतना लंबा बहुत जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैंने ट्रांसमिशन रिपोर्ट में डीडीजी के हस्तक्षेप के बारे में लिख दिया था और मेरे स्टेशन डायरेक्टर ने डीजी को उनके अगेंस्ट में लिख दिया था। वो एक अजीब सी बात, पता नहीं मुझे ट्रांसमिशन रिपोर्ट लिखने में मैं हमेशा निडर रहा। मुझे लगता था कि गलत हुआ है तो गलत हुआ है,
0: बिल्कुल।
1: जो सच्चाई है मेरे बारे में चाहते थे कि ये कितना सुनता क्यों है, मॉनिटरिंग क्यों करता है, ये भी कहानी है। कई पुराने लोग
0: बिल्कुल, वो काम के प्रति आपकी ईमानदारी थी कि आप ध्यान से कार्यक्रमों को सुनते थे और उसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट आप।
1: कारण ये था मीनाक्षी जी कि मैं भागलपुर का रहने वाला था, दिल्ली में था, कोई काम ही नहीं था, मैं तो ज्यादा समय गुजारता भी था, मेरे मित्र भी वहीं बने थे। अच्छे अच्छे लोग हैं, नाम मैं बताऊंगा, वे सभी मित्र बने थे। उसके बाद मैं 5.5 वर्षों के बाद मैं मुझे बिहार आना था, कुछ घर में घटनाएं घटी थी, तो भारतीय सूचना सेवा में मेरा चयन हो गया और मैं भारतीय सूचना सेवा में, आप जानती हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण दो सेवाओं से मिलकर बना है, तो हम लोग प्रसारण सेवा के लोग हैं। सूचना सेवा में 14 विभाग हैं, जो आप जितने आकाशवाणी और दूरदर्शन को छोड़ दीजिए,
0: पत्र पत्रिकाएं वगैरह,
1: नहीं डीएवीपी डीएफपी फिल्म एंड पूना का फिल्म डिवीजन, फिल्म डिवीजन, फोटो डिवीजन, पीआईबी, ये सारे विभाग भारतीय सूचना सेवा
0: का बहुत बड़े दायरे में काम करते हैं।
1: तो डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी में मैं फील्ड पब्लिसिटी अफसर होकर भागलपुर आया और मेरा चयन 1 वर्ष के लिए हुआ था, पता नहीं क्या हुआ मुझे 5 वर्षों तक एक्सटेंशन मिलता रहा।
0: क्या बात है,
1: मैं समझ नहीं पाता था, मुझे लगता था कि क्या कारण है, हो सकता है मेरा जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाता होगा और कुछ उनको लगता होगा कि मैंने काम किया है,
0: संतोषजनक से ज्यादा अच्छी होती होगी।
1: लेकिन जब मैं पुराने स्कूटिंग में प्रमोट हुआ तो मैं अपने मूल विभाग लौट आया
0: जी,
1: क्योंकि
0: तब आप प्रसारण सेवा में आ गए।
1: फिर प्रसारण सेवा में फिर आ गया
0: जी,
1: और मेरी पहली पोस्टिंग आकाशवाणी भागलपुर में हुई
0: जी।
1: वहाँ मैं 8.5 वर्षों तक रहा।
0: क्या बात है।
1: और जी
0: सर, अनिल सर, आपने जैसा बताया कि आपने तकरीबन 33 वर्षों तक आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं, तो कभी तो ऐसा समय आया होगा जब आपको लगा कि नहीं, ये बहुत चुनौती भरा काम है। कौन से काम को आपने चुनौती के रूप में लिया और उस चुनौती को पार पाने के लिए आपने बहुत शिद्दत से कोशिशें की, कैसा कोई एक ऐसा वाक्य आप बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: 2-3 वाक्य बता देता हूँ, एक नहीं मैं बताऊँ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, कार्यक्रम अधिशासी हिंदी में कहते हैं, उनका काम बहुत जोखिम से ही भरा हुआ है। जब हम एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरते हैं तो उसमें हमारा कार्य बताया जाता है, प्लानिंग प्रोडक्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम असाइन टू मी। वो असाइन जो प्रोग्राम है उसका हम योजना बनाते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं, प्रस्तुति देते हैं और प्रशासन, मतलब चेक भी समय पर मिल जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं
0: जी।
1: जब आप प्रोग्राम हेड के रूप में काम करेंगे तब आपको लगेगा कितने काम हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैंने कई बार जोखिम उठाया। मैं एक दो चर्चा भी कर देना चाहता हूँ। एक बार यही रांची में मैं 2006 में डाल्टनगंज से ट्रांसफर होकर आया था और 2007 में अचानक पीएमओ से एक पत्र आया
0: जी,
1: उसमें देश भर के 10 चुने हुए कलेक्टर की चर्चा थी, उसमें झारखंड के 2 कलेक्टर थे, के सोन साहब और आराधना पटनायक, इन दोनों ने काफी अच्छा काम किया था। और वहां से आया चिट्ठी पीएमओ से, इन चीफ सेक्रेटरी ने जिनके काम के बारे में भेजा है आप वहां जाकर पता कीजिए उन्होंने यह काम किया भी है या नहीं। और उस समय के सोन साहब लातेहार के डीसी थे और आराधना पटनायक लोहरदगा के डीसी थी, तो 2 टीम बनी। लोहरदगा के लिए गणोरी राम जी गए, उन्होंने वहां पे डेयरी प्रोजेक्ट का काम किया था, दूध के क्षेत्र में अच्छा काम किया था। लेकिन ये लातेहार वाला के सोन साहब का काम था बड़ा दुर्गम था, अब बहुत ज्यादा उन्होंने काम
0: बिल्कुल
1: किया
0: वो पहाड़ों पे जाते थे, वहां काम किया करते थे।
1: आप जानिए ना, आप तो बहुत पुरानी ब्रॉडकास्टर तो हुआ क्या कि एक टीम बनी और मेरे साथ दिनेश लाल गए और हमारे साथ ड्राइवर थे, हम लोग गए। तो जिला प्रशासन को हमने सूचित कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि वो नक्सली क्षेत्र है। जिला प्रशासन ने हमें गार्ड दिया था गाड़ी में, उन्होंने पहले बता दिया था कि बिशुनपुर से जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको दिन में भी गाड़ी का लाइट जला के चलना और हॉर्न बजाते हुए जाना है, क्योंकि वो लोग अगर मतलब वैसा नहीं करेंगे तो वे समझेंगे पुलिस वाले हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम लोग बिशुनपुर से जैसे ऊपर, उन दिनों से रोड भी नहीं बना था मीनाक्षी जी, हम लोग ऊपर गए, ड्राइवर ने हॉर्न बजाना शुरू किया, लाइट जला दिया हेडलाइट, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जब ऊपर देखा तो बंदूक लिए हुए कई सारे लोग घूमते हुए नजर आए। हमें वो दिन भी याद है। और
0: कैसा लगा होगा? अभी
1: मैं बता रहा हूँ, लगा तो जो लगा, मैं तो धक सा रह गया। ले जा, जोखिम कितना है, और वो करना है। पीएमओ की चिट्ठी आपको डीजी के यहाँ से पत्र आएंगे, होम मिनिस्ट्री से आएंगे, होम मिनिस्ट्री की चर्चा मैं करूंगा कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल।
1: तो इन्होंने हमें करना था, और फिर हम लोग वहां से गए तो हम लोग पहले महुआ डांडी सीधे चले गए, क्योंकि हमें जो पता था कि महुआ डांडी में काम हुआ है, डांडी कोना में जो असुर जाति जो विलुप्त होती है वहां भी हम गए थे। तो लौट कर जब आए तो जिला प्रशासन ने होटल नटराज विहार में जो कमरा हमें उपलब्ध कराया था गार्ड ने खोला, हम लोग कमरे में गए तो क्या देखा पता है?
0: क्या देखा सर?
1: एक पूरा पलंग उड़ा हुआ था, दो दिन पहले वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस कमरे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और मैं और दिनेश जी तो सकते में, लेकिन अब हमें रात में तो वहां रुकना ही था
0: जी।
1: तो उन लोगों ने क्या किया था, पलंग का जो कोना टूटा था वहां ईंट से
0: खड़ा कर दिया था।
1: तो वो ड्राइवर और दिनेश से सो गए, मैं सोफा पर सो गया। ये आप समझ लीजिए क्या। उसके बाद अगले दिन हम लोग जब आए तो डांडी कोना एक गांव है जहां विलुप्त होती है जनजाति असुर वहां रहते हैं। उनके बीच में के सोन साहब ने बहुत सारा काम किया था, बकरी पालन का, मुर्गी पालन का, उन्हें ऑटो दिलाया था, तो वो हमें जाना था। अब वहां से गए जो 5 किलोमीटर अंदर जंगल के रास्ते में, उसमें भी मैं काफी लोगों में दिखाई दिए ऊपर, और हम लोग राम राम करके वहां पहुंचे और उन लोगों से हम लोगों ने इंटरव्यू लिया और वहां से चलाया। एक दूसरी घटना की चर्चा करना चाहूंगा, जब मैं आकाशवाणी भागलपुर में पोस्टेड था तो वहां पर बासुकीनाथ एक जगह है, आप जानते हैं। वहां पर हर साल फरवरी महीने में महामस्तकाभिषेक होता है। तो डीजी के यहाँ से वहां के लोकल सांसद ने पत्र लिख दिया था और पत्र आया कि आपको उसका कवरेज करना है, और कवरेज ही नहीं करना है, वहाँ एक संगीत संध्या भी आयोजित करना है। तो वहाँ एक भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, हम लोगों ने किया, 11 बजे भजन संध्या समाप्त हो गया। चूंकि आकाशवाणी की एक बहुत अच्छी बात किया है कि हर चीज समय पर शुरू होता है और समय पर समाप्त होता है, तो 11 बजे हो गया। उसके बाद वहाँ के बीडीओ ने जो हम लोगों को डाक बंगला में ठहराने की व्यवस्था की थी, हम लोग देखने गए तो देखे कि उसमें जाले लगे हुए हैं, कई महीनों से खुला नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भागलपुर वापस लौट जाते हैं, खाना वाना खाते वाते एक बज गया, हम लोग लौटने लगे। दो जीप में, आपको याद होगा ब्लू कलर वाली जीप पहले आती थी यूनिसेफ की, वो आकाशवाणी को दिया गया था
0: जी।
1: हम लोग थे, हमारे स्टेशन इंजीनियर थे, डायरेक्टर थे, और एक शांति जैन कलाकार थी मुजफ्फरपुर की, वो आई थी। उन्होंने कहा कि मैं भागलपुर जाके अपर इंडिया एक्सप्रेस पकड़ूंगा। हम लोग सत्य एक घंटे के बाद जहां पर बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, वो भलजोर पुल है, वहां पर
0: कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे थे।
1: भलजोर पुल पर हम पहुंचे तो सामने देखा कि कुछ ट्रकें और बसें लगे हुई हैं लाइन से, हमारी भी गाड़ी जाके खड़ी हो गई। तो हम लोग का हेडलाइट जो देखा था ना, वो लोग छिप गए थे। दरअसल जैसे ही गाड़ी रुकी 40-25-30 डकैतों ने हमें आके घेर लिया। वे डकैत थे।
0: क्या स्थिति रही होगी सर, मैं कल्पना कर रही हूँ।
1: फरवरी के महीने में हम लोग, इतनी ठंड थी,
0: फिर भी पसीने से भर गए।
1: मैं ड्राइवर के पीछे वाले सीट पर जानबूझ के बैठा था, सामने में आर्यन प्रसाद इंजीनियर थे, बीके शुक्ला साहब थे स्टेशन डायरेक्टर, मैं और अरुण पासवान पैक्स थे पीछे बैठे थे, एक और मैं शांति जैन थी, लेखापाल थे। एक परंपरा है कि जब स्टेज पर कार्यक्रम होता है तो कलाकारों को वहीं
0: वही चेक दिया जाता है,
1: तो एक लेखापाल
0: बहुत समृद्ध परंपरा
1: चेक, चेक बुक लेकर रखे हुए थे और सब सॉल उड़े हुए। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं किया, हम लोग को सभी को गाड़ी से बाहर निकाला और उस ठंड में सड़क पर एक लाइन से खड़ा कर दिया। हम लोग 12 लोग थे और सबको कनपट्टी लगाया, सबके सारे सामान छीने, मेरी भी अंगूठी और घड़ी गई, पर्स भी सबका ले लिया। उसके बाद वो उन्होंने पूरा लूटा और हम लोग 15 मिनट थरथराते तब उन्होंने कहा बैठो, फिर हम लोग जल्दी से बैठ गए। लेकिन उसके बाद भी नहीं, फिर उन्होंने वो किधर से गायब हुए हमें पता नहीं, लेकिन जब 4 बज गए तब हमें लगा अभी लोग नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे गाड़ी गई, हम लोग ही गए, हम लोग वहां से चले तो गए लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। भागलपुर पहुंचते ही हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने बांका के एसपी को टेलीफोन किया, वो बांका जिले में पड़ता है, एसपी ने वहां से अपने डीएसपी वगैरह को भेजा, हमारा ये हुआ। फिर 2 दिन बाद टीआई, कुछ लोग पकड़ाए, टीआई पैरेड हुआ, हम जेल में भी गए थे देखने के लिए उनको। लेकिन बात ये थी कि उसके अगले दिन, मीनाक्षी जी मैं बताऊं, उन दिनों ये स्थानीय स्तर पर इतने सारे अखबार निकलते नहीं थे, सारे अखबार पटना में छपते थे, सबका ब्यूरो कार्यालय भागलपुर में था, रांची में था। तो ब्यूरो कार्यालय वालों को भनक लगी, अगले दिन वो आए और उन्होंने
0: खबर बन गई।
1: और आपको आश्चर्य होगा कि पटना से छपने वाली सारी अखबारों का हेडलाइन था कि आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारियों को डकैतों ने लूटा। तो ये जोखिम जो है
0: खबर बनी सर, ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो डर का भय का माहौल रहा होगा उस चीज को याद करके शायद अभी भी सिरन होती होगी मुझे।
1: हम लोग तो मौत के मुंह से ही वापस आए थे। वैसे अवसर पर कभी दुस्साहस नहीं करना चाहिए, आप साहस करते हैं, दुस्साहस कभी नहीं होना चाहिए,
0: सजग रहना जरूरी है।
1: तो हमें वो घटना कभी,
0: वो तो ईश्वर का ये रहा आशीर्वाद रहा कि सब सुरक्षित निकल आए, दोनों ऐसे जो दोनों घटनाओं की आपने बात की। तो श्रोताओं आप भी सुन रहे होंगे अनिल सर से कि कितना दुरूह हो जाता है कई बार आकाशवाणी में काम करना, आकाशवाणी के पदाधिकारियों की जवाबदेही। मुझे लगता है सिर्फ रिकॉर्डिंग करना और उसको ब्रॉडकास्ट करना भर नहीं है, लेकिन जब आप बहुत दुरूह क्षेत्रों में जाते हैं और किसी काम को अंजाम देने की जवाबदेही आती है तो हर मुश्किलात का सामना आपको करना ही पड़ता है। और सर इसके बावजूद आकाशवाणी तमाम मुश्किलें हो, तमाम चुनौतियां हो, बावजूद इसके आकाशवाणी रांची ने अब अपने स्थापना के 50 वर्ष स्वर्ण वर्ष का आयोजन किया। उस समय मैंने आपकी बहुत सारी भूमिका देखी और बहुत श्रृंखला में कार्यक्रम आयोजित हुए। सर उन अविस्मरणीय पलों को थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं आज।
1: जी, 2007 में आकाशवाणी रांची का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया था, काफी विस्तृत आधार पर। मैं 2006 के सितंबर में ट्रांसफर होकर आया, उसके पहले निवासन ठाकुर जी ने और शुक्ला जी ने बहुत अच्छे प्रयास से कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 27 जुलाई हमारा स्थापना दिवस है। तो सैयद सिप्ते रजी साहब जो राज्यपाल थे वो उद्घाटन समारोह में आए थे और मैं ठाकुर जी के स्थान पर स्थानांतरित होकर आया था, तो अब वो सारा काम मुझे करना था। तो उसके बाद हम लोगों ने दो तीन बहुत सारे काम साल भर किए, लेकिन तीन कामों की चर्चा, चूंकि आकाशवाणी रांची की बात है
0: जी।
1: एक तो यह है कि जैसे आप अभी मेरा साक्षात्कार कर रही हैं, तो 13 कड़ियों का एक सुनहरे पल का साक्षात्कार कार्यक्रम मैंने किया था
0: जी। एक श्रृंखला
1: चली थी, हर सप्ताह वो कार्यक्रम प्रसारित होता था, उसमें दिनेश्वर प्रसाद जी, श्रवण कुमार गोस्वामी जी, अशोक प्रियदर्शी जी, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जी जैसे लोग
0: साहित्य और कला के क्षेत्र के जाने,
1: उनका इंटरव्यू मैंने लिया। दिनेश लाल जी एडिटिंग और डबिंग का काम करते थे, राजेश कर्मे जी ने भी बहुत उसमें सहयोग किया था
0: जी।
1: तो वो एक कार्यक्रम उन्होंने किया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक योजना बनी कि 50 वर्ष है, उसके बाद तो 75 वर्ष होगा या 100 वर्ष होगा, तो हमें एक स्मारिका निकालना चाहिए आकाशवाणी रांची। इन 50 वर्षों में आकाशवाणी रांची ने क्या क्या किया है, तो मेरे सामने वो स्वर्ण तरंग है, लेकिन
0: मैं भी देख रही
1: विजुअल नहीं है,
0: लेकिन मैं देख रही हूँ लेकिन और मैं उसको लेकर आया भी कर रही हूँ,
1: मैं उसको लेकर आया हूँ। ये स्मारिका हम लोगों ने निकाला था,
0: बिल्कुल, जो स्वर्णिम इतिहास है वो पूरा अंकित है
1: पूरा। और आपको आश्चर्य होगा इसके जो विषय लिए गए और इसके तीन कमेटियां बनाई गई, संपादक मंडल, वित्त समिति और प्रबंध समिति
0: जी।
1: तो स्वाभाविक था संपादक मंडल में मैं था और आत्मेश्वर झा थे और गौतम सेन गुप्ता साहब थे, गनोरी जी भी थे और श्याम किशोर सिंह को भी हमने रखा था। फिर ये ऐसे कार्यों के लिए आकाशवाणी के पास कोई फंड नहीं होता है, हमें विज्ञापन लेने थे, हम लोगों ने मैकॉन वगैरह सबसे विज्ञापन लिए, बहुत सारे विज्ञापन लिए, उससे फंड आया, तब से तब ये छप आया। और उसके बाद एक ये इसमें जो विषय लिए गए वे सारे के सारे विषय, रेडियो नाटक और शिल्प सिद्धनाथ कुमार, झारखंड के लोकगीत गिधाय राम गोंझू, हिंदी साहित्य और आकाशवाणी अशोक प्रियदर्शी, आकाशवाणी को हम नहीं भूल सकते विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, आकाशवाणी रांची की उपलब्धियां श्रवण कुमार गोस्वामी, आकाशवाणी और रंगमंच कमल कुमार बोस, स्वस्थ चर्चा और आकाशवाणी डॉक्टर धर्मेंद्र,
0: मतलब
1: यानी उस क्षेत्र के
0: तमाम चीजों को समेटने की कोशिश,
1: लकड़ा जी के और विजय लक्ष्मी सिन्हा जी का इसमें ये भी था अनुभव, संस्मरण भी था। जो आकाशवाणी जिन जिन कार्यक्रमों करता है उसके जो विशेषज्ञ लोग थे उनसे हम लोगों ने आलेख लिए,
0: बिल्कुल।
1: और इसमें जो शुभकामना संदेश हमें मिले वो सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती के CEO, DG, ADG सबके मिले,
0: मतलब भारत सरकार से लेकर यहाँ तक
1: सबके मिले, मुख्यमंत्री के मिले, गवर्नर के मिले, सबके मिले, काफी प्रयास किया गया। एक तो ये काम हुआ, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कम 50 वर्षों का इतिहास तो लोग कभी लौट कर पढ़ेंगे तो जान जाएंगे आकाशवाणी रांची क्या था,
0: और एक यादगार
1: क्षेत्र में और एक मूलवासी आदिवासी क्षेत्र में आकाशवाणी रांची ने बहुत सारा काम किया है, ये तो मैंने भी महसूस किया जबकि मैं दिल्ली और आकाशवाणी भागलपुर में भी रह चुका था उसके पहले। तो ये संस्मरण कार्यक्रम के प्रस्तुति से ज्यादा अच्छा है कि लोग जाने कि कार्यक्रम अधिशासी को प्रशांत जी हैं अभी है, इस कार्यक्रम को समझो
0: क्या कुछ करना पड़ता
1: क्या
0: है,
1: क्या करना पड़ता है,
0: टॉकर को इनवाइट करना या प्रोग्राम को की रूपरेखा बनाने लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उसको प्रसारित करने से लेकर जो आपके आमंत्रित अतिथि होते हैं उनको पेमेंट तक की जवाबदेही पूरी की पूरी
1: बिल्कुल। और आपको टेलीफोन भी आने लगेंगे अगर आपको चेक नहीं जाएगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा, आप ये मत समझिए कि आप उसमें पूरा आम अफसर हैं।
0: बिल्कुल सर, इस समय
1: एक और मैं बताऊं, स्वर्ण जयंती वर्ष की एक
0: जरूर
1: अंतिम समय में हमने 3 दिनों की एक यहाँ प्रदर्शनी आयोजित की थी, ये भी अपने आप एक अनोखा था
0: जी।
1: 3 दिनों तक प्रदर्शनी आकाशवाणी रांची के सफर पर, और उसका उद्घाटन उसमें जो वाइस चांसलर थे रांची यूनिवर्सिटी के खान साहब उन्होंने किया था, और वो उस प्रदर्शनी में हम लोग तो थे ही लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, देवी राय जी, रमाशंकर जी और केसी सिन्हा जी, लोगों ने काफी सहयोग किया
0: जी।
1: और आकाशवाणी का काम एक टीम वर्क है, हमेशा याद रखिए,
0: बिल्कुल
1: एक स्टेशन डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, एडमिशन चलाएगा, हम पैक्स भी नहीं कर सकते अगर हमारा ड्यूटी अफसर का अनाउंसर का सहयोग ना मिले, एक टीम वर्क है, ड्राइवर न मिले हम वो भी में न जाए, भैया ध्यान अंकर न करे हो ही नहीं सकता, वो ऑफिस का काम ही नहीं है वो,
0: बिल्कुल साझा प्रयास।
1: इंजीनियरिंग स्टाफ ने भी बहुत मदद की थी, कैसे 3 दिन का आयोजन जो हुआ था उसमें जब खान साहब आए और उन्होंने उद्घाटन किया तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में एक दिन छुट्टी कर दी थी
0: कि लोग आए,
1: पत्रकारिता विभाग के लोगों को कहा कि तुम 3 दिन वहां जाओ देखने के लिए
0: जी।
1: और पत्रकारिता विभाग के सारे लोग यहां आते थे, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, आपको आश्चर्य होगा कि रांची के पास बहुत समृद्ध परंपरा है और है इसके पास सामान, भले हुआ क्या कि 50 वर्षों में जो वाद्य यंत्र थे जो परिवर्तन हुए सारे वो उसमें,
0: अच्छा
1: तंबूरा जो कि आजकल यूज में नहीं आता है, अगर यहाँ म्यूजिक स्टूडियो में प्रशांत जी कभी खोलकर देखेंगे तो वो उसके स्टोर में वो मौजूद होगा, वो जितने पुराने वाद्य यंत्र जो तब्दीली वो हम लोगों ने प्रसारित किया, और जो मशीनें जो तब्दीली हुई कैसे हम लोग जब एडिटिंग करते थे टेप काट के सेलो टेप चेप काटते थे, आज तो बैठ करके एडिटिंग कर लेंगे
0: स्कूल
1: पे करते थे, वो सारे मशीन वहां एग्जीबिट किए गए। और जो सबसे अच्छी बात क्या हुई कि श्रवण कुमार गोस्वामी जी के पास स्थापना दिवस का 1957 का उनको आमंत्रण पत्र गया था, वो पत्र उनके पास था, वो एग्जीबिट हुआ, तो ये हम लोगों ने सारा काम उसमें किया था,
0: बहुत अच्छी कोशिश रही और उन स्वर्ण जयंती के वर्ष को बहुत यादगार आपने बना दिया। और इसीलिए जो उत्साह मैं देख रही हूँ,
1: गौतम सेनगुप्ता साहब का भी नाम लेना चाहूंगा, वे हमारे प्रोग्राम हेड थे और उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया, मैंने बहुत कूल वैसा स्टेशन डायरेक्टर बहुत कम देखा और हमने सीखा भी उनसे बहुत कुछ।
0: बिल्कुल सर, ये तो आपके कामों की बात हुई और बहुत शानदार तरीके से आपने हर चुनौती और हर एक खुशी को आपने शामिल करने और लोगों तक पहुंचाने का काम किया आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिशासी रहते हुए। लेकिन अब जब बहुत सारे चैनल आ गए हैं, हम प्राइवेट तौर पर भी देखते हैं, लेकिन आकाशवाणी की अपनी एक अहमियत है, आकाशवाणी का अपना एक स्थान है, आकाशवाणी की अपनी एक पहचान है, आकाशवाणी की अपनी एक निष्पक्षता है, तो इस निष्पक्षता और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए

0: एक कार्यक्रम अधिशासी या आकाशवाणी से जुड़े लोगों को कैसी छोटी छोटी कोशिशें जरूरी बनती हैं?
1: आकाशवाणी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि आकाशवाणी एकमात्र चैनल है जो भाषा, तथ्य और समय पर कायम रहता है।
0: बिल्कुल,
1: आपने कभी नहीं देखा होगा कि 8:45 का न्यूज 8:50 पर प्रसारित हुआ हो।
0: बिल्कुल,
1: पहले के कार्यक्रम काट दिए जाएंगे लेकिन कार्यक्रम समय पर ही शुरू होगा। हम अभी भी कम से कम, मुझे गर्व है कि आकाशवाणी भाषा पर कायम है। कभी समझौता हम नहीं करते, हम कोई अवांछित शब्द नहीं जाने देते, हम जो ये यार ये वे जो बोलते हैं कभी नहीं होगा। हमारे मर्यादित स्वस्थ परंपरा है ये आकाशवाणी का, ये हम इस तरह से शुरू करते हैं। और तथ्य आकाशवाणी तथ्य पर विश्वसनीयता, तथ्य फैक्ट्स पर काम करता है
0: जी।
1: कल्पना का फीचर आप बनाएंगे, ड्रामा बनाएंगे तो हो सकता है स्थान हो, लेकिन आप जितने भी रिकॉर्डिंग करते हैं, टॉक करती हैं, वो सारे तथ्य पर कायम होते हैं और होते हैं। और आकाशवाणी की विश्वसनीयता मैं बताऊं कि मैं तो, मैंने बताया है शुरू में कि मैं कविता पढ़ने जाता था तो कितना खुश रहता था, लेकिन एक जो बड़ी बात मैं बता रहा हूं, आकाशवाणी की नौकरी में मैं आया ही इसलिए क्योंकि मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया था और मैंने राज्य सरकार की नौकरी छोड़ दी थी। तो आप इसी से अहमियत का पता लगा सकते हैं कि आकाशवाणी का मेरे जीवन में कितना महत्व रहा होगा।
0: बिल्कुल, और बहुत अच्छे, बहुत यादगार से पल रहे होंगे, जिन यादों को आप समेट कर हमारे सामने ला रहे हैं, हमारे श्रोताओं के सामने ला रहे हैं, वो रोमांच मुझे नजर आ रहा है, हम अनुभव कर पा रहे हैं। सर, आकाशवाणी की ये यात्रा ऐसी ही चलती रहे, हम सब लोग जो इससे जुड़े हैं उनकी यही कोशिश रहती है। तो सर, बहुत मन करता है कि बहुत सारी बातें, क्योंकि इतने अनुभव आपके पास हैं, 33 वर्षों के अनुभव को 33 मिनट में समेटना नामुमकिन होता है। फिर भी समय की, जैसा आपने कहा, समय का बहुत पाबंद होता है आकाशवाणी, तो समय की बंदिशों को ध्यान में रखते हुए चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताना चाहेंगे जो उनके लिए भी यादगार हो और हम सब के लिए यादगार हो जाए।
1: आकाशवाणी कितनी अहमियत वाली संस्था है
0: जी।
1: जब महात्मा गांधी आकाशवाणी दिल्ली गए रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनकी रिकॉर्डिंग के तिथि पर एक आकाशवाणी का वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम भी होता है, आप समझ सकती हैं। उसी तरह कवि गुरु विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जब आकाशवाणी कोलकाता गए थे तो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने एक कविता ही लिख डाली आकाशवाणी।
0: और सर, अगर संभव हो तो आप ये कविता हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा।
1: मैं इसलिए सुना दूंगा क्योंकि उसका एक भावानुवाद मैंने खुद हिंदी में किया है।
0: अंग्रेजी में कविता,
1: हाँ, कविता अंग्रेजी में थी। मुझे लगता है मूल कविता बंगला में ही होगा क्योंकि जब गीतांजलि को भी पुरस्कृत किया गया नोबेल प्राइज से, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था। लेकिन मेरे पास वो, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तो उसके कुछ कड़ियों पर मैंने कुछ लेख लिखे थे, उन दिनों मैंने यह अनुवाद किया था और ये हिंदुस्तान अखबार ने उसको छापा
0: भी। जरूर, हमारे सभी श्रोता इसे सुनना चाहेंगे सर।
1: तो ये मूल कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की है, शीर्षक है आकाशवाणी। उसका भावानुवाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।
0: स्वागत है सर।
1: आकाशवाणी से आती वाणी को ध्यान से सुनो, आकाशवाणी से आती वाणी को ध्यान से सुनो, मानो पृथ्वी स्वर्गिक यश से नहाई हो। जो नीले रंगों वाला आकाश ईश्वरीय वेदी पर समाया हो, जो नीले रंगों वाला आकाश ईश्वरीय वेदी पर समाया हो, मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण ध्वनि जो पहले सुनी नहीं गई, मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण ध्वनि जो पहले सुनी नहीं गई, पृथ्वी से स्वर्ग तक की दूरी उज्ज्वल प्रकाश और ध्वनि से जीत ली गई।
0: वाह,
1: पृथ्वी से स्वर्ग तक की दूरी उज्ज्वल प्रकाश और ध्वनि से जीत ली गई।
0: जी,
1: आदमी की कल्पना संगीत के रूप में स्वर्ग से आ रही
0: वाह,
1: है।
0: क्या
1: आदमी की कल्पना संगीत के रूप में स्वर्ग से आ रही है और पूरब से पश्चिम तक संवाद सूर्य की रोशनी के समान तेजी से जा रहा है।
0: क्या बात है।
1: मानव मन ने अपने को कर लिया है कैद मुक्त, मानव मन ने अपने को कर लिया है कैद मुक्त और पार लिया आजादी होकर संयुक्त।
0: क्या बात है। मतलब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी आकाशवाणी को इतनी महत्ता दी, इसके संवाद को, इसके संगीत को, इसके साक्षात्कार को अपनी कविता के चंद पंक्तियों में उन्होंने समेटने का काम किया। और सर, आपकी लंबी यात्रा के स्वर्णिम पलों को आपने आज हमारे साक्षात्कार में समेटने का काम किया और हमारे श्रोताओं के सामने रखने का काम किया। तो बहुत सारी बातें हम चाहते हैं और मौका मिला तो हम फिर बातें करेंगे, लेकिन आज यही अनिल किशोर सहाय सर, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका कि हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और इतनी यादों को समेटे हुए आप हम तक आए और बहुत दिल खोल के आपने बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी रांची का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, समय समय पर सेवानिवृत्ति के बाद मुझे बुलाते रहते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष। अनिल किशोर सहाय पूर्व कार्यक्रम अधिकारी से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की।
1: है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आभा का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में। तो चलिए पहली पसंद लेते हैं, सिकंदराबाद से आप हैं किरण कुमार गगन पुत्र और गांधी चौक रोपर पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक, मीका वीरक। और ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिल तुझको दिया का ये गाना, गीत और संगीत राजेश रोशन का।

अगला गाना है फिल्म क्रिमिनल से, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत MM करीम का और गीत लिखे हैं इंदिवर ने। और इस गाने को सुनना चाहते हैं सरगुजवा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। और हैदराबाद से हैं अक्षय कुमार प्रभाकर, जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार।

हमारे अगले श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता गवहानकर और प्रिंस एकांश गवहानकर, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म हमराज का ये गीत। आवाज़ है अलका याग्निक की, बोल समीर के, संगीत हिमेश रेशमिया का।

हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से अमित कुमार और रिंगी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लचनपुर से हैं, विश्वनाथ साहू लेवई से हैं, गुलाब दास मानिकपुरी और दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, और ये सुनना चाहते हैं 1981 की फिल्म सिलसिला का ये गाना, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, जावेद अख्तर ने गीत को लिखा है, संगीत शिव हरी का।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में, नक्स लयालपुरी की रचना है, संगीत खयाम का, फिल्म है खानदान। और इस गाने को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय।

0: बहनों नमस्कार, हृदय तल से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आपकी अनदेखी सी उपस्थिति भी हमें आपके आत्मीय साथ का एहसास देती है और आपका ये स्नेह हमें हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा देता है।
1: कितनी सुंदर बात कही राखी तुमने, तो मन में प्यार और आभार लिए आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं हम दो सखियां राखी और निधि।
0: बिल्कुल, आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगी और इस चिलचिलाती धूप और मौसम की बेरुखी में भी अपना ख्याल रख रही होंगी, ये आशा करते हैं हम, है ना निधि?
1: हाँ बिल्कुल, हमारी बहनें अपना ख्याल तो रखती हैं और पूरे परिवार की देखभाल की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है ना राखी? तो सखियों, हरे भरे पेड़ पौधे, बलखाती नदियाँ, तालाब, झील, झरने, पक्षियाँ, और इन पक्षियों का
0: जो कलरव है,
1: लहलाते खेत हैं, मन का सारा तनाव हर लेते हैं। क्योंकि राखी ने बात की चिलचिलाती धूप की, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी तरफ ले चलूं अपनी सखियों को।
0: और थोड़ी ठंडक तो महसूस हो।
1: बिल्कुल, ठंडक ना सही लेकिन अगर शब्द भी ऐसे है ना राखी कि हम बिल्कुल उसी दुनिया में चले जाते हैं, है ना?
0: और हमारी प्रकृति हमें जीवंतता देती है, हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, हमारा जीवन इसी पर निर्भर है।
1: शुद्ध पर्यावरण, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु हमारे जीवन की आवश्यकता है बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसे बनाए रखने में हमारा ही योगदान है। आजकल आधुनिक जीवन शैली में हम प्रकृति का जो अंधाधुंध जो दोहन कर रहे हैं, इसे हमें रोकने की बहुत जरूरत है।
0: बिल्कुल, कटते हुए पेड़ और बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगल ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं ये बता रही हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति अब हमें सचेत होना ही होगा।
1: हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रकृति क्रुद्ध अगर होगी तो इंसान असहाय हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के सामने हम सभी बेबस हैं।
0: हाँ, हमें हमेशा देखने को ही मिल रहा है आए दिन कि प्रकृति कैसे क्रुद्ध हो रही है और कैसे इंसान असहाय महसूस कर रहा है, और हमें समाधान ढूंढना होगा। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण की रोकथाम, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, ये सब बेहद ज़रूरी है, जो कि हमेशा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन इसे दैनिक जीवन में प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है।
1: हाँ, और इसे इस पर हम अमल करते हैं लेकिन उतना नहीं जितना हमें करना चाहिए, वैसे जानकारी तो हम सभी के पास है। तो बहनों, इसकी शुरुआत घर से ही की जा सकती है। बिजली की बचत करें, पानी की बूंद बूंद बचाएं, और बच्चों को भी सिखाएं कि रोज़मर्रा के कामों में पानी कैसे बचाना है, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, तो हम बड़े ही उनको सिखा सकते हैं, और बहुत ही कम उम्र से ये सब बातें जो हैं वो सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे जो हैं ना राखी, उनको पानी से खेलना भी बहुत पसंद होता है, और इसी क्रम में वे पानी बर्बाद करते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जैसे
1: हमारी जिम्मेदारी है उन्हें बताने।
0: हाँ, ब्रश करते समय या स्नान करते समय, हर समय, जैसे कभी कभी हम लोग नल खुला छोड़ देते हैं, कभी झरने खुले छोड़ देते हैं, ये सब जो है ना, इससे बहुत पानी बर्बाद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ें बहनों को सिखानी होगी, बच्चों को भी, और खुद भी वैसा ही करें, और पौधे लगाएं और उन्हें संरक्षित करें। जीवन के विशेष दिनों में पौधे उपहार दें, हर जन्मदिन कुछ पौधे अवश्य लगाएं, हर किसी के जन्मदिन पर, जैसे अगर घर में चार सदस्य हैं तो चारों अपने अपने जन्मदिन पर अगर पौधे लगाएंगे तो चार पौधे लग गए, है ना? और एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान का हिस्सा जरूर बहने।
1: बहुत सुंदर बात बताई कि अगर हम पेड़ लगाएं कुछ ऐसे अवसर पर तो हमें याद भी रहेगा, क्योंकि अपना जन्मदिन और खास दिन जीवन का तो हमें सबको याद रहता है। तो उस दिन ये भी याद रखें कि हमें एक पौधा जरूर लगाना है।
0: बिल्कुल, और हरियाली की रक्षा तो हमें ही करनी है। समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं सखियों, जहां पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं ने आगे बढ़कर भूमिका निभाई है। वृक्ष माता कही जाने वाली जो सालोमर्दा थिमक्का का ही उदाहरण अगर हम लोग लें, तो उन्होंने 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए थे। और ऐसी कई बहनें हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम सामने भले ना आए लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं।
1: बहुत सारे लोग हैं इस दिशा में जुड़े हुए हैं।
0: हाँ,
1: और लगातार वो प्रकृति की गुणवत्ता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो बहनों, क्या हम भी ये प्रयास नहीं कर सकते, जब एक इंसान, जैसा कि राखी ने बताया कि 8,000 पौधे लगा सकती हैं, तो एक पौधा तो हम जरूर लगा सकते हैं
0: बिल्कुल,
1: और
0: ये नीला गगन, ये हरी भरी
1: हैं।
0: धरती है ना, ये सब हमारी ही तो है ना,
1: है सचमुच। और प्रकृति को जब हम सशक्त बनाएंगे और बहुत ही अच्छा बनाएंगे तो लाभ हमें ही मिलेगा।
0: हाँ,

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
5: अच्छा,
2: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: हम भी ना मम्मी जी।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
6: बहनों, हम पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
7: हाँ, और निधि, अभी अब कुछ जानकारियाँ दिलवाएंगे बहनों को हम। आज का विषय हमने रखा है जलवायु परिवर्तन की समस्या और हमारा दायित्व। इस संबंध में जानकारी दे रही हैं राखी, और उनसे बातें कर रही हैं हमारी रेडियो सखी निधि। तो आइए सुनते हैं बहनों ये भेंट वार्ता।
8: आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट बन चुका है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे भावी पीढ़ी बहुत प्रभावित हो सकती है। यह हमारे पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इससे लड़ना केवल सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का ही काम नहीं है, बल्कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए इसी संदर्भ में बातचीत करते हैं राखी जी से। राखी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
9: नमस्कार।
8: सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन क्या है?
9: अभी मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान आप देख रही होंगी कि कभी बढ़ता ही जा रहा है, कभी अचानक बारिश हो रही है, कभी गर्मी आया जैसा लग रहा है। तो जो ये मौसम का जो पैटर्न में जो चेंज आया है, तो हम उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अगर हम अपने क्षेत्र में पहले के तुलना में भी देखें, और जो यहाँ के लोग पहले के जो लोग देखेंगे, तो वो पाएंगे कि पहले यहाँ पे अच्छे से गर्मी भी नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी के मौसम को आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि सुबह में बारिश हो रही है, शाम को धूप निकल के गर्मी हो रहा है। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसी को जलवायु परिवर्तन।
8: हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जैसा हम आशा करते थे कि कोई मौसम इसी समय में आएगा, तो उसमें हम काफी बदलाव देखते हैं। और ये आपने सही कहा कि बारिश और आंधी, इसके बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते, और बहुत अचानक से मौसम में बदलाव आ जाता है। तो ये सब हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, और इसे ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन जो है, अब ऐसा लगता है कि हर वर्ष ही हमें देखने को मिलता है, तो ये एक हम कह सकते हैं कि स्थायी चीज बनती जा रही है। और अब हमें ये बताएं कि इसके कारण क्या हैं?
9: ये बहुत कारण है इसके तो, लेकिन जैसे वो हम लोग का जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, जैसे कि हम लोग जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला का चूल्हा या फिर लकड़ी जला रहे हैं, या फिर खेत में खरपतवार और धान का जो ये बस्ता उसको जला रहे हैं, तो उससे तो पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ज्यादा फैल जाता है।
8: बिल्कुल।
9: और इसके अलावा हाँ, मवेशी के मुंह से, माने मवेशी से मिथेन गैस का जो निकलता है वो भी इस क्लाइमेट को चेंज करता है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसका बहुत बड़ा कारण है, कारखाना से धुआं जो निकल

0: है, वाहन जो इतना चल रहा है, मतलब बहुत सारे चीज मिलके अभी वायु का क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं इसके, और इसमें
0: और पेड़ भी उतने ही कटते जा रहा है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे मुख्य बात आपने बताई कि पेड़ की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है उससे भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जल चक्र इससे बिल्कुल प्रभावित हो गया है। और वायु प्रदूषण कहने का मतलब है कि इसका मुख्य कारण है, और वायु का जो स्तर है वो बिल्कुल गिरता जा रहा है, खासकर दो गैसों की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और ये तो हो गए इसके मुख्य प्रभाव, लेकिन इसके और कौन कौन से अन्य प्रभाव हैं इसके बारे में हमें बताएं।
0: उसके प्रभाव आप देखेंगी तो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, साथ ही मौसम भी इससे प्रभावित हो रहा है। कहीं हम लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है, कभी तेज आंधी आ जाता है, कभी कहीं पे सूखा पड़ रहा है। समझिए कि ये सारा ही जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जो पहले नहीं था, तो ये सब जो है वो पेड़ पौधा और पशु पक्षी सब पर गलत असर पड़ रहा है।
1: हाँ
0: जिसकी
1: बिल्कुल,
0: वजह इसके लिए हमारा मैंने इसी की वजह से हम लोग को जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और इससे हम लोग में भी, हम लोग के जनजीवन में भी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में अधिक गर्मी पड़ने से या अधिक बारिश होने से आप देख रही होंगी कि हम लोग के भी स्वास्थ्य पे हानि हो रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि अचानक से मौसम में परिवर्तन होने से हमारा भी स्वास्थ्य बिल्कुल प्रभावित हो रहा है, लोग बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं इससे। और जो आपने कहा कि पशु पक्षी जो हैं वो भी सभी पेड़ों पे ही निर्भर करते हैं, और मौसम का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, और जितनी भी जैव विविधता है यानी कि, तो वो सभी प्रभावित हो रही है। और तापमान बढ़ने से आप एक और चीज भी हम देखते हैं कि फसल पकने का समय या जिस तरह से फल तैयार होते थे पेड़ों में, वो
0: हाँ
1: सभी चीजें जो है वो प्रभावित हो रही हैं। तो इसके मुख्य कारण तो आपने बता दिए, और इसके और भी मुख्य कारण के साथ साथ और भी छोटे छोटे जो प्रभाव हैं वो हमारे जीवन में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो अब हमें ये बताएं कि इसका समाधान क्या है। यूं तो हम इसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कौन कौन से हम कदम उठा सकते हैं और इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं इसे कम करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए, और साथ ही हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए।
0: ठीक है, इसके लिए हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें पेड़ पौधा बहुत ज्यादा लगाना चाहिए। वृक्ष
1: हाँ।
0: का हम लोग को पूरे वृक्षरोपण पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा है ऊर्जा संरक्षण करें, जैसे कि हम लोग बिजली का खपत कम करें। जैसे बेकार में जो बिजली जल रहा है, आप कहीं देखेंगे कि एक घर है तो उसमें 6 कमरे हैं तो 6ों में पंखा बिजली सारा जल रहा है,
1: बिल्कुल
0: कोई है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का ऊर्जा को हम संरक्षण करें। उसके लिए आजकल बहुत सा उपकरण आया हुआ है, जैसे LED है और 5 स्टार वाले जितने भी उपकरण है उसका हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। और पर्यावरण के अनुकूल जैसे परिवहन का इस्तेमाल के लिए हम लोग को निजी वाहन को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग निजी वाहन एक गाड़ी लेके एक आदमी जाना है, उससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जैसे मेट्रो हो गया, बस हो गया। और अगर हम साइकिल का भी इस्तेमाल करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और वातावरण के लिए भी अच्छा है।
1: हाँ बिल्कुल, और
0: अगर छोटा दूरी है तो हम स्कूटी नहीं निकाल के खुद पैदल चले जाएं।
1: बिल्कुल, साइकिल की सवारी तो बहुत ही लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, और पर्यावरण अनुकूल भी है। और साथ ही प्लास्टिक वगैरह के उपयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी।
0: हाँ, ये तो है कि हमको जैसे हम लोगों को 3 R जिसको बोलते हैं ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का सच कुछ तो हम लोग को पालन करना चाहिए। प्लास्टिक
1: हाँ,
0: हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खराब होता है, तो इसके
1: हाँ
0: लिए है कि हम जितना या तो हम लोग प्लास्टिक को यूज ही नहीं करें और नहीं तो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जल्दी नष्ट नहीं होता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये छोटे छोटे कदम हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उठा सकते हैं, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले तो ऊर्जा संरक्षण और पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो चुकी है, और अगर हम हर व्यक्ति पेड़ लगाता है तो इससे काफी फर्क पड़ता है। बहुत सारी योजनाएं भी ऐसी हैं, अभियान भी ऐसे चलाए गए हैं जिससे कि हमें वन

0: वनों की कटाई को हम किस बहुत हद तक हम भरपाई कर सकें, तो ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो आम नागरिक उठा सकता है, तो यही हमारा कर्तव्य बनता है। राखी जी, आपने अपना कीमती वक्त देकर इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी श्रोता बहनों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: बहनों। अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, विषय था जलवायु परिवर्तन की समस्या और हमारा दायित्व। इस संबंध में जानकारियां दे रही थी राखी और उनसे बातें कर रही थी हमारी सखी निधि। और जानकारियों के बाद फिर से अब बहनों को क्यों न मनोरंजन की दुनिया में ले चलने दे।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ख्याल है राखी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो बहनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, हरियाली बचाने की बात कर रहे हैं, पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, है ना। और इसी क्रम में जो प्लास्टिक का उपयोग ना करने की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें ये भी बात करनी होगी कि उसको कैसे ना कहा जाए, है ना।
4: यूं तो बहुत छोटे छोटे कदम हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम बहुत हद तक पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और जो जलवायु की परिवर्तन की जो समस्या है उससे हम निपट सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारी है ये बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक जो है ये एक विकराल रूप धारण कर रहा है हमारी पृथ्वी पर, तो इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। और इसे हम बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है और इसके जो दूसरे विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हमें जरूर सोचना होगा।
3: बिल्कुल, हम हमेशा कहा करते हैं, बहनों से भी बात करते हैं जब अपने कार्यक्रम के दौरान, कि बाजार जब भी आप जाएं बहनों, तो आप जूट का थैला अपने साथ जरूर रखें। इससे क्या होगा ना कि प्लास्टिक के थैले की जो जरूरत है वो नगण्य हो जाएगी।
4: बिल्कुल कम,
3: और हाँ। सुंदर भी देखने में लगते हैं, अच्छे अच्छे जूट के थैले आते हैं, है ना, उसे लेकर ही जाएं। और बहुत कोशिश करें क्योंकि प्लास्टिक में अगर आप कोई खाने का सामान रखती हैं तो वो जहरीला हो जाता है। सुविधा होती है लेकिन बहुत ही ये जो है जहरीला हो जाता है। प्लास्टिक जब जलाते हैं हम तो उसका धुआं इतना जहरीला होता है कि पूरा वातावरण खराब हो जाता है।
4: बिल्कुल, और अगर हम इसे नालों में फेंक दें या कहीं भी जलाशयों में डाल दें, हाँ। तो वहाँ पे पानी रुक जाता है और ये भारी समस्या पैदा कर सकता है। तो प्लास्टिक ज़मीन में भी प्रदूषण पैदा करता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर प्लास्टिक इकट्ठा होते जाए तो वहाँ समझिए कि एक प्लास्टिक का पहाड़ सा बन जाता,
3: हाँ।
4: है, क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है दूसरी चीज़ों की तरह, तो ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकता है,
3: पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है बहनों। और हम सबों को मिलकर छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा इसे ना तो कहनी ही होगी, क्योंकि ठीक है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसको रोजमर्रा के जीवन में अपनाना पड़ेगा। और
4: हाँ,
3: देखो ना निधि, बातें करते करते घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब लेनी होगी बहनों से विदा, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब अगले कार्यक्रम के लिए रखते हैं।
4: बिल्कुल, क्योंकि बातों बातों में तो पता ही नहीं चलता समय का। तो बहनों, हम आपको बता दें कि आज

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में। आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं। यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाश गंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के

0: बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: तभी तो ऐसा हो रहा है।
3: महाराज की
4: महाराज की महाराज की महाराज की।
5: बहुत अच्छे से शासन कर रही
2: है। खास ऐलान।
1: शांत शांत। आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
3: बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
3: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज,
6: आप
7: संसार में
6: आप
7: सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी महाराज,
3: महाराज की जय हो।
6: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
3: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
3: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
3: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
3: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
7: हुआ? मुझे भी कैसे हो सकता है
3: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
7: कैसे
3: था?
7: नकली कैसे आ गया?
3: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
4: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय।
8: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
3: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
8: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
3: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
8: क्या? और कोई शंका?
3: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
8: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी।

0: ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार

0: होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है, उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं, इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: points to 23,374 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कहा एक पेड़ मां के नाम अभियान से बढ़ रहा है हरित क्षेत्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से दो दिवसीय झारखंड दौरे पर, संगठनात्मक बैठकों के साथ राज्य के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सिपाही नियुक्ति परीक्षा के 888 अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत, अदालत ने राज्य सरकार और चयन आयोग को नियुक्ति पर पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति ने बस किराए में 18% बढ़ोत्तरी का लिया निर्णय। और श्रीनगर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पी विशाल और ईशान सिंह ने जीते स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रकृति संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और हरित भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री मरांडी ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल करे और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखे। हजारीबाग में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियाली महोत्सव की शुरुआत की गई। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस मॉनसून में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
2: गुरु के भांति भी इस बार भी 1 लाख पौधा लगाने का संकल्प किए हैं। तो सारे लोगों से, आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को मोटिवेट करें कि जो हजारीबाग को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है, सारे लोग एकजुट के होंगे तभी इस मुहिम को पूरा किया जा सकता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम संभव नहीं है।
1: धनबाद मंडल के रजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुविधा और सहायता के लिए रांची, मूरी तथा लोहरदगा रेलवे स्टेशनों पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अद्यतन जानकारी के लिए सहायता केंद्रों से संपर्क करने की अपील की है। रांची लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज अरगोड़ा चौक स्थित मोहन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल और रक्षा मंत्रालय के उपक्रम मिधानी के सीएसआर सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
3: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
1: newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे तथा पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि दौरे के दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
3: नितिन नवीन जी 2 दिवसीय सांगठनिक दौरे पर आ रहे हैं। कई बैठकों में जाएंगे, मंदिर का भी उनका भ्रमण है और मंदिर में भी वो माँ की दर्शन करेंगे। यहाँ हमारे ऑफिस ब्यूरो से भी बात करेंगे, कोर कमेटी से भी बात करेंगे। लगातार उनके जो प्रवास है संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बड़ा लंबा समय बीता है रांची में, तो हम बहुत उत्साहित हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले दौरे से, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई ऊर्जा का संचार करके वो जाएंगे।
1: झारखंड सिपाही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2015 से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय ने 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को रिक्त पदों के विरुद्ध इन अभ्यर्थियों के दावों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति की कल हुई बैठक में बस परिचालन में आ रही समस्याओं पर चर्चा के बाद सभी रूटों पर बस किराया 18% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे विभिन्न रूटों पर किराए में 40 से 100 रुपए तक की वृद्धि हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बस किराए में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। चतरा सदर अस्पताल में अत्याधुनिक आईसीयू सेवा शुरू कर दी गई है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि आईसीयू सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी।
4: शुभारंभ हो रहा है, इस आयुक्त से है, यहाँ के नए सिविल सर्जन है और इनकी रणसिंहता के कारण हम यहाँ पर आईसीयू का नया शुभारंभ किया था। अभी तक हमारे यहाँ शहर में आईसीयू जो गहन चिकित्सा की व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं थी।
1: गढ़वा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ योजनाओं में राशि निकासी के बाद ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर चले गए हैं।
5: बैठक में मुख्यतः कार्रवाई के लिए कहा गया था, उसी का अनुपालन प्रतिवेदन देखा गया, तो जिस विभाग के स्तर से कमियां पाई गई थी उसको इंगित किया गया कि ये आपके अनुपालन प्रतिवेदन में इस चीज की कमी है और भविष्य में ऐसा नहीं करने पर जिस भी विभाग के द्वारा उसमें कमी पाई जाएगी उस विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक बढ़कर 23,441 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। श्रीनगर में आयोजित प्रथम प्रोफेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पी विशाल और ईशान सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि आयुष राज, सिया शुक्ला, रिधिमा सिंह, नीरज लकड़ा और अद्या लिया ने रजत पदक हासिल किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कहा एक पेड़ मां के नाम अभियान से बढ़ रहा है हरित क्षेत्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से दो दिवसीय झारखंड दौरे पर, संगठनात्मक बैठकों के साथ राज्य के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सिपाही नियुक्ति परीक्षा के 888 अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत, अदालत ने राज्य सरकार और चयन आयोग को नियुक्ति पर पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति ने बस किराए में 18% बढ़ोतरी का लिया निर्णय, और श्रीनगर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पी विशाल और

शान सिंह ने जीते स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में अनीता सेन को।

0: उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में आप सुन रहे थे अनीता सेन को। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत में गजल।
1: आज जाने की
0: आवाज है आशा भोसले की।

एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे गजल आशा भोसले की आवाज में। थोड़ी ही देर में मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार का प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से।

0: foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Center grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for the current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Karnal to arrive in New Delhi on three-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey in Japan this evening. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees spanning the road, power and industrial sectors. The Prime Minister will first visit Hajira and will review ongoing industrial and infrastructure operations before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees, including major healthcare and aviation infrastructure to the nation, besides laying foundation stones for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. We have a report from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new terminal building of Namo Airport and modern Namo Hospital in Daman today, strengthening the regional air connectivity and healthcare access for the Union Territory. He will also lay the foundation stone for several landmark infrastructure projects, including the iconic bridge, Daman Convention Center and NIFT Campus. In a significant step for maritime development, Prime Minister will additionally lay the foundation stone for port projects worth 885 crore rupees for the Union Territory of Lakshadweep. These projects will develop multipurpose jetty on Kalpeni and Kadmat Islands, enabling year-round berthing for large passenger and cruise vessels while supporting the local fishermen with integrated fish handling and boat repair facilities.
2: Aparna Khun, Akashvani News, Surat.
0: The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. The ministry added that the exemption will apply to any interest or capital gains arising to foreign portfolio investors on or after 1st April in respect of investments in government securities. It said similar income tax exemption is also provided for the Bank for International Settlements for any interest or capital gains from its investments in government securities. The ministry said this will ensure stable, systematic inflow of durable, patient foreign capital and long-term investors such as pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds. The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. Accordingly, the standing deposit facility rate remains at 5% while the marginal standing facility rate and the bank rate continue at 5.5%.
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: The RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downwards to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank has also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. While inflation is expected to remain within the target range, rising fuel prices and higher input costs could exert upward pressure on prices in the coming months.
3: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
0: Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% down during afternoon trade today. The Sensex lost 289 points to 74,071, while the Nifty dropped 100 points to 23,317 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading over 0.5% down, while small-cap 100 index fell 0.3% a short while ago. Union Home Minister Amit Shah today outlined a comprehensive border security vision while addressing border security force personnel at the Lankamura border outpost in Tripura. Emphasizing border security, the Home Minister said the government is determined to prevent illegal demographic changes along border areas of Tripura, West Bengal and Bihar. He informed that approval has been granted for the construction of 119 kilometers of new fencing to replace aging sections of the border fence. Mr. Shah also unveiled a smart border strategy aimed at integrating advanced technology with local civil administration to strengthen border management. A pilot project of the integrated model will be launched at 7 to 8 locations next year before wider implementation.
4: Our government is firmly committed to prevent illegal demographic changes in the border regions of Tripura, West Bengal and Bihar. To safeguard the demographic balance and strengthen border security, we have undertaken extensive border fencing measures in these areas.
0: A total of over 70,000 applications have been received through the CBSE post-result grievance redressal process from Class 12 students. This includes 7,314 applications for verification of marks and over 63,000 applications for re-evaluation. CBSE had opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers on Tuesday. Following the declaration of Class 12's results on the 13th of May, a section of students expressed dissatisfaction with marks awarded and questioned the accuracy of evaluation under the on-screen marking system OSM. The Ministry of Education initiated a review of the implementation and procurement aspects of the OSM system, including examination of vendor performance, contractual obligations and quality control mechanisms. President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards to 65 eminent personalities for the year 2026 at the second civil investiture ceremony on the 23rd of this month. Earlier last month, the President had presented Padma Awards to 66 eminent personalities at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. This year, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. BJP President Nitin Naveen has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Party State Chief K. Annamalai from the primary membership of the party. Annamalai had submitted his resignation to the BJP President recently. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Khanal, will be on a 3-day visit to India beginning today. He is visiting India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. During the visit, Mr. Khanal will meet Dr. Jaishankar in New Delhi. In a statement, the Foreign Ministry of Nepal said the two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, today inaugurated 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. The Union Minister also launched a series of environmental initiatives under the nationwide campaign Ek Ped Maake Naam on the occasion. Speaking on the occasion, Mr. Yadav said, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has emerged as a global leader in environmental action.
5: As the world faces environmental challenges, India continues to make significant progress. The country has emerged as a global leader in renewable energy, ranking among the top nations in solar energy capacity, while its forest cover continues to expand. Under the leadership of Honorable Chief Minister Rekha Gupta, the government of Delhi has launched the Dhul Mukt Delhi initiative. Additionally, 19 Namo parks have been developed in Delhi. I encourage everyone to contribute to a greener and healthier future by planting a tree.
0: Speaking on the occasion, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said increasing green cover is among the most important measures for improving Delhi's air quality. She announced that the Delhi government has set a target of planting 15 lakh trees across the city during the current year. During the event, three environmental publications prepared by the Delhi government were also released, which are Working Plan for Delhi, Asola Bhatti Sanctuary Management Plan and Delhi Bird Atlas. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi extended his best wishes to everyone on World Environment Day, saying initiatives like Ek Ped Ma Ke Naam have made significant contributions towards adding nearly 1.1 lakh hectares of forest every year. In a series of posts on social media, Mr. Modi remarked that the day serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan and Prasar Bharati Chief Executive Officer Gaurav Dwivedi today planted saplings under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign at the premises of Akashwani in New Delhi. Talking to Akashwani News, Dr. Murugan appealed to citizens to take a pledge to protect the environment. He emphasized the need to save water, plant trees and protect and conserve them.
6: Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji called the nation to mark a naam ek ped lagane ke liye. Importance of the environment, we have to save the water and we have to plant that.
0: U.S. President Donald Trump has said the United States has been in direct contact with Hezbollah as part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo oxygen parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
7: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रूपये की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
7: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
8: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
7: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
9: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
10: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प पड़ने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
7: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
11: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस, एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
7: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
12: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
7: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से

0: लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को भी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और साथ ही FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त आभा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

होली से पहले उसकी एक ही दुआ होती है, मेरे बाद भी मेरा भारत सुरक्षित रहे। हमारे लिए आज़ादी एक एहसास है पर उनके लिए एक जिम्मेदारी। हमारे लिए तिरंगा एक पहचान है पर उनके लिए सांसों से बंधा हुआ वादा। सलाम करते हैं हम उन फौजियों को जो जीते जी देश के लिए भी हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो मुस्कुरा कर मिट जाते हैं हमारे भारत माँ के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत अनु मलिक का है, आवाज़ें दी हैं सोनू निगम, उदित नारायण, अलका याग्निक और कैलाश खेर ने।

मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ, बसंती रंग साहस, स्वतंत्रता और बलिदान का प्रतीक है, जो देश की खातिर मर मिटने की भावना को दर्शाता है। ये गीत था फिल्म शहीद का, देव कोहली के बोल थे, संगीत था आनंद राज आनंद का, आवाज़ें थी हंस राज और उदित नारायण की। अगला गीत फिल्म बॉर्डर से रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में, रचना अमित भट्टाचार्य की है, संगीत प्रीतम का, फिल्म है लाल सिंह चड्ढा।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक को अचानक स्थगित कर दिया। 25 मई से जारी इस समीक्षा कार्यक्रम को रोककर मुख्यमंत्री आवास में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पार्टी राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है।
1: दोनों सीटों पर जेएमएम उम्मीदवार ये तय हो गया। चलिए, वो हम लोग सारे लोग जो झारखंड मोर्चा का पूर्व में भी परंपरा रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को हम लोग अधिकृत सारे लोग किए।
0: इधर रांची में आज कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार प्रणव झा भी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां चुनाव की रणनीति पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतने की रणनीति और गठबंधन के सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने दावा किया कि गठबंधन के सहयोगी एकजुट हैं।
2: हमारे झारखंड में फेडरेशन अलायंस की सरकार चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट को मिलाकर हमारा 56 हो रहे हैं और 56 को अगर हम आधा करते हैं तो दोनों सीट एकदम आराम से जीतेंगे।
0: राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा आज पहली बार पलामू पहुंची। उन्होंने पलामू, लातेहार और गढ़वा के पुलिस कप्तानों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नक्सल और अपराध की समीक्षा की। बैठक के दौरान संगठित अपराध, नक्सल गतिविधियों, नशाखोरी और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। डीजीपी ने नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना की।
3: देख रहा है कि कैसा यहाँ पर स्थिति है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, ऑन ट्राइंग का स्थिति ध्यान है, ये सब रिव्यू हो रहे हैं। ये रूटीन मैटर है, कोई विशेष हम लोग जिला वार रिव्यू कर रहे हैं। गढ़वा है, पलामू है, नंदा है, लातेहार, एक एक जिला का समय लग, काम अच्छी हो रही है, लोग नए हैं, देख रहे हैं, यंग है। जमीन का जो प्रॉब्लम है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रचा है। मेनली डिसीजन जो है उन लोग स्तर से लिया जाता है, पुलिस की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पुलिस बंद।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को लगातार दूसरी बार 5.25% पर यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत रुख को तटस्थ बताया। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान घटाकर 6.6% और मुद्रास्फीति अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देशभर में पौधारोपण किया। रांची के धुरवा में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने पौधा लगाकर राज्य में इस वर्ष 2,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों से पौधों की सुरक्षा करने की भी अपील की।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया है तब से उन्होंने लगातार एक रचनात्मक कार्य के तहत अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है एक पेड़ मां के नाम, यह अभियान की उन्होंने शुरुआत की। आज से लेकर के 21 तारीख तक हम 2,00,000 से ज्यादा पेड़ इसे झारखंड प्रदेश में लगाने वाले हैं।
0: जामताड़ा में भी व्यवहार न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण और न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधे लगाए। इस मौके पर न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण संतुलन और प्राणवायु के लिए पौधे को लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है। उधर पाकुड़ में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन और वन विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके तहत छात्राओं ने वॉल पेंटिंग के जरिए पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज और वन अधिकारियों ने पौधारोपण कर प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। कोडरमा में विधायक डॉ. नीरा यादव के चालक राजकुमार यादव की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 3 जून को 8 साल पुराने जमीन विवाद में यह हत्या हुई थी। थाना प्रभारी पर लापरवाही के आरोपों की जांच डीएसपी स्तर से की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अगला कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंताक्षरी बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Cena.
1: सभी श्रोताओं को आपका नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची और मैं हूं आपकी दोस्त आभा। लेकर आई हूं आपके लिए एक बेहद ही खास मस्ती से भरा शो, सुरों की महफिल नॉनस्टॉप अंताक्षरी। तो अपने चाय के कप को थाम लीजिए और तैयार हो जाइए गाने की इस अनोखी महफिल के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंताक्षरी हमेशा से माँ अक्षर से शुरू होती है।

ये था नॉनस्टॉप अंताक्षरी का एक छोटा सा सफर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और सुरीली धुनों के साथ। तब तक के लिए आभा को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी रांची। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है पर्यावरण। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्री नीतीश प्रियदर्शी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय, और श्री विनय कुमार, ब्यूरो प्रमुख यूएनआई रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकेट्टा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी रांची के स्टूडियो में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को आज पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्यावरण पर ही आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो विशेषज्ञ यहां उपस्थित हैं, श्री नीतिश प्रियदर्शी पर्यावरणविद और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय, और श्री विनय कुमार स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार झारखंड और ब्यूरो प्रमुख यूएनआई रांची। तो मैं पूनम करकेटा आप सभी का स्वागत करती हूं। शुरुआत करते हैं हम श्री नीतिश प्रियदर्शी सर से। हम आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और विश्व भर में पर्यावरण हर देश अपने स्तर से भी मनाता है पर्यावरण दिवस, इसकी क्या महत्ता होती है ये बताइए।
1: देखिए, पर्यावरण दिवस जहां तक मुझे लगता है हम लोगों को हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण

0: रखना होगा। और पर्यावरण इसलिए हमारा काफी जरूरत है क्योंकि पर्यावरण से ही हमको सब कुछ मिलता है। जो हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, एम्बिशंस देखते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, सब देख रहे हैं, धरती पर विचरण कर रहे हैं, इसलिए कि पर्यावरण हमको बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए पर्यावरण को वो रिस्पेक्ट देना होगा जो उसकी जरूरत है। वो हम रिस्पेक्ट जब तक नहीं देंगे पर्यावरण को, तो हमें फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण से ऑक्सीजन मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है। वही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे।
1: जी जी विनय कुमार जी, हम मना तो रहे हैं पर्यावरण दिवस, सरकारी स्तर पर मना रहे हैं और सरकार अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें हर एक व्यक्ति का क्या रोल होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है आज हम जहां बैठे हैं झारखंड में जी, इस भूमि में जो पुराने आदिवासी लोग हैं आज भी पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं, आज भी जल जमीन और मिट्टी से उनको लगाव है, वृक्ष से लगाव है, वृक्षों को बचाने की बात करते हैं। अब जो उन्नत मानव हैं, जो विकसित मानव विकासशील देश हैं, वो भी अब पर्यावरण की तरफ लौट रहे हैं, उनको भी पर्यावरण की चिंता है, जबकि हमारे आदिवासी समाज के लोग पुरातन काल से पर्यावरण की रक्षा करते रहे, जल बचाते रहे, वृक्ष बचाते रहे, मिट्टी बचाते रहे। तो आप सोचिए कि हमारे जो लोग थे वो कितने साइंटिफिक रूप से आगे थे।
1: बिल्कुल,
2: जो आदिवासी समाज है कितना आगे था, जो हजारों वर्ष पहले ये लोग सोचते थे आज दुनिया के लोग सोच रहे हैं। आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, वो चाह रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा हो और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जन आंदोलन बने, इसके लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है खास करके एग्जाम वॉरियर्स के रूप में, उसमें भी उन्होंने प्रकृति के प्रति सम्मान, जल संचरण, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की चर्चा की है। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पर्यावरण यहाँ का बेहतर हो, देश का बेहतर हो। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि मौसम पर असर पड़ रहा है, कहीं जब गर्मी के मौसम में भी बारिश हो जा रही है, कहीं बारिश के मौसम में गर्मी हो जा रही है, तो ये असंतुलन है, इसको आप पर्यावरण के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं।
1: जी जी,
2: तो पर्यावरण अगर आप नहीं बचाएंगे तो आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ही कष्टकारक होगा। तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाले समाज के लिए अभी से अगर सचेत और सजग नहीं हो जाएंगे तो फिर जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण पर खास करके केंद्र सरकार पिछले 12 वर्षों में काफी जोर दे रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे वो वृक्ष लगाने के लिए, अब प्रधानमंत्री की एक और योजना थी एक पेड़ माँ के नाम, अब कितनी अच्छी योजना थी कि अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएं। हर आदमी अगर एक एक पेड़ लगा रहा हो तो हमारा देश 140 करोड़ का है।
1: जी जी, इसी में मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। इसके तहत 262 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं पेड़ माँ के नाम के तहत। और सिर्फ ये माँ के नाम नहीं, अगर हम इसे व्यक्तिगत तौर पर भी लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं, खुद अपने लिए भी लगाएं, खुद आने वाली पीढ़ी के लिए भी लगाएं, तो ये और भी इसी से प्रेरित होकर, इसी योजना से प्रेरित होकर ये योजना और भी आगे बढ़ सकती है। अगली बात मैं आपसे करना चाहूंगी प्रियदर्शी जी, कि सरकार ने जो लागू की है प्रतिपूरक वनीकरण यानी कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन, जो नई कॉलोनी बसती है, नए उद्योग लगते हैं, नई सड़कें बनती हैं, तो जो वृक्ष काटने पड़ते हैं मजबूरी में, उसकी जगह नए वन लगाएं, पेड़ लगाएं, तो इसमें किस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम लगा तो रहे हैं पेड़ लेकिन कहीं हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब हम पेड़ काटते हैं तो ये आप जान के रखिए कि उस पेड़ में कितने बासिंदे थे जो उस पर डिपेंडेंट थे, चिड़िया से लेके मनुष्य से लेके सारा कुछ, पूरा एक सिस्टम उस पर डेवलप्ड रहता है पेड़ के चारों तरफ
1: जी।
0: तो आप उस पेड़ को उखाड़ के कहीं, चाहे खत्म हो गया पेड़, चाहे आप काट दिए, पेड़ की मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु के साथ बहुत सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। तो आप जो नया पेड़ लगाइएगा, पहली बात, तो वो पेड़ को पनपने फिर समय लगता है। तो जब भी हम पेड़ लगाने चलते हैं, एक चीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि आप जंगल हटा के पेड़ लगा रहे हैं
1: जी,
0: याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम को हटा के आप एक पेड़ लगा रहे हैं। तो वो चीज ऐसा होना चाहिए कि जो पेड़ आप लगा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, हमको डेवलपमेंट भी चाहिए, आप जंगल हटानी आपकी मजबूरी हो रही है, लेकिन हमको एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़, हम एक भी अगर पेड़ लगाए, हर घर से अगर एक पेड़ लगता है, तो आप खुद अनुमान लगा सकती हैं कि वो आने वाले समय में कितना बड़ा, वो जैसे हमने कहा ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो एक पेड़ भी अगर हम लगाए और उसको बचाएं, तो मुझे लगता है कि आप एक पेड़ क्या, आप अपने क्षमता अनुसार दो पेड़ भी लगा सकते हैं, और जो डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जो मजबूरी है हमारी,

0: तो उसमें आप और भी पेड़ लगाइए, जरूरी है, लेकिन याद रखना होगा कि लोकल वृक्षों को लगाइए, बाहर से पेड़ मत मंगाइए। हमने देखा है रांची में जाकर कई बार ऐसा हो कि जो बाहर से पेड़ आ गया अकाशिया वगैरह, तो वो क्या उखड़ गया तेज अंधड़ में।
1: और बाहर के वृक्ष इन्वेसिव भी होते हैं,
0: इन्वेसिव भी हो जाएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको छोटा सा उदाहरण देता है, आप दशम फॉल जोना फॉल की तरफ जाइएगा तो आपको दिखेगा वहां पुटुस
1: जी लंटाना
0: प्लंटाना व्हाइट व्हाइट इन्वेजन कर रहा है
1: जी,
0: बाहर से आया है। और जो हमारे जो पुराने पुटुस थे रंग बिरंगे फूल वाले वो अब गायब हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखिएगा कि बहुत सी इन्वेजन होगा। अब बाहर वाले पेड़ को लाके लगाइए, जैसे आपका थेथर का पेड़ जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, उसी तरह आपका पार्थेनियम घास घूस आ गया अमेरिका से, तो वो इन्वेजन नहीं हो। आप लोकल पेड़ों को लगाइए, घास जो भी है, गाजर घास वही जिसको पार्थेनियम कहते हैं, आप उसको लगाइए जो कि यहाँ के लोकल पक्षी भी उसको अडॉप्ट कर सकें, मनुष्य भी अडॉप्ट कर सके कि भाई हमारा वही पेड़ है, सब चीज है, वो लगाइए। और लोगों को जागरूकता लाना होगा, क्योंकि हमको याद है कुछ गांव में हमने पेड़ लगाने गए, लोग नीम का पेड़ नहीं लगाने दे रहे थे। हमने गांव वालों को अवेयर किया कि अगर आप एक नीम का पेड़ लगाइएगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहिएगा, एयर पोल्यूशन फिल्टर हो जाएगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, सब बहुत कुछ है, इसकी दवाइयां बनती हैं। इसी दवाई को वर्ल्ड के मार्केट में हजारों रुपये में बेचा जाता है, आपके पास मुफ्त में रहेगा
1: जी।
0: तो बहुत चीज है गांव में अभी भी।
1: आपकी बात से मैं इसी में जोड़ रही हूं
0: जी,
1: आपने लोकल पेड़ पौधों की बात कही, हम यहां लोकल मछलियों की भी बात करेंगे
0: जी,
1: क्योंकि हमारे यहां एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां आती हैं बाहर से, और जब लोग नहीं पाल पाते अपने एक्वेरियम में, उनको मुश्किल होता है, तो हमारे नदियों तालाबों में छोड़ देते हैं, ये कितना घातक है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
0: देखिए, वो मछली को आप लाके छोड़िएगा तो नेचुरली बाहर की मछलियां हैं, उनका सारा सिस्टम अलग होगा
1: जी।
0: और सबसे बड़ी चीज, अगर आप छोटे तालाब में छोड़ दिए रंग बिरंगी मछलियों को, वो तो मर जाएंगी
1: जी।
0: क्योंकि यहाँ की लोकल मछली, उसको जो तेलेपिया वगैरह जो भी है यहाँ का मछली,
1: तेलेपिया तो यहाँ की है नहीं, वो भी
0: बाहर से आई है, लेकिन इनसे पूर्वज हैं
1: जी,
0: यहाँ उनको रखा गया है, तो वो उनको खा जाएंगी, मार देंगी, चाहिए कुछ पानी को टॉक्सिन कर देंगी, तो ये बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि आप देखिएगा, जब भी दो कल्चर का इंटरमिक्सिंग होता है तो क्राइसिस जनरेट होता है। तो मछलियों को तालाबों मत फेंका कीजिए, वो आपके फ्रेश वाटर फिशेज हैं, एक्वेरियम में प्रोटेक्शन चाहती हैं, उनको भी, वो भी जीव है, तो तब वो दिक्कत हो जाएगा, वो मछलियां भी अफेक्ट होंगी, ये मछलियां भी अफेक्ट हो जाएंगी, अब कोई एक मरेगा। तो इसलिए वो सिस्टम में भी करना है, चाहे पेड़ हो चाहे जीव जंतु हो, या इवन मनुष्य भी अगर अपना शहर छोड़कर किसी और शहर में बसता है तो उसको एडजस्ट करने में काफी समय लग जाता है,
1: तो उसकी संस्कृति तो नष्ट हो ही जाती है।
0: होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वो सारी मछलियां जो होती हैं बाहर से आई रहती हैं, इसलिए यहाँ अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी
1: जी। जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी विनय जी, सरकार ने नमामि गंगे के तहत बहुत काम किए हैं, नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ये किसी भूभाग के लिए, किसी देश के लिए कितना जरूरी है।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गंगा तो माँ समान है,
1: बिल्कुल,
2: और जो गंगा नदी का जल है वो इतना पवित्र जल है कि उसमें तो कीटाणु जीवाश्म वगैरह भी पाया जाता है, और कीटाणु तो लगता ही नहीं, वायरस बैक्टीरिया उसमें पनप भी नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि जो गंगा नदी है उसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए, और जो गंगोत्री से गंगा निकलती है, और झारखंड के इलाके में भी गंगा नदी आती है, साहेबगंज का इलाका जहाँ से गंगा गुजरती है बंगाल की तरफ जाती है, तो इस इलाके में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पहल की, और उस पर बड़ा काम हो रहा है देश में, और इसकी चारों तरफ सराहना भी हो रही है। अब आप अभी चले जाइए बनारस में, देखिए जिस तरह से वहाँ घाट का निर्माण किया गया है, हरिद्वार में जिस तरह से गंगा को बेहतर बनाया गया है,
1: संवर्धन उसका,
2: हाँ जी। तो हर जगह गंगा नदी, गंगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत हर जगह काम हो रहा है, और प्रदूषण मुक्त गंगा, जो गंगोत्री में जो सबसे शुद्ध पानी निकलता है गंगा का
1: जी, जी।
2: तो वो पानी हर लोगों को मिले, और जीवन दायिनी कह सकते हैं, जीवन देने वाली है, तो इस पर प्रधानमंत्री का ध्यान गया है। इसके अलावा कई क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो प्रधानमंत्री ने काम की, नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने काम किया, जैसे अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उनका क्रांतिकारी काम रहा है
1: जी।
2: 50% बिजली का उत्पादन जो हो वो गैर जीवाश्म ईंधन के माध्यम से हो, इसको भारत ने प्राप्त किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे पास तो पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, हम विदेश से पेट्रोल लाते हैं, और विदेश से जब पेट्रोल लाते हैं तो हमको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, तो हमारी इकोनॉमी पर भी उसका असर पड़ता है
1: जी।
2: तो अगर हम वो बचाएं, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का जोर है कि भाई आप सौर ऊर्जा से गाड़ी चलाइए, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा घर में करिए। अगर आप सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होगा।
1: बिल्कुल,
2: कार्बन के कारण ओजोन परत पर भी असर पड़ रहा है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का सोच है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, और अगर पर्यावरण बेहतर रहेगा तभी जीवन स्तर बेहतर होगा। पर्यावरण बेहतर रहेगा तो लोग बीमार कम पड़ेंगे। तो हर दिशा में समाज के हर सेगमेंट के लिए केंद्र सरकार काम कर रही, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, और ये उनकी बड़ी उपलब्धि है।
1: जी प्रियदर्शी जी, केंद्र सरकार ने एक बहुत अहम कदम लॉन्च किया 15 अगस्त 2020 को, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करके। और हमारे झारखंड के लिए भी ये खास है कि हमारा जो साहिबगंज का इलाका है, वहां से जो थोड़े से इलाके में गंगा नदी बहती है, वहां भी डॉल्फिन पाई जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये जो परियोजना है, इससे न सिर्फ डॉल्फिन बल्कि ये किस तरीके से पूरे इकोसिस्टम को एनहांस करेगी, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ।
0: देखिए, आप डॉल्फिन छोड़ दिए, आप कोई भी इस तरह की जीव जो हमारे विलुप्त होने की स्थिति में आ गई थी, फ्रेश वाटर डॉल्फिन, समुद्र की बात नहीं हो रही है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन, तो
1: गैंजेटिक,
0: हाँ गैंजेटिक है। और उसमें क्या होता था कि पहले हमको किसको अवेयर करना है, आने वाली पीढ़ी को, बच्चे को। हम मैं बोलने में जरा भी नहीं चकता हूं कि हम लोग का जो एज हो गया, हम लोगों ने पृथ्वी के 40-50% भागों को बर्बाद कर दिया है। अब आने वाले समय बच्चों का, जिसको मोदी जी ने समझा कि भाई हमको इसको बचा के रखना है। तो जो डॉल्फिन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो डॉल्फिन जब पानी में आएगा तो लोग, क्या होता है कि मनुष्य का थोड़ी संवेदना जगेगी पानी के प्रति, नदी के प्रति, कि इसमें डॉल्फिन, और डॉल्फिन को सबसे फ्रेंडली माना गया है मनुष्य से। तो कम से कम ये हुआ कि जो मछली जो हमारी है, क्योंकि देखिए हर जीव जंतु का धरती पर एक रोल है, तो डॉल्फिन का भी एक रोल है पानी में, बहुत चीज का सफाई का उसमें रोल है, पानी को पोल्यूशन फ्री करना, बहुत कुछ है, खूबसूरत लगती है और टूरिज्म करती है। और मछली सबसे सेंसिटिव होती है पानी में, जहां भी क्वालिटी चेंज होगा पोल्यूशन का, कुछ भी होगा, मछली पहले इफेक्ट होती है, तो एक इंडिकेटर भी होती है। तो इसलिए इस नाते डॉल्फिन के हम तो कहेंगे कि बहुत सारी मछलियां जो हैं, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हैं, आप उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए। डॉल्फिन तो है ही है, ये डॉल्फिन की परियोजना तो हम काफी सालों से सुन रहे हैं, गंगा फेज वन, गंगा एक्शन फेज टू, ये सब चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नदियों को, गंगा नदी को स्पेशल माना गया हम लोग के हिसाब से, कि गंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई सारी नदियों को अपने साथ समाहित करते हुए चलती है। तो गंगा माँ का तो रूप ही है, और उसमें लेके सारी नदियों को चले, तो डॉल्फिन वगैरह बचेगी तो टूरिज्म डेवलप करेगा, नदी की क्वालिटी का पता चलता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो हमारी पुरानी, जो मनुष्य के सबसे करीबी जो मछली है वो जीवित रहेगी, आने वाले समय में हम, आने वाली पीढ़ी उसको भी देख के आह्लादित खुश होगी, क्योंकि ये डॉल्फिन है।
1: जी, केंद्र सरकार ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया नदियों के संवर्धन के लिए, फिंगरलिंग्स जो है कार्प की, उंगलियों की साइज की, बहुत भारी संख्या में नदियों में छोड़ी गई, क्योंकि ये निचले स्तर के, लोअर लेवल के प्रीडेटरी सिस्टम में आते हैं, तो जो इससे ऊपर लेवल के जो है उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और ये बहुत अच्छा काम रहा केंद्र सरकार का।
0: बिल्कुल,
1: छोटी मछलियों को नदियों में बड़ी संख्या में
0: डालने का, हाँ।
1: जी, तो इससे जाहिर तौर पर जो बायोडायवर्सिटी है उसको एक सपोर्ट मिलेगा,
0: बूस्ट होता है। जी
1: विनय जी, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन पर भी बहुत काम किया है। आज से कुछ साल पहले तक जो हम देखते थे शहरों की स्थिति, सफाई नहीं रहती थी, अभी लोग सफाई के लिए अवेयर हुए हैं। तो इस स्वच्छ भारत मिशन पर मैं आपसे,
2: महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हुआ, उन्होंने ही स्वच्छता पर जोर दिया था।
1: जी जी,
2: उन्होंने ही कहा था कि आदमी को स्वच्छ रहना चाहिए, वातावरण बेहतर रहना चाहिए।
1: जी,
2: और प्रधानमंत्री ने भी शौचालय का निर्माण कराया, नरेंद्र मोदी भी इन चीज़ों को समझने का उन्होंने काम किया, और जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले शौचालय पर, देखिए है छोटी चीज शौचालय, लेकिन कितनी दिक्कतें होती थी महिलाओं,
1: और कितनी महत्वपूर्ण बात,
2: कितनी महत्वपूर्ण बात है, तो छोटी छोटी चीजों पर उनका, उससे पर्यावरण पर भी असर पड़ा, साफ सुथरा रहने का तरीका आया, बीमारियां कम हो गई, महिलाओं को थोड़ी इज्जत के साथ, हाँ। और उनके रहन सहन का बेहतर एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त भारत बनाने का भी आह्वान किया, और इस दिशा में ज्यादा काम की आवश्यकता है।
1: जी, जी।
2: और आज भी जो पर्यावरण विशेषज्ञ है एनपी शुक्ला, उनके मुताबिक 600 डिग्री तापमान पर अगर प्लास्टिक हम जलाएंगे तब ईंधन हमको प्राप्त होगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम देश में हो,

0: अभी हम लोग क्या करते हैं कि सालाना अगर आप औसत देखिएगा प्रति व्यक्ति, तो 11 किलो प्लास्टिक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: बहुत ज्यादा है,
0: ये बहुत ज्यादा, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा।
1: हम तभी खत्म कर पाएंगे विनय जी, जब हम इसकी जगह एक इको प्लास्टिक ले आए, तपियोका से बनने वाले प्लास्टिक जो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन डिग्रेड हो जाते हैं, पोटैटो से बनने वाले, इस तरह के हम अगर लेकर आए प्लास्टिक,
0: देखिए
1: तो शायद हो सके इसमें थोड़ा।
0: अगर आप देश भर में आप देखिएगा ना, तो 26,000 टन प्लास्टिक कचरा रोज निकल रहा है, रोजाना
1: जी,
0: और इसका 60% ही रिसाइकिल हो पा रहा है
1: जी।
0: तो 40%
1: और जब ये नदियों तालाबों में जाते हैं तो ये क्या वहाँ त्राही मचाते हैं प्लास्टिक के थैले।
0: और अगर 60 बड़े शहरों का अगर आप सर्वेक्षण, जब पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने किया था देश में
1: जी,
0: तो पाया गया कि 4,059 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है प्रतिदिन। तो इसको कम से कम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण अगर बचाना है तो केवल प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, आम लोगों की सहभागिता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, किसी भी योजना
0: हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये मेरा अपना काम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर सफाई करेंगे तो मेरा अपना काम है
1: जी,
0: बेहतर शौचालय बनाएंगे तो मेरा अपना काम है, कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे तो मेरा अपना काम है। अगर हर व्यक्ति, हर भारतवासी, हर झारखंडवासी, हर बिहारवासी अगर ये सोचे कि ये मेरा अपना काम है, अगर आज हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी
1: जी।
0: तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपको पर्यावरण को बचाना पड़ेगा
1: जी।
0: डॉट बॉल के लिए एक पेड़ लगाया जाता है, कितनी बड़ी बात है कि एक बॉल अगर डॉट होता है, मतलब डॉट बॉल मतलब है कि उस बॉल पर गेंद बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाए, तो जितना उस तरह का बॉल हुआ होगा आईपीएल टूर्नामेंट, उतना वृक्ष लगेगा। तो अगर आपका वृक्ष, चूंकि औसतन कहता है बेहतर पर्यावरण के लिए कम से कम 32-33% वृक्ष होना चाहिए जो आपका पूरा क्षेत्रफल, और 33% अगर देश के आंकड़े पर आप दे जाएंगे तो वो है नहीं, इवन झारखंड में भी 33% के आसपास नहीं है, कुछ कम ही है। तो अगर वृक्ष लगाएंगे, अब आप देखिए अगर आप हॉस्पिटल में जाती हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, एक सिलेंडर का कितना कीमत लगता है
1: जी।
0: और पीपल का वृक्ष हो या वृक्ष से जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक पीपल का वृक्ष देश अपने जीवन काल में कितना ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है
1: जी,
0: उसकी कीमत आप जोड़ लीजिए। तो वृक्ष की उपयोगिता यहाँ पर है
1: जी,
0: कि आपको स्वच्छ हवा मिले। अब तो बड़े बड़े शहरों में तो ये है कि वायु को शुद्ध करने के लिए मशीन लगाया जा रहा है, प्यूरिफायर लगाया जा रहा है, घरों में प्यूरिफायर लगाया जा रहा है, जो हमको नेचुरल वे में मुफ्त में मिलने वाली जो चीज है उसके लिए। कहीं कहीं कहीं तो ऐसी भी स्थिति है कि पॉल्यूशन इतना है कि लोगों को ऑक्सीजन लेना पड़ता है।
1: सही बात है।
0: तो इस मामले में अगर आप कहेंगे तो झारखंड अभी भी बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ के जो हम शुरू में आपसे कहे कि जो आदिवासी समाज हमारा है वो ज्यादा साइंटिफिक डेवलप्ड समाज,
1: उनका जो इंडिजिनस
0: की बात करते हैं वो हजारों साल पहले से वो इन चीजों को जानते थे कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए।
1: उनका जो इंडिजिनस नॉलेज है वो आज भी काबिले तारीफ है, और उनके नॉलेज को आज के बच्चे, उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कैसे वो लोग इस तरीके से समझते थे, वो कैसे समझते थे कि इस जमीन के नीचे पानी का स्रोत है, वो कैसे पता लगाते थे, उनके पास तो कोई आधुनिक मशीन थी नहीं, लेकिन उनका पता लगाने का तरीका बहुत यूनिक था, क्योंकि वो प्रकृति को समझते थे, वो प्रकृति को जीते थे, साथ में रहते थे। प्रियदर्शी जी, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा काम किया है वेटलैंड के संवर्धन के लिए, इस पर मैं आपसे दो शब्द चाहूंगी कि ये कितना बड़ा कार्य है और ये क्यों जरूरी था।
2: देखिए, वेटलैंड में सब आ जाता है, दलदल से लेकर, नदी से लेकर, समुद्र से लेकर, सब जहां भी आपका है सब वेटलैंड में ही आता है। और वेटलैंड पर जो काफी रिसर्च हुआ, शोध हुआ कि वेटलैंड का रहना पृथ्वी पर कितना जरूरी है। रांची में भी कई वेटलैंड थे जो अब नहीं दिखते हैं, HEC में था कुछ एक बड़ा वेटलैंड जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है,
1: कई तालाबों में तो दूसरी चीजें बन गई
2: हैं,
1: पावर स्टेशन
2: बन गए, घर बन गए, फ्लैट बन गए, सब बनते जा रहे हैं। तो जैव जो हमारा वेटलैंड एरिया, इस पर हमारे एक आर्टिकल भी काफी डिटेल में छपा था, तो वेटलैंड में हमको जहां भी कि अभी झारखंड में एक ही दो जगह का वेटलैंड डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली, वो है दुमका के पास का जो वेटलैंड में डिक्लेयर किया गया है, लेकिन आपके हर शहर में उस तरह के क्षेत्र हैं, क्योंकि वेटलैंड होने से आपका सबसे बड़ा चीज क्लाइमेट, मौसम पर असर करता है, अच्छा असर करता है, गलत असर नहीं करता है। प्रवासी पक्षियों का जगह होता है
1: जी।
2: पहला भूमिगत जल को रिचार्ज करता है, और जहां जहां कहीं बाढ़ आने की संभावना होती है वेटलैंड एक

0: बैरियर की तरह काम करता है। तो आप वेटलैंड एक ऐसा जगह है जहां की आपको सारे चीजों का नेचर की तरफ से आपको फ्री में दिया हुआ है जो वो स्टोर करके रखेगा। तो हमने देखा है रांची के पास जितने वेटलैंड्स थे, जो आप बहुत से गायब हो गए लोग, पुराने लोग सब पूछिएगा तो बताएंगे
1: जी।
0: और आज भी हमने देखा है कि एक वेटलैंड है, हम आपको आश्चर्य होगा जान के कि शहर का तापमान 40-41 था, मैं स्कूटर से उधर से गुजरा बरियातू की जाने की तरफ, अचानक लगा जैसे एसी की हवा आ रही है। तो सबसे रांची उसका खूबी था, रांची में इसलिए तापमान जहां 35-36 जाता था बारिश हो जाती थी क्योंकि वेटलैंड वाटर स्टोर करके रखता था। तो ये एक हमारी स्थिति है,
1: भूगर्भ जल का भी
0: बहुत बड़ा, हमने कहा ना वाटर रिचार्ज जोन है, वो हम भूमिगत जल को रिचार्ज करके रख रहा है, प्लस पूरा ग्रीनरी है तो नेचुरली ऑक्सीजन भी मिल रहा है। ये भी एयर जो ऊपर से आ रही है फिल्टर होके आ रही है तो एयर भी आपको साफ मिल रहा है, हवा वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी चीज है कि नेत्र को सुख मिल रहा है
1: जी, जी।
0: तो सब चीज तो आपको प्लस ही पॉइंट मिल रहा है
1: जी।
0: तो क्यों नहीं हम वेटलैंड को बचाएं? वेटलैंड अगर नहीं बचेगा धरती सब तो फिर बंजर होने लगेगी। आज जो हम लोग मंगल ग्रह का फोटो दिखाते हैं ना नासा के द्वारा चाइस के द्वारा कि यहाँ पानी था कभी, यहाँ पानी रहा होगा, पानी का प्रदन के फलस्वरूप बना, क्या पृथ्वी उसी दिशा में जा रही है? तो कम से कम भारत सरकार की ये पहल, कोई तो सरकार इतनी गंभीर हुई है कि पर्यावरण को अपने मैनिफेस्टो में रखी है,
1: बिल्कुल
0: ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो मैंने कई बार का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के लिए हमने भी डाला था कंसेप्ट, अपना आइडिया दिया था कि बच्चों को जंगल घुमाइए, जंगल वॉक, कि बच्चे जाने कि उसके जंगल कैसा है, क्योंकि यहाँ के बच्चों को मालूम है कि रिवर थेम्स कहाँ है लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उसके गांव में कौन सी नदी बहती है। तो ये जरूरी है, इसलिए आज के समय में ये जो वेटलैंड का आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको बचाने की नितांत केवल सरकार का पहल नहीं हमारा भी होना चाहिए।
1: हमारा भी जी। विनय जी, सरकार ने एक और बहुत बड़ी पहल की कि जो इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन उन्होंने किया एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए तो किया ही, इसमें खास तौर पर टाइगर के लिए, चीता को फिर से लेकर आए, लायन के लिए किया, लेपर्ड के लिए किया, ये सब जो बड़े प्रीडेटरी जानवर हैं उनके कंजर्वेशन के साथ साथ किस तरीके से आप इस काम को देखते हैं?
2: नहीं देखिए, पर्यावरण संतुलन आवश्यक है
1: जी,
2: क्योंकि जो प्रकृति ने हमें दिया है तो उसमें सारे सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है और अगर इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो चीता की भी आवश्यकता है और प्रधानमंत्री ने चीता बाहर से लाने का भी काम किया है, टाइगर भी यहाँ झारखंड में भी जो अपना पलामू में है तो चीता वगैरह दिखाई पड़ रहा है। तो इस दिशा में अब बहुत कम टाइगर बचे हैं देश में, उसको बचाने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में काम लगातार हो रहा है और ख़ास करके वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर बहुत पहल कर रही है
1: जी,
2: क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त भी हो रहा है बहुत सारा चीज, जैसे गिद्ध अब दिखाई कम पड़ता है।
1: गिद्ध के बारे में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जो जानवरों को एक दर्द निवारक दवा दी जाती है, नाम मैं भूल रही हूँ,
0: हाँ बिल्कुल, गिद्ध अब नाम बुला लेकिन वो है, लेकिन गिद्ध उस जानवर को खाता था
1: जी और तो उसके लिवर अफेक्ट
0: होता था, हाँ, गिद्ध इसलिए विलुप्त होने लगे
1: इसलिए भी हाँ। तो हमें ये सोच के
2: गिद्ध का काम क्या, तो गिद्ध भी पर्यावरण को संरक्षित करने में बड़ा उसकी बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। पुराने काल में भी, रामायण काल में भी, जब रावण लेके जा रहे थे सीता को तो गिद्ध से ही हुआ था उनका युद्ध, जटायु गरुड़ से ही हुआ था जटायु, पुराने समय से ये लोग। तो मेरा कहना है कि अगर आप चीजों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? और इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक, हर व्यक्ति को अपना करना चाहिए, कोई सरकार करे, केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार करे, नरेंद्र मोदी जी करे, हेमंत सोरेन जी करे, ये नहीं, हर व्यक्ति को करना है, हर व्यक्ति अपना को दायित्व माने कि भाई अगर हम पर्यावरण बचाएंगे तो मेरा ये फर्ज बनता है हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे हैं, आने वाली संतानों के लिए बचा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं बड़े जानवरों की, तो प्रियदर्शी यहाँ पर झारखंड में खास करके जो मैन एलिफेंट
0: कॉन्फ्लिक्ट
1: है, जो संघर्ष है
0: बिल्कुल
1: जंगली हाथियों और लोगों के बीच में, ये क्यों है और इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी।
0: देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हाथी कन्फ्लिक्ट हमसे नहीं कर रहा है, हाथी आता है, विशालकाय शरीर है और हम उसको छेड़ते हैं, उसको घायल करते हैं, वो गुस्से में आता है।
1: पहले तो हाथी नहीं
0: करता था क्योंकि हाँ, इसलिए कि उसके पास पूरा चरागाह था, पूरा जंगल उसका अपना था, उसको जहाँ भोजन मिलता था विचरण करता था, तालाब था, तालाब उसका बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है जहाँ उसका जो शरीर के इतना भारीपन जो है तालाब में प्रवेश करते वो हल्का हो जाता है, तो वहाँ वो क्रीड़ा करता था, सब कुछ करता था, उसको 2-3 ग्लास

0: पानी से काम नहीं चलेगा, उसको हजार हजार लीटर पानी चाहिए, तो पानी उसको तालाब से मिलता था, सबसे बड़ी चीज़ क्या है। और हम लोग उसका आवाज जो था उसको छीनते चले गए, उसको छोटा करते चले गए। हाथी कहीं गया दूर, जब लौटा तो रास्ता में देखता उसका कहीं रास्ता ही नहीं है, भटकता है रास्ता।
1: आपसे खाना तो हमारे हाँ, शहर में आ गया।
0: बिल्कुल, हम उसके जो है आवास में प्रवेश कर गए हैं। और उसका भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन किससे मांगेगा? आप ही से मांगेगा। और अब आप जब नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा? वो भी वही उपाय करेगा जो हम लोग करते हैं भोजन छीनने के लिए, वो भी वही करेगा। हाथी बहुत इंटेलिजेंट,
1: फिर से रिवाइव किया जाए,
0: बिल्कुल कर सकते हैं आप। उसमें गांव वालों का सहयोग होना चाहिए
1: जी।
0: और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जंगल की महत्ता, आप जंगल किसी में आप लगे, जंगल कम होगा तो क्या क्या त्रास दी आएगी। एक हम उदाहरण देते हैं, लॉकडाउन में एक महीना लॉकडाउन रहा, प्रकृति खुश थी, जानवर सड़क पे बाहर
1: वापस
0: क्लेम कर रही थी, जानवर भी आ रहे कि भाई मनुष्य गया कहाँ। हम न्यूज में देखते थे हरिद्वार ऋषिकेश सब जगह जानवर रोड पे आ रहे हैं, तो नेचर क्या इंडिकेट की, मनुष्य अंदर रहेगा प्रकृति खुश रहेगी। तो इसलिए हाथी का जहां तक सवाल उठता है कि हाथी को छेड़िए मत
1: जी,
0: हाथी पर ऐसा कोई अस्त्र का इस्तेमाल मत कीजिए
1: जी।
0: तो जो कंफ्लिक्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया अफ्रीका सब जगह, कारण यही है भोजन और उसका आवास, वो कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। हाथी जो है उसको बड़ा जगह चाहिए, वो अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपके पास हाथी आएगा ही
1: जी। तो इसके साथ ही आज की हम परिचर्चा यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी विनय जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को पर्यावरण के लिए?
2: देखिए, एक ही संदेश है, पर्यावरण बचाइए, अपना जीवन बचाइए।
1: प्रियदर्शी जी,
0: पर्यावरण अगर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण अगर बीमार हुआ तो हम भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए इस चीज को समझना होगा।
1: बिल्कुल, और इसी परिचर्चा के साथ हम अपने दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनको धन्यवाद देते हैं, श्री नीतेश प्रियदर्शी जी पर्यावरणविद और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय, और श्री विनय कुमार जी स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार एंड झारखंड, ब्यूरो प्रमुख हैं UNI रांची। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों ने अपने विचार साझा किए, लोगों को जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था पर्यावरण। परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री नीतीश प्रियदर्शी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय, और श्री विनय कुमार, ब्यूरो प्रमुख UNI रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम किरकेट्टा।

0: आकाशवाणी रांची से आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची स्थित लोक भवन परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। साहिबगंज के सुखसेना घाट पर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गंगा और डॉल्फिन संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने पर्यावरण रक्षा को जन आंदोलन बनाने की अपील की। देवघर में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने समाहरणालय प्रांगण में लीची का फलदार पौधा लगाया। इस अवसर पर परिसर में कुल 15 फलदार पौधे लगाए गए। उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जिलेवासियों से पर्यावरण को हरा भरा रखने का आग्रह किया। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सिमडेगा महाविद्यालय में आज मेरा युवा भारत, एनएसएस और एनसीसी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण रक्षा की शपथ ली। जागरूकता के लिए पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं भी हुई। संस्था की लेखा अधिकारी सोरिना टेटे ने लोगों से घरों में बिजली और

पानी बचाने की अपील की। पाकुड़ के अमरापाड़ा में कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। ग्रामीण बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने, नए कानून के तहत 1,16,00,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने और खनिज ट्रस्ट की 90% राशि प्रभावित क्षेत्र में खर्च करने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं उर्दू प्रोग्राम, प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

0: आकाशवाणी रांची से नशर हमारे उर्दू प्रोग्राम में हमारे तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करती हूँ। सामईन को फौजिया का प्यार भरा आदाब। सामईन, आज आपसे मुखातिब है आपकी दोस्त फौजिया और हमारे साथ है हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह। आदाब फौजिया।
0: आदाब।
1: और कैसे हैं?
0: बखैर हूँ।
1: तो फौजिया, बगैर देर किए हुए आप ये बताएं हमारे सामईन को कि आज किन तमाम मौजूआत पर आप हमारे सामईन से रूबरू हैं।
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो बात करूंगी हिदायतुल्लाह, आज ही का दिन 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे।
1: जी।
0: उसके बाद 6 जून को सुरक्षित भोजन बेहतर जिंदगी यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेज, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। उसके बाद हम बातें करेंगे हमारे बाबा बिरसा मुंडा जिनकी 9 जून को पुण्यतिथि है यानी कि यौम वफात का दिन।
1: बिल्कुल फौजिया, आलमी यौम माहौलियात कहें या वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कहें, जो कि 5 जून को पूरी दुनिया में हम मनाते हैं। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद आवाम में माहौलियाती तहफ्फुज और जमीन पर बढ़ती हुई आलूदगी के बारे में शऊर बेदारी पैदा करना है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर ये बात समझना बेहद जरूरी है कि कुदरत का एहतराम दरअसल जिंदगी का एहतराम है। हमारी जमीन और इसका माहौल खुदा की दी हुई वो अजीम नेमत है जो न सिर्फ इंसान बल्कि हर जानदार की बका की जामिन है। जब हम दरख्तों को बेरहमी से काटते हैं, पानी को जाया करते हैं या हवा को आलूदा करते हैं तो हम सिर्फ कुदरत को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि अपनी और आने वाली नस्लों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं।
1: बिल्कुल फौजिया, इस अहम दिन से जुड़ी अहम तफसीलात के बारे में अगर हम बात करें तो इस दिन का आगाज बाकायदा तौर पर अक्वाम मुत्तहिदा यानी UNEP के जेरे एहतमाम 1973 से किया गया। मकसद हमारा क्या था? मकसद हमारा था कि माहौल को दरपेश संगीन खतरात से या मौसमियाती तब्दीली, प्लास्टिक की आलूदगी और जंगलात की कटाई के तई बेदारी पैदा करना। फौजिया, हम तो जानते हैं अभी प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल से कितने खतरात हैं या आए दिन हम पेड़ पौधों को काटते हैं, इससे किस तरह के खतरात, मौसमियाती तब्दीली पैदा होती है, हमें बहुत ही खास तवज्जो देने की जरूरत
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल। जी हाँ सामईन, जमीन के हुस्न और इसके तवाजुन को बरकरार रखना हमारा सबसे बड़ा अखलाकी फर्ज है। लिहाजा इस संजीदा मसले पर महज बातें करने के बजाय हमें अमली कदम उठाने की सख्त जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: छोटे छोटे मसरूफियात जैसे दरख्त लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और कुदरती वसाइल की हिफाजत करना।
1: फौजिया, जुनूबी कोरिया ने प्लास्टिक फजला के इंतजाम में 70% साइकिलिंग की शरह हासिल की है और मुकम्मल हयातियाती प्लास्टिक को खत्म करने के लिए हदफ उठा रखा है।
0: बिल्कुल। तो सामईन, आइए आज के दिन ये पक्का अहद करें कि हम इस खूबसूरत अमानत की हिफाजत करेंगे क्योंकि कुदरत का तहफ्फुज ही हकीकी मायनों में हमारी अपनी जिंदगी का तहफ्फुज है। हर साल दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है जिसका बुनियादी मकसद लोगों को सेहत बख्श और पाक साफ खुराक के तई बेदार करना

0: सुरक्षित भोजन, बेहतर जिंदगी महज एक नारा नहीं बल्कि तंदुरुस्त समाज की जमानत है। जब हम आलूदगी, बैक्टीरिया और हानिकारक केमिकल से पाक खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। मिलावट शुदा और खराब गिजा न सिर्फ इंसानी सेहत को तबाह करती है बल्कि ये मुल्क की मुआशी और समाजी तरक्की में भी रुकावट बनती है।
1: बिल्कुल फौजिया, आपने बात किया कि आलूदा खुराक जो हमारे हैं, गंदे खाने हैं, उससे बहुत सारे बीमारियां होते हैं। जैसे कि आलूदा खुराक से लाहिक होने वाली अगर हम आम बीमारियों की बात करें फौजिया, तो टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, तपेदिक जिसे हम हैजा की बीमारी कहते हैं, ये तमाम बीमारियां होती है। और इसके अलावा इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक इन्फ्लुएंजा और जॉन्डिस, चूँकि लीवर को ख़राब होने के वजह से जॉन्डिस होने के पूरे ये रहते हैं। और फौजिया ये भी बताते चलें कि अगर मलेरिया और जॉन्डिस दोनों साथ में हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए सामीन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना जो खाएं वो ताज़ा खाना खाएं और गर्म करके खाएं। और एक चीज़ और फौजिया लोग तवज्जो नहीं देते हैं कि जैसे कि हम मीट मछली अगर किसी चाकू से, नाइफ से काटते हैं और उसी नाइफ से जो है हम सब्जी काटते हैं, सलाद काटते हैं, ये भी सामीन बहुत बहुत बहुत गलत है। डिश वॉश जो होता है उससे साफ करें, ऐसे पानी से भी साफ ना करें, उसके बाद ही उस चाकू से आप सब्जी वगैरह काट सकते हैं, ताकि बीमारियों से होने का अंदेशा जो है कम हो जाए।
0: बिल्कुल सामीन, खेतों से लेकर हमारी थाली तक गिजा की सफाई और मेयार का खास ख्याल रखना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बेहतर जिंदगी का सीधा ताल्लुक इस बात से है कि हम क्या और कैसे खा रहे हैं। साफ सुथरी और पौष्टिक गिजा हमारी दिमागी और जिस्मानी तवाजुन को बरकरार रखती है, जिससे इंसान की काम करने की सलाहियत और जीने की उम्मीद बढ़ती है। हुकूमतों, किसानों, ताजिरों के आम शहरी सबको मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा जहां हर शख्स को मेयारी और महफूज खाना मैसर हो सके। जब तक हमारा खाना महफूज नहीं होगा तब तक हम एक सेहतमंद मुस्तकबिल का ख्वाब पूरा नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, इसके साथ साथ हमें ये भी तवज्जो देनी चाहिए कि खाना तो साफ हो लेकिन खाना खाने से पहले अपने हाथ को भी बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें। जैसा कि बताया जाता है कि कम से कम 3 बार हाथ खूब अच्छे से रगड़ कर धोएं, हैंड वॉश से हैंड को अपना साफ करें। और ये भी देखा जाता है फौजिया कि जैसे हम कहीं से अचानक जो है ना अपने हाथ को मुंह में या आंख में, नाक में इस तरह से खुजली करने लगे तो नाखून के जरिए भी बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह होने के
0: सारे बीमारी का जड़ हमारे हाथ में ही होता है दादुल्ला, ताकि जिस हाथ से हम खाते हैं अगर उस हाथ को हम साफ नहीं रखेंगे, क्योंकि हाथ हमारा बहुत जगह जाता है, हर चीज छूता है, दरवाजे का हैंड है, टेबल है, कुर्सी है, तो सब में कुछ ना कुछ कीटाणु जर्म्स रहते हैं जो हमारे हाथ में लग जाते हैं। और आप अगर उसी हाथ से खाना खा लेते हैं तो वो जरासीम आपके अंदर चला जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हाथ धोकर ही खाना खाएं।
1: बिल्कुल,
0: बातें बहुत सारी हो गई हैं हिदायतुल्लाह, तो अपने सामेईन को लिए चलते हैं नगमे की तरफ और सुनवाते हैं।
1: और नगमा जो हम सुनवाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत नगमा, आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है। आइए सुनते हैं सामीन ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: तो सामईन, अभी आप लुत्फानंदोज हो रहे थे इस खूबसूरत से नगमे के साथ, तो अब बातें करते हैं हम इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन, जो कि 10 जून को मनाया जाता है। सामईन, सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 10 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विभाजित विश्व में आपसी सम्मान, अंतर सांस्कृतिक समझ और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
1: बिल्कुल फौजिया।

0: 7 जून 2024 को जनरल असेंबली ने करारदाद मंजूर की, जिसमें 10 जून को तहजीबों के दरमियान मुकालमे का आलमी दिन करार दिया गया। चीन की तरफ से तजवीज़ करदा और 80 से ज़ायद ममालिक के ताउन से इस करारदाद में इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम तहजीबी कामयाबियां इंसानों का इज्तिमाई वरसा हैं। ये तहजीबी तनवों के एहतराम अहमियत को उजागर करता है और आलमी अमन को बरकरार रखने, मुश्तरका तरक्की को आगे बढ़ाने, इंसानी फलाह व बहबूद को बढ़ाने और इज्तिमाई तरक्की के हुसूल में बातचीत के अहम किरदार को उजागर करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये दिन इस बात पर जोर देता है कि टकराव को सहयोग से बदलने के लिए संचार जरूरी है। बढ़ते ध्रुवीकरण के इस दौर में आयोजन विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सहिष्णुता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए खुले संवाद को प्रोत्साहित करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, आने वाली नस्लों को जंग की लानत से बचाना अक्वामे मुत्तहदा की तश्कील का बुनियादी मुहरिक है, जिसके बानियों ने दो आलमी जंगों की तबाही के बाद जिंदगी गुजारी। अपनी तख्लीक के बाद से अक्वामे मुत्तहदा से अक्सर तनाज़ुआत को जंग में बढ़ने से रोकने या मुसलह तसादुम के फूट पड़ने के बाद अमन की बहाली में मदद करने और जंगों से उभरने वाले माशरों में देरपा अमन को फरोग देने के लिए कहा जाता है।
1: सामईन, अब आइए समाप्त फरमाते हैं इंशाइया। हमारे आज के इंशाइया निगार हैं जनाब तबीब एहसन ताबिश। इंशाइया का उन्वान है, काश छप जाती मेरी भी तस्वीर।
2: सामईन, मजाहिया मजमून पेश खिदमत है जिसका उन्वान है, काश छप जाती मेरी भी तस्वीर। यकीन मानिए, जब अखबारों में लोगों की तस्वीरें देखता हूँ तो दिल मचल जाता है कि काश हमारी भी तस्वीर अखबारों के सफ़ात पर उतर जाती। आखिर सब की तस्वीरें तो आती ही हैं, एक मैं ही हूँ कि अपनी तस्वीर देखने के लिए बेताब रहता हूँ। मैंने बेगम से मशवरा किया, आखिर मेरी भी तस्वीर अखबारों की जीनत कैसे बनेगी। तो उन्होंने कहा, आपको इसके लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उम्मीद है कि आपकी तस्वीर अखबारों में आ जाएगी। ऐसा मेरा इखान बोलता है। मैंने बेगम के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए पूछा, आखिर जद्दोजहद की नौीयत क्या होगी। बेगम ने कहा, आप अस्पताल का चक्कर लगाएं। जब बच्चा माँ के शिकम से जैसे ही दार फानी में कदम रखता है, उसके घर वाले उसकी तस्वीर लेते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक पर डाल देते हैं। अगर आपने उस वक्त जुगाड़ लगा लिया तो समझ लीजिए आप कामयाबी से हमकनार हो जाएंगे, गोया आपकी तस्वीर बच्चे के साथ आ सकती है। दूसरा मौका है जब किसी जवान की शादी हो रही हो, उस वक्त भी कैमरामैन लोगों की तस्वीरें उतारता है। तीसरा मौका है जब किसी का इंतकाल होता है, उस वक्त भी तस्वीर कशी बड़ी तेज़ रफ्तारी से होती है, वहाँ भी आप एक चांस ले सकते हैं। चौथा मौका जो सबसे अहम है, इस्लाह माशरा के जलसा जुलूस में, यहाँ माइक और मजमा दोनों मिलता है जो सबके नसीब में नहीं होता। नहायत ही अफसोस के साथ ये ऐलान, बेगम बोली, सुनते हैं, ऐलान सुनिए, लगता है किसी का इंतकाल का ऐलान हो रहा है। अरे 3 बार ऐलान हुआ, इसका मतलब है शहर का कोई ख़ास आदमी का इंतकाल हुआ है, वरना 2 से ज़्यादा बार किसी आम आदमी का ऐलान नहीं होता। शहर की अहम शख्सियत के इंतकाल पर ही मौज़िन साहब 2 से ज़्यादा बार ऐलान करते हैं। बेगम बोली, आज अच्छा मौका है, आज आपकी तस्वीर खींची जाएगी, कब्रिस्तान जल्द ही जाकर पहली सफ पे इमाम के पीछे जगह ले लेंगे, आज आपकी तस्वीर साफ आएगी। निहाद होकर वजू बनाकर जोहर से पहले ही कब्रिस्तान में लगी कुर्सियों पर जाकर बैठ गया। जनाजा आया, लोग सब बंदी करने लगे, मैं ठीक इमाम के पीछे खड़ा हो गया जैसा कि बेगम ने कहा था, मगर ये क्या, एक साहब आए और कहने लगे, आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा, मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ। वह तो ठीक है, मगर आप पिछली सप में चले जाएं, पहली सप में मैयत के घर के लोग और शहर के सामाजिक कारकुन रहेंगे, इसलिए कि तस्वीर कशी होगी तो तस्वीर साफ आनी चाहिए। मैं मायूस होकर दूसरी सप में लग गया, अपने सर को दाएं बाएं करता रहा ताकि किसी तरह कैमरा के सामने मेरा चेहरा आ जाए। एड़ी उठाकर उंगलियों पर भी खड़े होने की कोशिश की, हालांकि एड़ी में दर्द था। मैंने ये दर्द इसलिए बर्दाश्त किया, सुना था।

कि हर दुख के बाद सुख है। अपना कद ऊंचा करने की मैंने पूरी कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। मैंने महसूस किया कि अगर आप कद में छोटा भी हैं और ओहदा में बड़ा हैं तो आपका कद जमे गफीर में भी ऊंचा रहेगा। बेगम ने मशवरा दिया कि आप खुद मुकर्रर क्यों नहीं बनते, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा इसमें प्रैक्टिस की क्या बात है, घंटा दो घंटा तो मैं बोल ही सकता हूँ। तो ऐसा कीजिए, इसलाह माशा करने वालों से रब्ता करें, वहाँ चांस मिल ही जाएगा। रंग बिरंगे लिबास जेबतन करना होगा, उसी से बड़े खतीब होने का रोब जमता है। मैंने कहा कुछ कपड़े तो हैं और कुछ नए डिज़ाइन का बनवा लूँगा। इसलाह माशरा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ। अनाउंसर, अब आपके सामने बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान मुकर्रर दीवारे मिल्लत, सुतूने मिल्लत, साहिबान मिल्लत, ऐवान मिल्लत, गुबारे मिल्लत, धुआंधार मिल्लत, अंदलीब मिल्लत, हजरत जलजला संतरा आबादी आपके सामने माइक पर। हजरात, आप लोग इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं, आपसे ज़्यादा हमारी खुशनसीबी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आबाओं माओं भाइयों बहनों चाचाओं चचानियों फूफाओं फूफियों मामाओं ममानियों खालुओं खालाओं बेपर्दा और पर्दा नशीन ख्वातीन और नौजवान दोस्तों, वक्त बर्बाद किए बगैर मैं असल मौजू पर आता हूँ। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। समाज के लोगों, शराब पीने वालों, सिगरेट पीने वालों, बीड़ी पीने वालों, गांजा पीने वालों, अफीम चरस पीने वालों, गुस्सा पीने वालों, शरबत पीने वालों, जूस पीने वालों, पेप्सी कोका कोला पीने वालों, फ्रूटी पीने वालों, सिरप पीने वालों, चाय कॉफ़ी पीने वालों, सूद खाने वालों, चुगली खाने वालों, बिरयानी खाने वालों, जले पर नमक लगाने वालों, स्नो पाउडर लगाने वालों, मोबाइल देखने वालों, टीवी देखने वालों, दूसरे की बीवी को देखने वालों, हवा में हाथ लहरा लहरा कर उंगलियों से इशारा करके बोलिए सुभान अल्लाह। एक आदमी तकरीर शबाब पर है, ज़ोरदार नारा, नारे तकबीर, पूरा मजमा अल्लाह अकबर, दीवारे मिल्लत जिंदाबाद। मौलाना साहब बोले हाथ लहरा कर फोटो फोटो फोटो, जहेज लेने वालों जहेज देने वालों, दूसरे के दरवाजे पर कूड़ा डालने वालों, नाली जाम करने वालों, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों, बेगम को पार्क घुमाने वालों, कैमरामैन तस्वीर लेते हुए, क्रिकेट खेलने वालों, गेंद खेलने वालों, लूडो खेलने वालों, कैरम खेलने वालों, किसी की इज्जत से खेलने वालों, एक आवाज़ आप बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठने वालों, कुर्सियों पर बैठने वालों, आँखों पर बैठने वालों, पलकों पर बैठने वालों, बुज़ुर्गों के सामने बैठने वालों, कार में बैठने वालों, जहाज़ में बैठने वालों, चौक चौराहों पर बैठने वालों, मैकदे में बैठने वालों, रात के 3 बज रहे हैं, ज़िंदगी ने भाफा की तो फिर अगली कॉन्फ्रेंस में। आप लोग पूरे तौर पर बेदार हो जाएं, वक्त का तकाज़ा है। मुसलसल रात में जागने की वजह से दिन का गलबा है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाप था। गालिब कहते हैं कि कुछ और चाहिए उसत मेरे बयां के लिए। वाखिर दावाना, कुछ लोग काना फूसी कर रहे थे, बाप रे ऐसा मौलाना की तकरीर तो हम आज तक नहीं सुने थे। जब पीने पर बोल रहे हैं तो पीने ही पर, जब खाने पर बोल रहे हैं तो खाने ही पर, लगाने पर बोल रहे हैं तो लगाने ही पर बोले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं, देखने पर बोल रहे हैं तो देखने ही पर, बगैर सांस लिए इतनी रवानी से बोल रहे हैं, पहलू बदल बदल करके, हाथों को हवा में लहरा के, एकदम मौलाना साहब लोगों के दिलों में उतरते चले गए। हम लोग इतनी रवानी से 100 तक गिनती भी नहीं गिन सकते, इसमें भी गड़बड़ा जाएंगे। जानते हो दोस्त, ये रटी हुई तकरीर नहीं है, बल्कि मौलाना साहब बहुत किताब पढ़े हैं, हर मौजू पर धड़ल्ले से बोलने लगते हैं। एक आदमी ज़रा सा बोला कि आप बैठ जाइए, तो बैठने पर ही वो 10 मिनट तक बोलते रहे। हम तो ऐसा मौलाना की तकरीर पहली बार सुन रहे हैं, हम भी ऐसी तकरीर नहीं सुने थे यार। उनका प्रोग्राम जहाँ भी होगा हम तो जाएंगे, मज़ा आ गया। और तुम, हम भी चलेंगे यार। सुबह अब्बा हाथ में अखबार लिए कैज़ो गज़ब के साथ घर में दाखिल हुए, गरज कर बोले कहाँ है जलजलवा, अभी आया, क्या है अब्बा, सुन रहे हैं तू तोर फुल फोटो छपल हो, यानी तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपी है, कहाँ है अब्बा, कहाँ है अब्बा, देखे ना अब्बा,
अरे अब्बा के बच्चे आओ आओ इधर आओ।

0: और करीब आओ। अब्बा का तेवर देखकर हम घर से बाहर गली में निकल गए। बाहर गली में, गली से सड़क पर, सड़क से शाहराह पर भागे जा रहे हैं। आगे मैं, पीछे हाथ में छड़ी लिए अब्बा दौड़ाते जा रहे हैं। अब्बा तस्वीर कशी के सख्त खिलाफ थे। मैं आगे आगे, अब्बा पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। सुबह में सैर तफरीह पर निकलने वाले लोगों ने देखा एक बूढ़ा एक नौजवान को दौड़ा रहा है। लोग सेल्फी लेते रहे। इन्हीं लोगों में कुछ मीडिया वाले भी थे। सुबह अखबार में माँ तस्वीर खबर छपी, एक बूढ़ा एक जवान को दौड़ा रहा है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। बूढ़ा जवान को क्यों दौड़ा रहा है, इनका इंकशाफ अभी नहीं हुआ है, तहकीक जारी है।
1: सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब तबीब अहसन ताबिश से उनका इंशाइया, काश छप जाती मेरी भी तस्वीर। और फौजिया, एक बहुत ही अहम मौजू, बाबा बिरसा मुंडा, बगावत, शहादत और अवामी बेदारी, जिनकी पुण्यतिथि है 9 जून को।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हिदायतुल्लाह हिंदुस्तान की तारीख के एक अजीम इनकलाबी और कबायली रहनुमा थे, जिन्होंने 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेनी हुकूमत के जुल्म और ज़मीनी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ उलगुलान अजीम बगावत का अलम बुलंद किया। महज 24 साल की उम्र में 10 जून 1900 को रांची जेल में उनका इंतकाल पुर इसरार हालत में हुआ, जिसे ब्रिटेनी हुकूमत ने हैजा करार दिया था। उनकी यौम वफात महज एक तारीख नहीं बल्कि ब्रिटेनी साम्राज्य के खिलाफ उनकी बेमिसाल शुजात, कुर्बानी और अपने लोगों के हकूक के तहफ्फुज के लिए की गई जद्दोजहद को याद करने का दिन है, जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में आज़ादी की शमा रोशन रखता है।
1: बिल्कुल फौजिया, इस अजीम शख्सियत की पैदाइश 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिला, मौजूदा झारखंड के गांव एलीहातु में हुई। उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की और बाद में चाईबासा में मिशन स्कूल में पढ़ा, जहां वो बरतानवी इस्तेहसाली पॉलिसियों से बाखबर हुए। उन्होंने कबाइलियों को मुत्तहिद करने के लिए एक नया मजहब बरसाई शुरू किया। उन्होंने जादू टोना को तर्क करने, शराब नोशी तर्क करने और सादगी से जिंदगी गुजारने की तलकीन की।
2: उनकी बरसी के मौके पर मुल्क भर में बिलखलूस कबायली इलाकों में उन्हें गहरी अकीदत व एहतराम के साथ खिराजी अकीदत पेश किया जाता है। बिरसा मुंडा को उनके पैरोकार और कबायल मुआशरा धरती आबा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने न महज जल, जंगल और जमीन की हिफाजत के लिए जंग लड़ी बल्कि अपने मुआशरे में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए सामाजिक असलाहत भी की। 10 जून का यह दिन हमें ये सबक देता है कि अपने हकूक, तहजीब और शनाख्त की हिफाजत के लिए किसी भी बड़ी ताकत के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, और यही अज़्म उनकी हकीकी विरासत।
1: बिल्कुल फौजिया, जमींदारी निज़ाम की मुखालिफत, बिरसा मुंडा ने इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ किसानों, कबाइलियों को मुनज़म किया और ज़मीनों पर अपना पैदाइशी हक वापस मांगा। तो सामीन, ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसके ऊपर हम चाहे जितना भी बात करें ये कम है। इन जैसे शख्सियात की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा भारत आज़ाद है और हम आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो हिदायतुल्लाह बातें बहुत हैं लेकिन वक्त की कमी के बास हमारे अपने प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करने की सामईन से इजाज़त लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो इसी के साथ सामईन, आप अपने दोस्त हिदायतुल्लाह
2: और फौजिया दोनों को अगली मुलाकात तक के लिए दें इजाज़त।
1: आदाब।
2: आदाब।
3: उर्दू कार्यक्रम, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की खड़ी में 4:30 हो चुके हैं। ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम।

सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी 6:02 से, हमारी दुनिया 6:32 से। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:00 आदिवासी अखड़ा। इस कार्यक्रम का वक्त होगा 7:15 का। आज आप ये कार्यक्रम सुनेंगे हो भाषा में। सहिया प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए 7:45 से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे 8:00 से।

समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 का, न्यूज एट 9:09 बजे। सुनिए उर्दू में समाचार 9:15 से हमारे दिल्ली केंद्र से, करंट अफेयर्स 9:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से। सुनहरी यादें, इस कार्यक्रम का वक्त होगा 10 बजे का। दस बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे उस्ताद अली अकबर खान। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए 11 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सांझ सरगम में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। 5 जून की ये शाम एक और महत्वपूर्ण दिन जिसे हमने नाम किया एनवायरमेंट के। अक्सर छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बदलाव लाने से हम खुद को रोक लेते हैं ये सोचकर कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। यही बदलाव चाहिए, जूट के बैग, वुडन फॉर्क एंड स्पून, पानी की बचत। क्या आप नहीं चाहते वो खुली छत, वो प्यारा मौसम फिर से, वो सब कुछ अगर वापस चाहिए तो फिर चलिए उसी दुनिया में जहाँ हाथी साथी होते हैं, जहाँ कोयल के बोलने पर दुनिया डोल जाती थी, दिल की बोली समझ में आ जाती थी और पहले प्यार की पहली चिट्ठी कबूतर ले जाया करते थे।

तो दोस्तों बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये धरती जिसे हमें बांटना है 13 लाख और स्पीशीज के साथ, लेकिन हम समझते क्या हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी बेहतर है वो सिर्फ

हमारे लिए है, हम मनुष्यों के लिए है, हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम जो भी वार्निंग्स हमें धरती की तरफ से मिल रही हैं उन्हें हम गंभीरता से लें। हम सभी को ये समझना है कि अर्थ की जिम्मेदारी, इसे संभालने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस साल की थीम को बहुत ही प्यार से समझिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर, फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर फ्यूचर। साफ हवा, पानी और साफ सुथरा बोला दिल और दिमाग हम सभी के लिए।

और मिलना जुलना भी साफ सुथरे वातावरण में ही अच्छा लगता है कि नहीं दोस्तों। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, ऐसा होना चाहिए क्या? जब हमने चाहा पेड़ काट दिए, जब हमने चाहा ज़मीन बांट दिए, जब हमने चाहा ईशो आराम की सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, लेकिन रिश्ते ऐसे कहाँ चलते हैं? रिश्ता जो चलाना है उनको भी निभाना है, मुमकिन नहीं तुम ही तुम हरदम किसी को समझो।

समस्याओं पर बात तो करना शुरू करिए। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सभी बताएंगे गर्मी बढ़ रही, तापमान बढ़ रहा, बेचैनी हो रही, मौसम पहले जैसा ना रहा। तो फिर जूली, श्याम, जिमी सभी को बुलाइए और सभी को कहिए आप भी मिल जाइए और माँ के नाम एक पेड़ लगाइए, शुरुआत करिए। कोई गोल्डन पीरियड नहीं होता अच्छे काम करने का, बस अपनी धुन में निकल जाना होता है और सबको ऐसे ही प्यार से बुलाना होता है।

सुना दे वही धुन, तो जो प्रकृति की धुन है उसे भी हमें समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो सिर्फ खुद से प्यार कर बैठे हैं, कहीं हमें ना पछताना पड़े कि कुछ ज़्यादा ही खुद से कर लिया प्यार। पहले तो सजरे सवरने के लिए पार्लर जाते थे, अब शुद्ध अच्छी ठंडी सांस हवा के लिए हमें ऑक्सीजन पार्लर जाना पड़ेगा।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के बक्सी डिप्पा में नवनिर्मित जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। खूंटी समाहरणालय परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान शुरू हुआ। इस मौके पर उपायुक्त ने नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने, ठोस गीला कचरा अलग करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ई कचरे का सही प्रबंधन कर पर्यावरण बचाने की अपील की। रामगढ़ के दामोदर नदी घाट पर आज नमामि गंगे योजना के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में अधिकारियों और आम लोगों ने पौधे लगाए। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज बैलगढ़िया पुनर्वास स्थल में नए उप डाक घर का उद्घाटन किया गया। सांसद ढुल्लू महतो और प्रमंडलीय डाक अध्यक्ष राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग और डाक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए तेज हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वेमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में कोल्हान डायनेमोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स ने ईशा केशरी के 54 रनों की मदद से 136 रन बनाए। जवाब में कोल्हान डायनामोज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, युवानी के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहा।
1: और मैं हूँ तनिष्का।
0: हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और हमारे कार्यक्रम का बड़े ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे।

0: आज की शाम खास होने वाली है क्योंकि न सिर्फ आप रोचक तथ्यों से रूबरू होंगे बल्कि मधुर गीतों का आनंद भी आप सभी को मिलेगा। वैसे तनिष्का, आज की हवा में कुछ अलग ही ताजगी है ना? और हो भी क्यों ना, आज कैलेंडर पर एक बहुत ही खास तारीख है।
1: बिल्कुल स्नेहा, आज 5 जून है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। आज पूरा विश्व हमारी इस खूबसूरत धरती और प्रकृति को सलाम कर रहा है।
0: सही कहा तनिष्का। वैसे क्या तुम जानती हो कि इस दिन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? हमारे दोस्तों को शायद ये ना पता हो।
1: इसकी शुरुआत साल 1972 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र UN ने स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन किया था और पहला आधिकारिक पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसका नारा था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ।
0: यानी पिछले 50 से भी ज्यादा सालों में ये दिन हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। और इस साल यानी 2026 की थीम भी बेहद खास है, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए।
1: हाँ, लेकिन थीम के साथ साथ हमें हकीकत को भी समझना होगा। क्या तुम जानती हो कि हर साल दुनिया भर में लाखों टन सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं, जो समुद्र और जमीन को बर्बाद कर रहे हैं?
0: हाँ, और पेड़ों की कटाई भी बहुत तेजी से हो रही है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा?
1: इसलिए तो आज का दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक अलार्म है। लोग हर साल 5 जून को पौधे के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और फिर 6 जून से वापस वही लापरवाही शुरू कर देते हैं। हमें इसे बदलना होगा।
0: पर्यावरण बचाना रोज की आदत होनी चाहिए, जैसे घर से निकलते वक्त कपड़े का थैला साथ रखना, ब्रश करते समय या गाड़ी धोते समय पानी की बर्बादी को रोकना।
1: और सबसे बड़ी बात, आज अपने दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी लें।
0: बिल्कुल, इसी बात पर हमारे दोस्तों के लिए दो लाइनें याद आ रही है, प्रकृति को ना करो शोषण, मिलकर करो इसका पोषण, पेड़ पौधे हैं धरती की शान, इनसे ही है हम सबका मान।
1: स्नेहा, अभी अभी हमने बात की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। हर साल 5 जून को हम सब पौधे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट करते हैं।
0: बिल्कुल तनिष्का, लेकिन क्या पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ एक दिन का त्यौहार है? क्या 5 जून बीतते ही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं ना, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस के इस चर्चा के बाद अब हम बात करेंगे सबसे मुख्य और गंभीर विषय पर, पर्यावरण सुरक्षा एक सामाजिक दायित्व।
1: जी हाँ, सामाजिक दायित्व। इसका सीधा मतलब है कि ये काम सिर्फ सरकार, कानून या किसी एक संस्था का नहीं है, ये समाज के हर एक नागरिक का, यानी आपका और हमारा फर्ज है।
0: जब हम कचरा सड़क पर फेंकते हैं, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं या बिना जरूरत पानी बहाते हैं, तो हम सिर्फ नियम नहीं तोड़ते हैं बल्कि अपने समाज और आने वाली पीढ़ी का हक छीन रहे होते हैं।
1: सोचिए, अगर समाज का हर व्यक्ति सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी उठा ले कि वे अपने घर का गीला और सूखा कचरा अलग रखे, पानी बर्बाद नहीं करे और साल में कम से कम एक पेड़ लगाए, तो हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बदलाव हमेशा खुद से और छोटे कदमों से शुरू होता है। दोस्तों, हमारी धरती हमारा घर है और इस घर को साफ सुथरा सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है।
1: क्योंकि दोस्तों, सुरक्षित पर्यावरण ही एक सुरक्षित समाज की बुनियाद है। सरकारें तो सिर्फ नियम बना सकती हैं, लेकिन पर्यावरण को असल में सुरक्षित हम और आप बना सकते हैं।
0: सही कहा तनिष्का। और जब बात हरी भरी वादियों और खूबसूरत मौसम की हो तो दिल तो गाना गाएगा ही। आइए ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
4: दोस्तों अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के अगले हिस्से का इतिहास में आज का दिन यानी 5 जून के दिन भारत और विश्व में घटी कुछ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाएं 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट का उद्घाटन हुआ इस सम्मेलन में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पर्यावरण और विकास के संबंध पर ऐतिहासिक संबोधन दिया ये पर्यावरण संरक्षण पर भारत की महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है
5: 5 जून को ही भारत में हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है जिसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरूक किया जाता है
4: 1981 को अमेरिका में एक नई और रहस्यमय बीमारी के शुरुआती मामलों की आधिकारिक रिपोर्ट जारी की गई थी बाद में इस बीमारी की पहचान एड्स के रूप में हुई
5: इसके साथ ही 5 जून 1967 को मध्य पूर्व में 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत हुई थी जो इजराइल और कई अरब देशों के बीच लड़ा गया था
4: तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे पर्यावरण से जुड़े कुछ मज़ेदार और हैरान करने वाले अमेजिंग फैक्ट्स दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा और स्वस्थ पेड़ एक साल में लगभग 100 से 120 केजी तक ऑक्सीजन पैदा कर सकता है यानी एक पेड़ कई लोगों की साल भर की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करने में योगदान देता है
5: अब अगला फैक्ट धरती पर मौजूद कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्र में है जो खारा होता है पीने लायक मीठा पानी केवल लगभग 3% ही है और उसमें भी अधिकांश बर्फ या ग्लेशियर्स में जमा है
4: दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बांस दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है कुछ प्रजातियाँ एक दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं
5: अब बात करते हैं जंगलों की दुनिया के जंगल हर साल करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं इसी वजह से जंगलों को धरती का ग्रीन लंग्स कहा जाता है
4: पृथ्वी पर मौजूद रेन फॉरेस्ट धरती की लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जबकि वे पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का बहुत छोटा हिस्सा घेरते हैं
5: तो दोस्तों ये थे पर्यावरण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आगे हम बात करेंगे देश और दुनिया से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स पर
4: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रेपो रेट को 5.25% पर स्थापित रखने का फैसला किया है
5: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं
4: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 जून से भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं यह नेपाल की नई सरकार के गठन के बाद भारत की पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है
5: इसके साथ ही भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA 1 जून 2026 से लागू हो चुका है यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा
4: भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाना है। दोस्तों, बातें तो हम और भी करेंगे, पर अभी समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: दोस्तों, विकास हर समाज और देश की जरूरत है। बेहतर सड़कें, आधुनिक तकनीक, उद्योग, शिक्षा और रोजगार, ये सब विकास के हिस्से हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास की दौड़ में हम प्रकृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं?
1: बिल्कुल स्नेहा, आज हम देख रहे हैं कि शहरों का विस्तार हो रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जंगल कम हो रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और वायु की गुणवत्ता भी लगातार प्रभावित हो रही है।
0: प्रकृति और मानव जीवन का रिश्ता बहुत गहरा है। हमें स्वच्छ हवा, पीने का पानी, भोजन और जीवन के लिए जरूरी संसाधन प्रकृति से ही मिलते हैं। इसीलिए यदि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सीधा हमारे जीवन पर होता है।
1: आज मौसम में होने वाले बदलाव इसका एक बड़ा उदाहरण है। कभी अत्यधिक गर्मी, कभी असामान्य बारिश, तो कभी सूखा और बाढ़ जैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। ये सभी संकेत है कि प्रकृति हमसे संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा कर रही है।
0: दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या बड़े संगठनों की जिम्मेदारी है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी शुरुआत हमारे घर और हमारी रोज की आदतों से ही होती है।
1: बिल्कुल, जैसे बिजली की अनावश्यक खपत कम करना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कारपूलिंग करना और आसपास साफ सफाई बनाए रखना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: युवाओं की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युवा जागरूक हैं, तकनीक से जुड़े हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं।
1: सही कहा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पर्यावरण से जुड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान और जागरूकता गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।
0: एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के साथ चल सकते हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच अपनाएं।
1: सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करें, लेकिन इस तरह कि आने वाली जनरेशन के लिए भी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे, यानी विकास भी हो और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे।
0: और हमें ये भी समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। जब हम जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करते हैं तब हम पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं।
1: साथ ही हमें बायोडायवर्सिटी के महत्व को भी समझना चाहिए। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य जीव मिलकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि इनमें से कोई एक कड़ी कमजोर होती है तो पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है।
0: यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ जल और हरियाली का आनंद ले सकेंगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक।

कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे स्नेहा और तनिष्का के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम श्रमिक लोक का।

जुहार नमस्कार। ढेर सारी जानकारियों के साथ उपस्थित हैं आपके अपने कार्यक्रम श्रमिक लोक को लेकर। मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ है महिमा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में खुद का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है कि अपने मौसम का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मौसम बदल रहा होता है तो उसमें पूरे जो कह सकते हैं प्रकृति का हाथ होता है, पर्यावरण का हाथ होता है। और अगर हम पर्यावरण की देखरेख ना करें, जिस तरह से हम अपने स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं, तो हमें पर्यावरण की भी देखरेख उसी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उसी पर निर्भर है। अगर हमारा पर्यावरण सही रहता है तभी हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है। बेमौसम आपने देखा होगा, कभी बरसात हो जाती है, इतनी तेज़ धूप होने लगी है, इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण के कारण ही होता है। धरती माँ की गोदी में जीवन का ये सार है, पेड़ लगाओ हर आंगन में, यही असली उपहार है। नदियाँ, हवा, पहाड़ बचाओ, ये

ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हम देख पा रहे हैं वो अब एक छोटे स्तर पे नहीं, अब हमें जो तपती धूप जो लग रही है, अगर हम अपने झारखंड की बात करें, अपने रांची शहर की बात करें, तो हमारे यहाँ का जो वेदर होता था वो बिल्कुल कुल्लू मनाली वाले वेदर की जैसा, हिल स्टेशन में जैसा होता था वैसा रहा करता था। बट अब हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें अपने झारखंड को और खूबसूरत बनाना है, इसमें विकास को आगे बढ़ाना है। तो विकास के साथ साथ हम जब पर्यावरण की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी कह सकते हैं एक तालमेल की ज़रूरत है। अगर ये तालमेल सही रहे तो पर्यावरण के साथ साथ हमारा विकास भी संभव है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ विकास की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा जो मौसम है वो कह सकते हैं कि हमें परेशानी झेलने के लिए मिल रहा है। अगर आप देख सकते हैं कि अब जिस तरह से गर्मियाँ आई हैं, इतनी तेज गर्मी मुझे तो याद नहीं है कि मुझे कब लगी है, बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन हाँ, ये अब लग रहा है कि हमने चूक तो की है, और इस चूक को अगर हम लोगों ने मिलकर नहीं सुधारा, इस आने वाले मौसम में अगर हमने भर के पेड़ नहीं लगाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यानी मौसम इसी तरह सब बिगड़ता रहेगा और इसका सीधा असर हम और आप ही झेलेंगे। तो चलिए, सफ़र में बहुत सारी ऐसी और भी जानकारियाँ लेकर हम आए हैं, लेकिन आज जानकारियाँ देने से पहले चलिए फटाफट से सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो इस खूबसूरत से गाने के बाद महिमा कुछ बताना चाहोगी?
1: बिल्कुल, और आज 5 जून है और पूरा विश्व पर्यावरण को समर्पित आज के विशेष दिन को अलग अलग तरीके से मना भी रहा है। हम अपने सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की जाती है तो सिर्फ आज के दिन ही नहीं,
2: बिल्कुल,
1: पर हर दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए।
2: ये सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि यही तो है जो हमारे जीवन का आधार है, सही मूल्य जो कह सकते हैं, ये हमारे आधार है। इसे कुछ नुकसान होगा तो सीधा असर हमारे पे होगा, यानी मानव जीवन पर ही इसका संकट आएगा। और जब ये संकट आएगा तो अगर आप अभी बचाव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ना ही आप पेड़ लगा पाएंगे, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो उसको एक प्रॉपर टाइम लगता है बढ़ने के लिए, आप पर्यावरण को फिर वापस नहीं ला पाएंगे।
1: और नेक काम के लिए कोशिश करनी ही चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। आज जब मैं आकाशवाणी आ रही थी तो बहुत सारे लोगों को देखी जो पेड़ लगा रहे थे, तो हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि आप पेड़ जरूर लगाएं,
2: बिल्कुल,
1: और उनको संभाल करके भी रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग पेड़ लगाते हैं और भूल जाते हैं। उनको कब याद आता है? जब 5 जून आता है तब। इसके साथ में हम साथियों से कहना चाहेंगे कि आप पानी का भी बचत करें, क्योंकि वो भी पर्यावरण का एक हिस्सा होता है।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे जो विकास के राह में जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जो क्योंकि वो भी विकास कर रहे हैं, शहरों को सुंदर बना रहे हैं, तो मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि ऐसे भी कोई विकल्प निकाले जाए जिसमें पेड़ों की कटाई ना हो सके, उनका स्थानांतरण किया जा सके।
1: बिल्कुल,
2: जिससे क्या होंगे, हमारे पास जो पेड़ों की संख्या जो कट के खत्म हो रही है ना, उनकी गिनती कम भी नहीं होगी और वो एक जगह पे सेट हो जाएंगे जाके।
1: बिल्कुल, और हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि जब पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं तो आप प्लास्टिक का कम उपयोग करें।
2: अच्छा, ये बातें हमने हमेशा कही कि प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें। अगर आप देखें ना, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे खोजी लोग हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर प्लास्टिक को अगर अब भी बंद नहीं किया गया तो आने वाला जो संकट है वो ऐसा होगा कि सभी तरफ सिर्फ प्लास्टिक के ढेर मिलेंगे। और आपने देखा भी होगा कि समुद्र की अगर हम बात करें तो समुद्र में मछलियों पे भी ये बहुत गहरा असर डाल रहा है। समुद्री मछलियां हैं जो वो प्लास्टिक कंज्यूम कर रही हैं, खा रही हैं, जिसके चलते बहुत सारी केमिकल्स जो
1: मछलियों के पेट में जा रही है
2: और उसे अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो केमिकल हमारे अंदर भी आ रहा है। और ये कह सकते हैं कि अब तो पूरी फिजाओं में ही प्लास्टिक आ गया है।
1: और जब प्लास्टिक के बारे में आप बात कर ही रहे तो हम ये कहना चाहेंगे जब जरूरत पड़े तो अपने साथ में कपड़े की जो थैली होती है, कपड़े की थैली का इस्तेमाल अगर करेंगे तो बहुत बार जो अनावश्यक रूप से प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, लोग कुछ खरीदते फल खरीदते हैं तो प्लास्टिक ले लेते हैं।
2: बिल्कुल, अच्छा तुम्हें याद होगा जब हम थोड़े छोटे थे तो मुझे कभी भी याद नहीं कि हमें कभी प्लास्टिक का कोई थैला भी मिला होगा। हम बिल्कुल रेडी रहते थे, हमारे साथ अपना बैग होता था जिसमें हम जो पुराने घर के कपड़े वाले जो हमारे बैग बनते थे जिसमें हम सब्जियां हर कुछ लाते थे, और वो एक बहुत अच्छा रहता था। और कैसे ये प्लास्टिक आ गया और कैसे ये छा गया और अब बर्बादी की ओर हमें ले जा रहा है, अब हमें रुकना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी बात कुछ समय पहले बोला गया था, तो हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि जब आप कहीं जाते हैं, कार्यस्थल में जाते हैं, तो हमेशा आप कोशिश करें कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।
2: ये तो सही कहा है आपने, क्योंकि अगर हम बेफिजूल का ईंधन बर्बाद करते रहेंगे तो ईंधन की कमी होगी, पॉल्यूशन होगा, सब कुछ होगा एक चीज से।
1: बिल्कुल,
2: तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं सफर में और एक वार्ता हम लेकर आए हैं जलवायु परिवर्तन के बीच पर्यावरण संरक्षण की जो आवश्यकताएं हैं उस पर एक चर्चा करने के लिए,
1: और वार्ताकार है वरुण कुमार श्रीवास्तव।
3: पर्यावरण ही सृष्टि है, इसे बचाइए, धरती की जान पेड़ है, घर घर लगाइए। ये देखिए गंगा की रवानी में गंदगी, सड़ती हुई लाशों से है पानी में गंदगी, कि तब त्याग भगीरथ को न यूं ही गवाइए, धरती की जान पेड़ है, घर घर लगाइए, धरती की जान पेड़ है, घर घर लगाइए। श्री शिवनारायण निर्मोही द्वारा रचित यह पंक्ति यह बता रही है कि वृक्ष ही हमारा जीवन है, वृक्ष ही हमारा प्राण है और वृक्ष ही हमारी आत्मा है। आपको बता दें कि आज 5 जून है और आज पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए हम भी आज आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। विषय है जलवायु परिवर्तन के बीच पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। श्रोताओं, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव केवल मौसम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य, जैविक विविधता और अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। श्रोताओं, आपको बता दें कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वही हमारा घर है। जल, जंगल, जमीन, वायु और जीवन जंतु, ये सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन आज यही पर्यावरण गंभीर संकट से गुजर रहा है। बढ़ता तापमान, असमय वर्षा, सूखा, बाढ़, जंगलों की कटाई, पिघलते ग्लेशियर और प्रदूषण, ये सब जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से जूझ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियां हैं। औद्योगिकरण, वनों की कटाई, अत्यधिक वाहन उपयोग, प्लास्टिक प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, इन सब ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। दोस्तों, पहले मौसम अपने समय पर आते थे। गर्मी, सर्दी एवं वर्षा का एक निश्चित क्रम था। लेकिन अब मौसम का चक्र बदल रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो कहीं अचानक वर्षा हो रही है। कई क्षेत्रों में जल संकट गहराता जा रहा है। किसान परेशान हैं, फसलें प्रभावित हो रही हैं और आम जनजीवन कठिन होता जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी भारत के 3 प्रमुख राज्य बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इस समय एक अभूतपूर्व जलवायु संकट के दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग और क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण यह साफ दिखाता है कि इन राज्यों में मई महीने की तपिश और जानलेवा इतनी हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में इन राज्यों के शहरों का मई का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के जमशेदपुर में, जहां मई 2021 में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री था, वहीं 2024 में 45.5 डिग्री पहुंच गया। यह सीधे 5.9 डिग्री की बढ़ोतरी है। वहीं डाल्टनगंज शहर 47

36.7 डिग्री के साथ राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जबकि इसी साल रांची का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री से बढ़कर 40 डिग्री तक हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो सन 2024 के अप्रैल मई में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जब पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंड में पारा 47.2 डिग्री और पानागढ़ में 45.6 डिग्री दर्ज हुआ। इसके बाद से हर वर्ष बांकुड़ा, पुरुलिया और जैसे जिले मई में 45 डिग्री के स्तर को पार कर रहे हैं। वहीं बिहार पर नजर डालें तो बिहार में मई का ग्राफ लगातार चढ़ रहा है। साल 2021 से 2023 के बीच जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री से 43.5 डिग्री के बीच रहता था, वहीं 2024 के बाद यह तापमान 45.5 डिग्री के स्तर को छू रहा है। यूएन जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने कहा कि भारत में जारी भीषण गर्मी जलवायु परिवर्तन की चरम स्थिति के कारण यह कोयला, तेल व गैस के बड़े पैमाने पर उपयोग से हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि आपदा का मुख्य कारण अलनीनो का कहर है, जहां प्रशांत महासागर में सक्रिय अलनीनो के कारण मानसून कमजोर हुआ, जिससे देश और पूर्वी भारत को लंबे समय तक भीषण हीटवेव और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के निदेशक श्री महापात्रा जी ने बताया कि अंधाधुंध कंक्रीट निर्माण और घटती हरियाली के कारण पटना, रांची और कलकत्ता जैसे शहर थर्मल ट्रैप बन चुके हैं। इनका तापमान गांवों से 1.5 डिग्री से 3.5 डिग्री तक अधिक है, जिससे रात में भी ठंड नहीं हो पा रही है। आज आवश्यकता है हम समय रहते पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीर कदम उठाएं। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। सबसे पहले हमें वृक्षारोपण का बढ़ावा देना होगा, न केवल सरकारी योजनाओं के माध्यम से, बल्कि हम और आप जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर या किसी पुण्यतिथि पर एक वृक्ष हर साल अवश्य लगाएं। तभी पर्यावरण के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे और यह योगदान न केवल अपने बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान होगा। आपको बता दें कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित भी रखते हैं। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम है वह है जल संरक्षण। आज कई शहर और गांव पानी की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। यदि हम वर्षा जल संचयन और पानी के सही उपयोग और जल स्रोतों की सफाई पर ध्यान दें तो इस संकट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और तीसरा जो कदम है वह है प्लास्टिक का कम उपयोग। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रही है। हमें कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ऊर्जा संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। बिजली की अनावश्यक खपत कम करें, एलईडी बल्ब का उपयोग करें और सौर ऊर्जा जैसी नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाएं। प्रिय श्रोताओं, आपको बता दें कि सरकारें भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनेक योजनाएं चला रही हैं, लेकिन हम कहेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होगी, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, हमारा समाज, हमारा परिवार जब तक जागरूक नहीं होगा, तब तक वास्तविक परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नहीं दिखेगा। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी प्रकृति के महत्व के बारे में बताना चाहिए। विद्यालयों और समाज में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे यहाँ नदियों को माता, वृक्षों को देवतुल्य और पृथ्वी को धरा माता कहा गया है। यह परंपरा हमें प्रकृति के साथ साथ संतुलन बनाकर जीने की प्रेरणा देती है।

0: आज आवश्यकता है हम आधुनिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करें। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए वह मानवता के लिए खतरा बन सकता है। आइए, आज पर्यावरण दिवस है, हम यह शपथ लें कि अपने जन्मदिन या अपने शादी की सालगिरह या माता पिता की पुण्यतिथि में एक पेड़ अवश्य लगाएं। जल और ऊर्जा की बचत अवश्य करें। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण छोड़कर जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन की चुनौती वैश्विक आवश्यक है, किंतु इसका समाधान स्थानीय स्तर से ही प्रारंभ होगा। प्रत्येक नागरिक अगर जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लें तो सामूहिक प्रयासों से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। बंधुओं, विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है, हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को याद दिलाता है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों का कार्य नहीं, प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आपको बता दें कि इस वर्ष 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक विषय यानी थीम जो है वह है क्लाइमेट एक्शन, अर्थात जलवायु कार्रवाई रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष दुनिया को यह संदेश दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती है, इसलिए केवल चर्चा नहीं बल्कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। इस अभियान का संकेत है कि पृथ्वी हमें लगातार संकेत दे रही है, बढ़ते तापमान, चरम मौसमीय घटनाओं, घटते प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। अब हम पर निर्भर करता है कि हम इस संकेतों को समझें और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर जलवायु संकट का समाधान खोजें। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्लाइमेट एक्शन हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्रवाई एक दूसरे के पूरक हैं। आज लगाया गया एक पौधा, बचाई गई एक बूंद पानी और ऊर्जा संरक्षण का एक छोटा सा प्रयास भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की नींव बन सकता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि स्वस्थ पर्यावरण ही सतत विकास की आधारशिला है। यदि हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य दे सकेंगे। पृथ्वी हमारी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। शिव नारायण निर्मोही की इस पंक्ति के साथ मैं विदा ले रहा हूं कि पर्यावरण ही सृष्टि है, इसे बचाइए, कि धरती की जान पेड़ है, घर घर लगाइए, कि इनके कटे तो कुदरत की सौगात जाएगी, रंगीन नजारों से भरी रात जाएगी, कि रेत ही रेत नजर आएंगे हिंदुस्तान में, कि रेत ही रेत नजर आएंगे हिंदुस्तान में, जब देखते ही देखते बरसात जाएगी। कि नाश आ रहा है पास चेत जाइए, नाश आ रहा है पास चेत जाइए, धरती की जान पेड़ है घर घर लगाइए, धरती की जान पेड़ है घर घर लगाइए। धन्यवाद
1: साथियों। अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता, जलवायु परिवर्तन के बीच पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, और वार्ताकार थे वरुण कुमार श्रीवास्तव। और पूजा, बहुत अच्छी जानकारी दी कि समुदाय ग्रुप मिलकर के जब कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर जलवायु को हम लोग परिवर्तन मतलब देख सकते हैं जी। और साथ ही हम आपको बता दें कि जब हम लोग आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो उद्योग और प्रकृति का जो एक रिश्ता होता है वो बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। उद्योग और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं है बल्कि पूरक है, और उद्योग मानव की प्रगति, रोजगार और सुख सुविधाओं का आधार भी है, जबकि प्रकृति मानव जीवन का स्रोत है। और हम कह सकते हैं कि असली विकास तभी होता है जब उद्योग प्रकृति से केवल लेना नहीं बल्कि उसे लौटाना भी सीखेंगे। और आज सतत विकास का ये मंत्र भी है कि फैक्ट्रियां सौर ऊर्जा अपनाना भी चाहिए, पानी जो है उसे रिसाइकल करना चाहिए, रेन जो हार्वेस्टिंग कहते हैं उसको करना चाहिए, और हर उत्पादन के साथ हरियाली बढ़ाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि जब चिमनी से धुआं निकले तो उसे धुआं नहीं बल्कि जिम्मेदारी हम लोग समझना चाहिए कि ऐसे धुओं को हम लोग को रोकना चाहिए.
2: बिल्कुल रोकना चाहिए. और ऐसे बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिससे धुएं से अभी सीमेंट भी बनाए जा रहे हैं.
1: बिल्कुल. तो वैसे अलग अलग तरीके से जो

0: ऑप्शंस होते, उपाय होते, उसे हम लोग को अपनाना जरूर चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप दोनों के संगम, उद्योग और प्रकृति के संगम के बारे में आप समझ सकते हैं कि आज कई कंपनियां हैं जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर काम कर रही है, यानी कि फैक्ट्री से एक बूंद भी गंदा पानी बाहर नहीं
1: निकलता है।
0: बिल्कुल। और कार्बन कैप्चर तकनीक से चिमनी के धुएं को ईंट और सीमेंट में बदला जाए, जैसा कि अभी आपने कहा, इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है साथियों कि समय के साथ जो विकास होता है वो बदलते जाता है, लेकिन इसके साथ तकनीक भी बदलते जाती है, और तकनीक के साथ अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग पर्यावरण का संरक्षण भी कर पाएंगे। और साथियों, हम आपको कहना चाहेंगे कि जो कचरा होता है ना, उस कचरा को हम लोगों को सही जगह पर ही उद्योग और प्रकृति का या जो संगम होता है, वो जो संगम होता है बहुत ही गहरा और बहुत ही मजबूत संगम होता है। और हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि साथी, आप कोशिश करें कि उद्योग और प्रकृति का जो संगम है उसको आप बहुत ध्यान से समझें, और उसके बाद में अलग अलग तरीके से आप उसको उपाय में लाइए।
1: बिल्कुल। तो अगर आपके छोटे छोटे प्रयास अगर आप करते हैं, तो जिस चीज़ की बात हम कर रहे हैं, यानी विरोधी नहीं है ये, उद्योग और प्रकृति अगर साथ चले तो मानव का ही भला होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत सारी जानकारियां हम लेकर आए थे, और भी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए मुझे यानी पूजा
0: और महिमा को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।
2: पर्यावरण ही सृष्टि है।

0: कार्यक्रम श्रमिक लोक अभी आप सुन रहे थे पूजा और महिमा के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 6 बज चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। पूर्व मध्य रेलवे के बरवाडीह गरवा रोड खंड पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 घंटे बाद भी अप ट्रैक पर परिचालन बाधित है। मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि वैकल्पिक रिवर्सल लाइन से मालगाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। हादसे के कारण आधा दर्जन पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एसआईटी गठन की बात कही। गोड्डा के कर्पूरी नगर में 3 दिनों से बिजली गुल रहने से गुस्साए लोगों ने आज सरकंडा चौक जाम कर दिया। स्थानीय निवासियों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही और छोटा ट्रांसफार्मर लगाने का आरोप लगाया। बिजली सहायक अभियंता सुरेंद्र गुप्ता के आश्वासन और तत्काल ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जाम हटाया गया। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आज नशाखोरी के खिलाफ 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के सैफ उमर और सीआईपी के डॉक्टर संजय कुमार मुंडा ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम खेती बाड़ी का।

0: गच लगाओ गच बचाओ खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनो या सो भाई बहन मन के सुषमा बहन बटले जोहार और निशिती रावर के हूँ जोहार
1: जोहार जोहार बहन और सोप सुनवैया भाई बहन के भी रौर मनक रेडियो संगी बहन निशिकर जोहार।
0: और बहन का हाल चाल है?
1: हाल चाल तो एकदम नगदे है बहन और नगद रह के भी चाहिए और सोबकले ऐसने आसरा भी करीला कि सोप मनक हाल खबर एकदम नगदे नगद रही।
0: एकदम जरूर भाई बहन मन ई पर्यावरण दिवस के शुभ बेरा बे रौर खातिर एगो छोट कुन संदेश जंगल और हरियाली कर महानता ले हरियर डांडे डांड पतई डोले मटी कर खुशबू संगे चिरे चुनगुन बोले पेड़ गाछ वृक्ष के बचाए के रखू रे भाई बहन मन इकर बिना जिंदगी है वीरा।
1: बिल्कुल तो ये छोटकुन संदेश के जैन के सब बुझिए गेला बुझिए गेला
0: है हाँ।
1: कि आज कर दिन है के पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस जे 5 जून के मनाल जाएला यानी कि आज कर दिन में
0: हाँ
1: है तो ये दिन दिवस के मनाए कर मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण कर प्रति जागरूकता बढ़ाना सोबक जन में जलवायु परिवर्तन प्लास्टिक प्रदूषण और जैव विविधता कर नुकसान जैसन गंभीर पर्यावरण से जुड़ल मुद्दा कर प्रति सब जन के जागरूक करना और जे भी प्राकृतिक संसाधन है वो मनक उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से और उचित तरीका से करल जा सके ताकि हमर पृथ्वी के आय वाला पीढ़ी लगिन बचाए के रखल जा सके बढ़िया तरीका से।
0: हाँ बहन एगो हमरे हमरे चाहे सब सुनोया भाई बहन मन ले बहुत बड़ दिवस लगे इ दिवस के हमरे मन काय के भर नहीं पूरा कर सकेला हमरे के एकर साथे अपन जे योगदान है अपन आस पास चाहे गांव घर में गाछ वृक्ष मन लगाए के हमरे मन इ दिवस कर आगे का कब एकर हमरे मन जागरूकता के बढ़ाए सकेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमरे मन देखो कि आज कर दिन में अपन जे छोट छवा मन है वो मन के एक छोटे छोटे गाछ वृक्ष या छोट पौधा मन लाइन के दे देवब ताकि जागरूकता से मतलब छवा मन भर जाबे और वो मन के बताब कि ये गाछ वृक्ष लगा कर का फायदा हो बेला
0: जरूर
1: तो छवा मन भी बहुत खुशी से गाछ वृक्ष के लगाबे तो वो गाछ वृक्ष कर वो मन बढ़िया तेर पोषण भी कर बै
0: हाँ
1: है
0: बहन और छोटे घरे से उम्र कर भीतरे एगो जागरूकता बढ़ जाए कि हमरे जे काम है गाछ वृक्ष लगाए चाहे एकर संरक्षण करे ओकर प्रति उमन कर मनोबल बढ़ जाए और ये चीज के हमेशा ले उमन कर ध्यान में रही कि हमरे एक के एकर नुकसान नहीं पहुंचाए।
1: बिल्कुल और जे चीज के छवा मन अपने से लगाए ना ना सेकर प्रति उमनक जे भावना होवेला
0: हाँ
1: उजुड़ल रहेला
0: हाँ हाँ
1: तो ये एगो बहुत बढ़िया बात लगे बहन। और देखो आज कर दिन में हमरे देखा थी विशेष कर कोरोना काल कर समय से हाँ कि स्वास्थ्य कर प्रति जन जागरूकता बहुत बढ़ जाए है सबक में अपन अपन स्वास्थ्य कर प्रति बहुत चिंता घुस जाए है और सेले सब मन प्रकृति बटे घूरे लायक है
0: हाँ।
1: और प्रकृति बटे घूरे लायक है तो

0: जे भी खेती बाड़ी से जे भी उपज होवेला सब कोशिश करे ना कि प्राकृतिक तरीका से जे भी उपज होवेला सेकर व्यवहार करल जाए, या जैविक खेती कर माध्यम से जे भी उपज होवेला सेकर व्यवहार अपन जीवन में अपन जिंदगी में करल जाए, ताकि ई विधि से जे भी अनाज कर उपज होवेला, सब्जी मनक उपज होवेला, से जहरीला चीज उकर में एकदम ना के बराबर होवेला,
1: हाँ बहन,
0: बिल्कुल प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और पौष्टिक होवेला, है नहीं?
1: देखो बहन, एखन जे रौरे बता ली कि हमरे मन बगरा जुड़े के लायक ही अपन प्रकृति कर आधार से, तो ऐसन में हमरे के अपन जीव सवांग ले मतलब कोनो खतरा नहीं भेटायला।
0: बिल्कुल
1: और जे हमरे मन रोजमर्रा में खाती पियाती ओके हमरे मन प्राकृतिक रूप से ओके अपनाए लेवब, तो हमरे कर शरीर भी स्वस्थ रही, साथे हमरे के का बार बीमारी में भी कमी आवी,
0: हाँ
1: सब में हमरे के अगर प्राकृतिक अपना तो हमरे के सहयोग मिले।
0: हाँ बहन, और देखो जैसे हमरे जानीला कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जे होवेला एकदम तनिए कन अंतर
1: हाँ
0: होवेला।
1: हाँ
0: इमें जैविक तौर तरीका से जे भी खेती बाड़ी करल जाएला सेकर में ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर कर उपयोग होवेला,
1: जरूर
0: और प्राकृतिक खेती कहूँ कि इकर में कोनवे बरन कर बाहरे से खाद नहीं लागेला, एकला गाय कर गोबर, गोमूत्र और जीवामृत और बीजामृत जे हमरे
1: हाँ बहन,
0: कहिला सेकर व्यवहार करल जाएला।
1: हाँ, और ये हमरे के प्राकृतिक रूप से भेटाए भी जाएला अपने घरे,
0: हाँ
1: और हमरे सब किसान भाई महीन मन के बिना पूंजी कर भी भेटाए जाएला,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इके
0: हाँ
1: किने कर दरकार भी नहीं पड़ेला,
0: हाँ
1: से
0: हाँ
1: हमरे सब भाई बहन मन ले ये एगो बहुते फायदामंद भी पहुँचाएला।
0: हाँ फायदामंद चीज है के, है नहीं? और देखो कि प्राकृतिक खेती में जे रसायन और होवेला सेकर मात्रा बिल्कुल बिल्कुल नहीं होवेला, सेकर से जे भारी खर्चा होवेला से बच जाएला, जमीन कर उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होवेला, और माटी में जे भी सूक्ष्म जीव जे हमरे कहिला कि हमरे कर साथी सूक्ष्म जीव जे जीवाणु होवेला सेकर वृद्धि होवेला, जे माटी कर उर्वरा क्षमता के
1: बढ़ाएला।
0: बढ़ाएला और माटी के जीवंत बनाएला, और जल संरक्षण के भी बढ़ावा मिलेला, काले कि प्राकृतिक तौर तरीका से जे भी खेती करल जाएला सेकर में मल्चिंग विधि के ज़्यादा बढ़ावा देवल गेलक है
1: जरूर
0: इसमें, और जे भी मल्चिंग विधि होवेला सेकर में पानी कर मात्रा बहुत कम लगेला, काले कि मल्चिंग विधि ऐसन विधि लगे जेकर में माटी में नमी बनाए क्षमता होवेला,
1: हाँ
0: है नहीं? तो ये तौर तरीका से करल खेती तो बहुत बढ़िया खेती लगे हमरे कर स्वास्थ्य ले। और
1: हाँ
0: बहन
1: बहन, और उम्मीद करीला सब भाई बहन मन के कि ये आज प्राकृतिक और जैविक विधि है जेके अपनाब और अपन खेती के बढ़िया से मुनाफा कमाब।
0: बिल्कुल
1: तो हमरे मन जानकारी और भी करब बहन, मुदा ओकर से पहले हमरे मन चलो रिज रंग भी करीला और सुनेला नागपुरी लोकगीत जेके गा है जानकी देवी और संगी मन।
0: बिल्कुल
2: दया चलू जा अब संगे संगे हम जा अब रारू संगे।

0: बड़ा नगद गीत रहे बहिन, एकदम गोटा रिझाई गेली बहुत।
1: हाँ बहन, तो
0: और
1: चलो हमरे मने आगे और भी कुछ नया
0: जान
1: जानकारी करब।
0: बिल्कुल, और जानकारी है मकई से जुड़ल, खेती से संबंधित। किसान है के हरीश चंद्र सिंह, और इनकर से भेंट कर रहे हैं सुकेश महतो।
2: जोहार किसान साथी, आज हम एक किसान कर पास आ ही और ये किसान जे हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं और एखन एकर खेत में लागल है मकई। और खेती बाड़ी तो करतबे करें ना, संगे संगे और भी आम कर बागवानी वन भी है और सब्जी कर भी खेती मन करें ना। एखन एकर खेत में मकई कर पौधा लहलहा थे, तो मकई एखन गर्मी कर दिन में भी इतना अच्छा मकई कर पौधा दिखाई देवत है और इकरे से ही घर परिवार में मन भी चलाए ना और अपन अतिरिक्त आय कर जरिया भी किसान मन ले है। तो चलू आज हम जानी ला वो किसान से, ऊपर से बात करी ला कि कैसन वो खेती करत है और कैसन लगात है और इकर से उकर का मुनाफा है ला। जोहार
3: जोहार जोहार।
2: का नाम होलक रोरे कर?
3: मर हरीश चंद्र सिंह।
2: गांव का नाम?
3: गांव कनक लोया।
2: कनक लोया अम्ब पखरा में पड़ेला। ये अलग है के?
3: ये अलग गांव है के।
2: अच्छा, खेती कर रही, पौधा तो बड़ा बड़ा हो जा है।
3: हाँ हाँ।
2: और इके कब लगाए रही?
3: डेढ़ महीना जैसे हो।
2: डेढ़ महीना जैसे हो तो भी तैयार हो कितना समय लगे?
3: ये तो करीब करीब 70 दिन का खेती है।
2: 70 दिन में तैयार हो जाएगा?
3: हाँ, एखन बढ़िया टाइम में लगाई तो शुरुआत जुलाई अगस्त में निकल जाए तो उकर

0: बढ़िया दाम मिली लेखे उम्मीद कर के लगाई।
1: एखन तो जे अच्छा एखन जे से गर्मी कर दिन भी है, पानी पटवन कर असुविधा तो नहीं होगा?
0: पटवन भी मोटर लगाई नहीं तो मोटर पाइप से हमें पटाइला।
1: कुआं है कि बोरिंग है?
0: ये बोरिंग है
1: तो कैसे पूरा पानी हो जाएगा?
0: है जाएगा।
1: अच्छा खेती कब से करे लाई घेरो रे?
0: हमें तो देखो मोर बाप दादा से ही वो बचपन से करती, इखन से थोड़े कि हमार कोई नौकरी है, कोई दूसरा व्यवसाय है, बड़ा बिजनेसमैन नखी और कोई नौकरी चाकरी कुछ नखे, हमें इकरे में आधारित है खेती बाड़ी में।
1: मन खेती बाड़ी कर के ही अपन जीवन
0: जीविका। हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ वही बात है।
1: तो खेती बाड़ी से ही छुआ उनके पढ़ाती?
0: हाँ
1: लिखाती
0: छुआ बुता के पढ़ाती लिखाती जो भी करती इकरे से हट।
1: तो खेती कर लिए कभी रोरे कोई प्रशिक्षण ले रही का?
0: प्रशिक्षण देखो हमें तोरपा से, मैं तोरपा ब्लॉक में कृषि मित्र रहूं।
1: अच्छा कृषि मित्र भी
0: तो,
1: है?
0: हाँ तो
1: इखन है कि नहीं?
0: इखनो है।
1: अच्छा
0: उकर में बीच बीच में हमें के इकर प्रशिक्षण बोलात रहे।
1: हाँ
0: कहीं मकई कर तो कहीं टमाटर कर तो कहीं कुछ कुछ और गेहूं कर कैसन लगाना है विधि, वो हिसाब में उमन प्रशिक्षण बीच बीच में कभी कभी देत रहे।
1: तो रोरे जे खेती एखन तो मकई दिखा थे?
0: हाँ
1: और कोनो खेती भी करी ला?
0: और धान मन करी ला, मरुआ मन करी ला, उरद मन करी ला।
1: तू तो मानसून का सीजन में?
0: हाँ हाँ समय कर आधार पर। आज कल में सब्जी लगाई ला, प्याज मन भी लगाई रही, इन बगल में जो घास हो जाइए वो बटे प्याज मन रहे और रुके खाने कटे खाने जोताई उताई नहीं कर पाई रहो, फिकर चलते वो जोताई करे वाला हाँ एक दो
1: अच्छा।
0: दिन में, और मिर्चा मन लगाऊ कुछ सब्जी कर कुछ वेरायटी
1: किसी किसम सब्जी।
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ हाँ हाँ
1: अच्छा चलो बताओ कि मकई लगा कर विधि कैसा है?
0: हमें लाइन में लगाई।
1: कितना दूरी में लगाई ला?
0: दूरी करीब करीब 1 फीट से तो ज्यादा है थोड़ा
1: अच्छा
0: थोड़ा।
1: मने इकर जैसे लगा कर जो विधि है प्रक्रिया है उसे बता दो।
0: सबसे पहले रोटावेटर से जोताई करवा लो,
1: रोटावेटर से
0: जोताई करवा लो जो की उगर घास सहित सबके वो तो काट पीस के। हाँ रोटावेटर से जोताई करे के बाद खेत तेरा तैयार, हल कर बाद पटवन करे खाए,
1: फिर खाद वो डाली ला कि नहीं? गोबर खाद वन कंपोस्ट खाद वन?
0: गोबर खाद भी डाली ला और जे वो सल्फेट भी डाली ला, ये रासायनिक खाद भी डाली, थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे के लागिन मैं ये
1: नाली बनाई ला।
0: हाँ नाली बनाना,
1: नाली बनाई ला। जब बीज डाली ला से कर पहले खाद वन डाली ला कि नहीं?
0: हाँ
1: कौन कौन खाद वन के दबी?
0: वही तो कंपोस्ट जे भी गोबर खाद।
1: अच्छा
0: और जे रासायनिक खाद उकर साथ साथ हमें वह बीज गिराते जाएगा उचित दूरी में, अंदाज लगभग में वही कर तो कम बेसी थोड़ा बहुत है ला, लेकिन लगभग हमें गिराते जाएगा उगे उकर बाद उगे हमें क्लोज कर दे
1: ढक दे ला। ठीक है जब बढ़ जाएगा तब फिर का करेला?
0: ये थोड़ा बढ़ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा जीतत रहे तो इकर से पहले हमें ये कोड़ा करना है।
1: फिर निकाई गोड़ाई मन?
0: हाँ हाँ निकाई गोड़ाई कोड़ाई सब करीला,
1: फिर माटी चढ़ा दे।
0: हाँ
1: अच्छी कर बाजार व्यवस्था का चीज है?
0: बाजार व्यवस्था कोनो न छे, ये बाजार व्यवस्था हमें जे कि
1: मन कहाँ ले जाए के बेची?
0: हाँ,
1: तैयार होने
0: हमारे जगह है चौक है तोरपा।
1: हाँ
0: मेन टाउन कहू हमारे लगे तो तोरपा ले जाएला बेचे, बाजार भी वही लागेला और एक तो डेली कर हुआ बाजार या है कोई देव
1: तो तोरपा ले जाए कर बेची ला।
0: हाँ
1: अच्छी मकई लगा है कितना ठाव में हुई?
0: 20 डिसमिल मानू नहीं,
1: 20 डिसमिल से तो वैसे बगरा बुझात है,
0: कम लगा है लेकिन इकर से।
1: अच्छा
0: तो
1: जिसे इके लगाए में कितना खर्चा हुआ होगी?
0: कम से कम 4500।
1: खेती करे थी?
0: हाँ,
1: तो मुनाफा के लिए ही करे थी?
0: हाँ, हाँ,
1: तो कितना तक जितना अगर 4500 तक एकर में लागत आए तो कितना तक एकर में मुनाफा हुई?
0: सही दाम मार्केट में मिले नहीं?
1: हाँ
0: तो है ला, तो ये लेखे कभी कभी स्थिति आवेल नहीं
1: देखो
0: कि 2 रुपया किलो टमाटर के निवेश में निकलेला तो सही उकर दाम मिलेला, हले तो है ला और जितना खाए के मन करेला उतना खाओ, चाहे जितना रिश्तेदारी मन के देखा चाहे मार्केट में जितना बेचे खाए बेच देला।
1: जब खेती किसानी करेला तो उकरे से घर द्वार भी चलेला तो इकर मुनाफा के सोच के ही
0: हाँ,
1: खेती
0: हाँ,
1: बारी करल जाला नहीं?
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: है नहीं? जैसे पटवन में आज कल जैसे होला गर्मी कर दिन है पानी कर कमी हो जाएला तो
0: हाँ,
1: इकर ले जैसे ड्रिप इरीगेशन कर विधि से भी आजकल पटवन करल जाए तो उस चीज के काहे उपयोग नहीं करी ला।
0: मैं तो देखो खुट्टी जे मैं ना अभी कृषि विभाग हुआ से भी जुड़ल रहो और कई बार आवेदन कर लो कि हमको बड़ा बोरिंग दे दीजिए।
1: अच्छा
0: लेकिन कहा कि हम घुमाए दिलाए और कई बार आवेदन भी कर चुके रहो।
1: अच्छा।
0: और हुआ से भी पास नहीं करना है।
1: अच्छा
0: हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा
1: मैंने खेती बाड़ी भी करे में कठिनाई कर दौर से गुजर खाए। अच्छा
0: जोहर हाँ
2: तो एखन हमरे सुनत रही मकई कर खेती काते होवेला सेकर बारे में किसान रहे हरिश्चंद्र सिंह और इनकर से भेंट काट कर रहे सुकेश महतो। तो जानकारी कर क्रम के हमरे और भी आगे बढ़ाईला।
3: हाँ बहन
2: और सुनीला गर्मी में दुधारू पशु मनक प्रबंधन काते होवेला सेकर बारे में और इनकर बारे में बताते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक और इनकर से भेंट गाट कई रहे कृष्ण जीवन पौराणिक।
4: किसान साथियों जोहार नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बेहद जरूरी है। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप का असर केवल हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि हमारे बेजुबान पशुओं पर भी बहुत गहरा पड़ता है, खासकर जो हमारे दुधारू पशु हैं। उन्हें इस मौसम में हीट स्ट्रेस यानी पानी की मार झेलनी पड़ती है जिसे न केवल उनका स्वास्थ्य गिरता है बल्कि दूध की मात्रा में भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो इस गर्मी के मौसम में पशुओं का आवास कैसा हो, उनके खान पान में क्या बदलाव किए जाएँ और लू से बचाव के लिए कौन से ज़रूरी कदम उठाए जाएं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक, सहायक प्राध्यापक रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है।
5: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गर्मी में दुधारू पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता
5: है। गर्मी जैसे जैसे आप देखते हैं कि बढ़ते जाता है तो जैसे इंसान में हम देखते हैं कि गर्मी का जो प्रभाव है लोगों में ज़्यादा जो है पसीना आना और पानी का जो है प्यास लगना ये सब चीज़ देखते हैं, उसी तरह से जानवर में भी ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है शरीर का तापमान उसका बढ़ जाता है। शरीर का तापमान बढ़ने का जो मेन कारण है कि जो शरीर का जो हमारा तापमान होना चाहिए जो गाय का हम लोग देखते हैं 102 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ती है उसका तापमान 103 से ऊपर हो जाता है और गायों में आप देखेंगे कि हाँफना स्टार्ट हो जाएगी और उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है। दूध में अगर है तो दूध प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर बच्चा है या बाछी है तो उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई गर्म होने वाली बाछी है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बाछी जो है सही समय पे गर्मी पे नहीं आती है। इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो हम खान पान लेते हैं उसी से हमारा जो है पूरा फंक्शन शरीर में करता है, लेकिन जो हम जैसे भोजन प्राप्त करते हैं वो हमारा जो है भोजन लगना चाहिए प्रोडक्शन में, मतलब उत्पादन में लगना चाहिए या रिप्रोडक्शन में लगना चाहिए, वो नहीं लग करके वो जो है पूरे हीट को निकालने में शरीर से बाहर निकालने में लग जाता है, जिसके चलते इसका प्रतिकूल प्रभाव जानवरों के शरीर पर पड़ता है, साथ में उत्पादन पर पड़ता है और उसका जो अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन में पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों को हम लोग यही बोलेंगे कि गर्मियों में खास करके पशुओं का उचित जो है प्रबंधन बहुत ही जरूरी है।
4: जी डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रेस के मुख्य लक्षण क्या हैं?
5: जैसे हम अभी बता रहे थे कि जैसे इंसानों में हम लोग को हीट स्ट्रेस के जो लक्षण दिखते हैं कि खास करके जो पसीना बहुत ज़्यादा आना, तो जानवरों में भी कुछ विशेष लक्षण होते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर हीट स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें देखेंगे कि पशु के इससे जीभ से जो है लार आ रहा है, टपक रहा है, सांस जो है तेजी से बढ़ने लगता है और उसका जो है आप चेस्ट वाला जो एरिया होता है छाती वाला एरिया बहुत ही तेजी से चलने लगता है। तो इससे जो है हम सांस में देखते हैं कि बहुत अचानक वृद्धि, मतलब जो होना चाहिए 15 से 20 बार वो 75 से 80 बार जो है वो आपको सांस लेने का दर जो है बढ़ जाता है वो देखेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि पानी का जो है उसमें बार बार जो है पानी का जहाँ आप रखे हैं पीने के लिए उसमें जाता है जानवर, और साथ में हम देखते हैं कि उसका भूख में कमी हो जाती है और देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि जहाँ पानी रखें उसमें ज़्यादातर समय वहीं पे व्यतीत कर रहा है, तो दूध उत्पादन पे कमी और उसके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव हमको देखने को मिलेगा।
4: अभी आपने पानी की बात की, तो गर्मियों में पशुओं के लिए पानी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए?
5: पशुओं के लिए हमेशा हम बोलते हैं कि हमेशा साफ पानी दें और ठंडा पानी पिलाएं, क्योंकि शरीर का तापमान ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आंतरिक जो उसका तापमान है बढ़ा हुआ है। तो जब भी मान लीजिए किसी किसान भाई के पास कुआं है तो कुएं से पानी निकालें, ये नहीं कि आप नाद में जैसे है कि नाद में निकाल करके पानी छोड़ दिए हैं और दिन भर उसी पानी को पी रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो सूरज का रोशनी है डायरेक्ट नाद पे पड़ रहा है और उससे पानी गर्म हो जाता है। तो वो पानी अगर आप पिलाएंगे तो पशु का जो है हीट जो है वो ठंडक नहीं पहुंचाएगा, आंतरिक जो है ठंडक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए हमेशा उसको पानी अगर निकाल के पिलाएं, जब भी निकाल रहे हैं अगर चापाकल है तो आप चला करके पिलाएं या कुआं से है तो बार बार पिलाएं। और अगर आप देखेंगे इसमें तो साधारणतः गर्मी के दिनों में पानी का जो रिक्वायरमेंट है उसको जो चाहिए 60 से 80 लीटर कि प्रतिदिन केवल पीने के लिए चाहिए, तो इसीलिए पर्याप्त मात्रा में हमको पानी देना चाहिए और साफ पानी स्वच्छ पानी देना चाहिए जिससे उसका कोई स्वास्थ्य पर असर प्रतिकूल ना पड़े।
4: जी, तो गर्मी से बचाने के लिए पशुशाला कैसी होनी चाहिए?
5: पशुशाला के लिए खास करके गर्मियों में हम बोलते हैं कि जो ओरिएंटेशन है मतलब डायरेक्शन जो हम लोग घर बनाते हैं उसमें पूरब पश्चिम की दिशा होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है सनलाइट मैक्सिमम आप देखेंगे कि दक्षिण में होता है तो डायरेक्ट जो है उसके शेड पे नहीं पड़े, इसलिए पूरब से पश्चिम जो है हम लोग रखते हैं। और आवास जो बनना चाहिए वो हवादार होना चाहिए, जो खिड़की है वो दोनों आमने सामने होने चाहिए और हवादार होने चाहिए। जो ऊंचाई है जो छत की ऊंचाई होनी चाहिए बीच का, पहले जो है 10 से 15 हम लोग बोलते थे, लेकिन अभी जो आ रहा है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि 15 से 18 फीट का जो हाइट है वो बहुत ही अच्छा होता है। साथ में अगर मान लीजिए उसका छत की बात करते हैं हम लोग तो छत में खास करके अगर कोई किसान भाई खपड़ैल का रखे हैं तो ठीक है, सबसे बेस्ट होता है खास करके हीट स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए। अगर मान लीजिए एस्बेस्टस का रखे हैं तो एस्बेस्टस में वो फूस डाल दें, फूस के साथ साथ में अगर उस पर अगर खपड़ा का जो है खपड़ैल या टाइल्स जो अभी आ रहा है उसको अगर रखेंगे तो बहुत हद तक जो है गर्मी का तनाव जो है अपने आवास में हम लोग कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर गर्मियों में आप पानी का छिड़काव करें ऊपर से तो आप आसानी से जो है हीट स्ट्रेस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं।
4: जी, अभी तो आपने बात की पशुशाला कैसी होनी चाहिए और हीट स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गर्मियों में कौन सा चारा देना लाभदायक होगा?
5: या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, खास करके जब गर्मी पड़ती है तो ये प्रायः देखा जाता है कि पशुओं में भूख कम लगती है, खाना जो है कम कर देता है, तो उस समय में हमको कुछ बदलाव करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि संतुलित आहार देना है हमको, तो संतुलित आहार में आता है सूखा चारा, हरा चारा और दाना आता है, तो सूखा चारा की मात्रा को उस समय हमको कम कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे देखेंगे जनरली तो एक पशु को खास करके जो 400 केजी बॉडी वेट है और 10 केजी जो है दूध प्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि 4 से 5 केजी सूखा चारा देना चाहिए, 20 से 25 किलो जो हरा चारा देना चाहिए और जो दाना की मात्रा है हर एक 3 केजी दूध पर 1 केजी जो है दाना की मात्रा, मिश्रित दाना की मात्रा देना चाहिए। लेकिन जब गर्मी होता है तो उस समय सूखा के चारा की मात्रा को कम कर देना है 1 से 2 किलो और जो है हरा चारा की मात्रा 25 से 30 किलो बढ़ा देंगे और जो कंसंट्रेट जो दे रहे थे वो वैसे ही देंगे, जो मिश्रित दाना दे रहे हैं जो 3 केजी हर एक 3 केजी पर 1 केजी देना है।
4: जी, तो पशुओं को किस समय चारा खिलाना चाहिए?
5: पशुओं को खास करके गर्मी के मौसम में आप सुबह सुबह 8 से 10 के बीच तक आप उसको खिला दीजिए तो
2: एखन हमरे मनस यही कार्यक्रम के साथे अब खेती बाड़ी कर बेरासी रायला और शुरू हुएला हमारी दुनिया कार्यक्रम। तो हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनैया भाई बहन मन की एक धाव फिर से स्वागत है।
3: हाँ, और देखो बहन, जैसे हमरे मन जानबे करीला कि विकास काले जरूरी है।
2: हाँ,
3: है विकास तबे होवेला जब जनमानस में शिक्षा कर प्रचार होवेला।
2: हाँ,
3: है नहीं? और एको ये बहुत बड़का चीज लगे कि अगर शिक्षित समाज होवेला तो विकास भी बहुत बढ़िया तेर गति धरेला।
2: हाँ,
3: है भी
2: देखो बहन, काले की कोनो भी आदमी चाहे समाज और देश कर विकास करे के लिए शिक्षा कर होवे बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, और शिक्षा से ज्ञान और कौशल एकला नहीं भेटाला, बल्कि जीवन में आत्मनिर्भरता और सही निर्णय लेवक क्षमता भी बढ़ेला। और अगर हमरे मन जीवन में सही निर्णय लेवक जानब तो हमरे मन हमरे मनक भविष्य भी बहुत उज्जवल।

0: थोवा तो अवसर रोजगार कर अवसर भी बेहतर अवसर भेटायला हमरे के जेकर से गरीबी कम होवेला है नहीं।
1: हाँ बहन, जमे कहब तो हमरे कर जीवन में
0: हाँ
1: शिक्षा कर होबे एक बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है
1: हमरे
0: बिल्कुल।
1: के अपन रहन सहन खातिर चाहे अपन जीवन ले भरण पोषण खातिर सबेक चीज ले शिक्षा होबे एक बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षित समाज से देखो कि अगर समाज शिक्षित होवेला तो जे अंधविश्वास कर कुरीति होवेला या समाज में जे भी असमानता पसेर जाए
1: हाँ
0: से एकदम बराबर शिक्षित समाज में ये कुरीति मन हट जाएला।
1: हट जाएला।
0: हाँ
1: और देखो बहन, जे हमरे कर अंधविश्वास कर बात हुआ थे तो हिया शिक्षा नहीं होवे से बहुत आदमी मन कर ये अनशिक्षित से जान भी गवाए के लई हैं।
0: बिल्कुल
1: जहाँ शिक्षा नहीं होवे खातिर बार
0: ओझा
1: बीमारी
0: मत्ती
1: में
0: में।
1: ओझा
0: हाँ
1: माती में पड़ जाता है,
0: हाँ
1: सही
0: हाँ
1: समय में उमन डॉक्टर खाने नहीं जाए के हिया हुआ भटक चला था। उकर से
0: बिल्कुल।
1: आदमी मन कर एगो लापरवाही हुआ थे
0: हाँ
1: और जान साथे उमन खिलवाड़ भी करे लाई
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: सेले हमरे सब कर ले शिक्षा बहुत जरूरी
0: हाँ
1: है।
0: तो शिक्षित व्यक्ति एगो जिम्मेदार नागरिक भी बनेला और शिक्षा हमरे के अपन अपन अधिकार और कर्तव्य कर प्रति जागरूक करेला
1: हाँ
0: जेकर से एगो बेहतर समाज का निर्माण होवेला है
1: जरूर
0: नहीं।
1: बहन,
0: तो बहन आगे बढ़े के चाहिए।
1: एकदम बढ़े चाहिए
0: हाँ
1: बहन। तो चलो हमरे मन नागपुरी लोकगीत सुनीला जिके गा है कालिंदी कुमारी और संगी मन।
0: हाँ सिहिल करो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: तो एखन हमरे कालिंदी कुमारी और संगी मनक गावल गीत सुनली। तो बहन आगे हमरे सुनीला एगो नागपुरी में वार्ता, संचार कर बढ़ते कदम। वार्ताकार है डॉक्टर बुधन राम।
7: मनुख एगो सामाजिक प्राणी है के, और संचार करे उकर प्रवृत्ति है के, अपन भाव विचार कर आदान प्रदान या लिवेक दिवेक करे उकर जन्मजात स्वभाव है के। ईसन मानल जाए कि मनुख कर अस्तित्व में आवेक संगे संचार कर जरूरत पड़लक हुई, जे संचार आज मनुख कर मूलभूत जरूरत हो जाए। संचार सोभे समाज कर खातिर बहुत जरूरी है। जे जगह शरीर ले भोजन कर है, समाज व्यवस्था में वह जगह संचार कर है। मनुख जन्म से मरण तक संचार व्यवस्था से जुड़ल रहेला। संचार के मानव संबंध कर नींव कहल जा सकेला। सामाजिक वैज्ञानिक मनकर मानिक है कि कोई भी परिवार, समूह, समुदाय, समाज में अगर मनुख मनकर बीच आपसी बातचीत बंद हो जाए तो सामाजिक विघटन कर ओर हो जाए और मानसिक विकृति जन्म लेवे लागी। आओ अब हमरे मन संचार का है के इके जानब। जब दू या दू से बेसी आदमी आपस में कुछ सार्थक चिन्ह, संकेत और प्रतीक कर माध्यम से विचार कर लेवेक देवेक करे न तो के संचार कहल जा सकेला। संचार दू मार्गी प्रक्रिया है के जेकर से विचार कर लेवेक देवेक हुवेला। माने संचार से मनुख ज्ञान, सूचना और अनुभव के आपस में बांटे न, और ई लखे आस पास के आदमी जन के समझ के उके नियंत्रित करेना और उनकर विश्वास जीते कोशिश करेना। इलके संचार कर उद्देश्य के ध्यान

में राय के संचार कर अर्थ होलक भाव विचार संदेश कर ईसन अभिव्यक्ति और ईसन आदान प्रदान हके जे भाव विचार संदेश के सुनवैया कर भीतर प्रतिक्रिया के जन्म देवेला। संक्षेप में संचार कर उद्देश्य ई लखे है भाव विचार संदेश के दूसर आदमी तक पहुँचाए और आपसी समझ सिर जाए अपन अनुभव के एक दूसर के बांटे समाज के सदस्य मन के समझे और उके नियंत्रित करेक और उकर विश्वास के बढ़ाएक इकर संगे ज्ञान सूचना और अनुभव के आपस में बांटेक अपन विचार भावना और सूचना के बांटेक ले मनुख के संचार कर दरकार पड़ेला। संचार लिखित और मौखिक दुयो रूप में हुएला। पहले जमाना में सूचना संदेश के एक ठाव से दूसर ठाव तक भेजे के लिए बहुत बेरा लागत रहे मुदा संचार कर बढ़त कदम एखन सूचना और संदेश के लेवेक देवेक ले बहुत आसान बनाए दे है और समय भी बहुत कम लागेला। सेटेलाइट टेलीविजन इंटरनेट मोबाइल फोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने तो गोटे दुनिया के एक शहर में बदल दे है। आओ अब हमरे मन संचार कर साधन के बारे में जानकारी हासिल करब। हमरे मन कर बीच में संचार कर सबसे प्रबल माध्यम हमरे मन कर आवाज और भाषा है और इकर वाहक कर रूप में पत्र पत्रिकाएं टेलीफोन मोबाइल फोन तथा इंटरनेट इत्यादि है। संचार कर उद्देश्य संदेश तथा विचार कर लेवेक देवेक से है। संपूर्ण मानव सभ्यता यह संचार पर आधारित है और इस संचार के तेज और सरल बनाए खातिर सूचना प्रौद्योगिकी कर जन्म होलक। टेलीफोन कंप्यूटर मोबाइल फोन इंटरनेट जैसन चीज कर आविष्कार यह संचार कर खातिर होलक। इंटरनेट एक ऐसा सशक्त माध्यम है जेकर चलते हमरे मन गोटे दुनिया में कहो कखनो कम से कम बेरा और कम से कम खर्चा में सूचना और विचार कर लेवेक देवेक आसानी से कर सकीला। एखन परिया में संचार कर बढ़ते कदम कर रूप में संचार कर कैठो साधन है। प्रिंटिंग माध्यम कर रूप में संचार कर साधन जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें जर्नल पंपलेट बैनर पोस्टर आदि। समाचार पत्र समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जेकर में इखन बेरा कर घटना राजनीति खेलकूद नौकरी चाकरी और जगह विशेष कर सोभे समाचार सस्ता कागज में छापल रहेला। समाचार पत्र संचार कर बढ़िया साधन हके। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का रूप में संचार कर साधन जैसे रेडियो टेलीविजन इंटरनेट ईमेल लैंडलाइन फोन मोबाइल फोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर आदि। रेडियो एक ऐसा संचार कर साधन हके जे बिना तार के आवाज के एक जगह से दूसर जगह भेजल जाएला। रेडियो कर आविष्कार मार्कोनी नामक वैज्ञानिक कर रहे। रेडियो के पहले जादुई डिब्बा भी कहत रहे। मोबाइल आवे से पहले आदमी मन रेडियो टंगाए के घूमत रहे। खेत में काम करवैया आयर में रेडियो राख के खेती बाड़ी कर काम रेडियो सुन सुन के करत रहे। रेडियो से समाचार और मौसम संबंधी समाचार सौभे पावत रहे। टेलीविजन और मोबाइल आवे से पहले रेडियो लगभग सौभे घर में राखल रहत रहे। आज कल जैसे सौभे घर में मोबाइल पावल जाएला। रेडियो कर बाद टेलीविजन कर आविष्कार होलक। रेडियो में तो आवाज खाली सुनात रहे मुदा टेलीविजन में तो आवाज के साथ साथ फोटो दिसे लागलक। भारत में सबसे पहला टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में लगाल गेलक। टेलीविजन में प्रधानमंत्री कर पहला भाषण 1960 ईस्वी में आजादी कर दिन देल गेलक और रंगीन प्रसारण कर शुरुआत 1982 ईस्वी में होलक। टेलीविजन से राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा कर विकास में बहुत बल मिललक। टेलीविजन मनोरंजन कर एक बहुत बढ़िया साधन है के जेकर से फिल्म धारावाहिक देखल जाएला। साथे साथ समाचार के सबसे बेस साधन टेलीविजन हके। इंटरनेट इंटरनेट गोटे दुनिया में नेटवर्क कर जाल है के जेकर में सूचना संदेश डाटा फोटो वीडियो गाना फिल्म घूमत रहेला जे ऑनलाइन देख सुन सकेला या डाउनलोड करके देख सकेला। इंटरनेट से कोई भी चीज कर बारे में जानकारी तुरंत पाए सकेला। पढ़वैया छुआ मन ले इंटरनेट में पढ़ाई कर बारे में जानकारी देवल है उकर सच्चाई के जैन के उके पढ़ाई कर सकेला। इंटरनेट में सोभे तरह कर जानकारी देवल है आदमी अपन जरूरत कर मुताबिक देख सुन सकेला।
कोई भी चीज कर दू गो पहलू हुएला, सकारात्मक और नकारात्मक।

0: सकारात्मक आदमी जन के सकारात्मक पहलू में ध्यान देवे के चाहिए। छुआ मन इंटरनेट मोबाइल में एकदम चिपकल रहे ना, उके माय बाप के ध्यान देवे के जरूरत है कि उस सकारात्मक चीज के देखे ले कहे के चाहिए, नकारात्मक के नहीं। आज कर युग में यानी 21वीं सदी कर युग में संचार कर बिना जीवन कर कल्पना भी मुश्किल है। पुरना परिया में पेरेवा जैसन पक्षी से संदेश सूचना कर लेवेक देवेक करत रहे। संदेश वाहक माने हरकारा घोड़ा कर सवारी करके संदेश के लेके जात रहे, जिकर में कई दिन लाइक जात रहे। जैसे जैसे संचार कर कदम बढ़लक, विज्ञान कर विकास होलक, नवा नवा संचार के उपकरण जैसे तार, टेलीग्राम, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन कर आविष्कार होते गेलक और अब हमरे मन संचार कर साधन पर पूरी तरह से निर्भर हो गेली। अब हमरे मन संचार कर महत्व पर प्रकाश डालत थी। संचार कर सहायता से संदेश के एक जगह से दूसर जगह तक भेजल जा सकेला, विज्ञापन और समाचार पत्र छापल जा सकेला, आंकड़ा कर लेन देन आसानी से करल जा सकेला। शिक्षा बैंकिंग में संचार कर बहुत महत्व है। संचार कर सहायता से सूचना देवल जा सकेला, साथ में सूचना पावल जा सकेला। दूरदर्शन रेडियो कर सहायता से माने संचार कर माध्यम से आदमी जन कर मनोरंजन हो सकेला। संचार कर सहायता से आदमी मन के जागरूक करल जा सकेला। संचार कर माध्यम से आदमी जन के वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देवल जा सकेला। संचार कर सहायता से मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करल जा सकेला, जैसे 3 मई 2019 के फनी तूफान कर जानकारी से मोटा मोटी 10 लाख आदमी जन के सुरक्षित जगह से पहुंचाए के मानव कर सेवा करल गेलक। कहल जा सकेला कि अगर संचार कर साधन के हमरे मन कर जिंदगी से निकलाय देले, आदमी पूर्णा परिया में जाए पहुंच जाए, माने संचार कर बिना जीवन अधूरा है। संचार कर बढ़ते नवा साधन हमरे मन ले कोई वरदान से कम नखे।
1: तो एखन हमरे सुन ली वार्ता नागपुरी में संचार कर बढ़ते कदम और जानकारी देवैया रहे डॉक्टर बुधन राव।
2: हाँ बहन, और ये जन छोट छोट जानकारी से हमरे मन के बहुत बेस बेस खबर मिलेला और हमरे के एकर से बहुते फायदा भी होवेला। तो ये जानकारी कर साथे साथ वादे अब चलो सुनेला रिचरंग बटे आगे बैठ के खुरठा लोकगीत जिके गा है सुकुमार और संगीमन।
1: हाँ
3: बोले बगिए पिया न खैसे जिएंगे कोई लोहिया साल दे लेंगे।

कार्यक्रम हमारी दुनिया अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुनेंगे प्रादेशिक समाचार अब से थोड़ी ही देर में।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले दो दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजनाथ राम ने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री से दोनों राज्यसभा सीटों पर जेएमएम प्रत्याशी उतारने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है।
2: देखिए, जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता है सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े।
1: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महागठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दोनों सीटों पर दावा करने के संकेतों के बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह अटूट है। पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लेंगे और सभी दल मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे।
3: सभी लोग सोच समझ करके फैसला लेंगे और इस संदर्भ में जो बेहतर है वो हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी ही बता पाएंगे क्योंकि वही लगातार बातचीत कर रहे थे और प्रदेश के अध्यक्ष के समय तो कमलेश जी की गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। हमारे दोनों जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो चुनाव।
1: इस बीच अब से थोड़ी ही देर बाद रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक दल शामिल होंगे जहां चुनाव की रणनीति और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने पर गंभीर चर्चा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि नितिन नवीन के झारखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है।
4: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला झारखंड प्रवास है, तैयारियां चल रही है और बहुत उत्साह है। आप देखेंगे पूरा शहर सज रहा है, लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनका जन्म भी इसी झारखंड रांची में हुआ है, वो बड़े भी पले बड़े भी यहाँ से और भी उनका निकटता है।
1: हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। कर्नल नीलेश श्रीवास्तव ने कहा कि लंबित समस्याओं को मुख्यालय भेजकर फीडबैक लिया जाएगा।
5: यदि किसी की कोई समस्या थी तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हम एक ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेंगे और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को उनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो और इनको कॉन्टेक्ट करके हम फीडबैक लेंगे कि वो रिजॉल्व हुई कि नहीं।
1: राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एएसआईटी गठन की बात कही। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची स्थित लोकभवन परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
6: लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि भाई एक पेड़ मां के नाम आज से कम प्रारंभ हमें करना चाहिए ताकि पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके। पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम लोग ठीक है, अगर ठीक भी हमसे सब लोगों को करना, हर व्यक्ति का एक योगदान हो सकता है तो पौधा लगा करके हो सकता है।
1: लोहरदगा के बक्सी डिपा में नवनिर्मित जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से एक एक पौधा लगाने और इस पार्क को संरक्षित रखने की अपील की। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज बैलगढ़िया पुनर्वास स्थल में नए उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। सांसद ढुल्लू महतो और प्रमंडलीय डाक अध्यक्ष राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग और डाक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा।
7: यहाँ पे उप डाक घर नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। यहाँ पे हमारे कोयला मंत्री जी आए थे, उस समय हम लोगों ने आश्वस्त किए थे कि बहुत जल्द यहाँ पे उप डाक घर हम लोगों ने खुलवाने का काम शुभारंभ हुआ है। इससे बहुत तरह का लाभ यहाँ के लोगों को पहुँच पाएगा, लोगों का समय का बचत होगा, लोगों को आसानी तरीके से कोई एक साधारण से साधारण लोग वहाँ पे जाकर अपनी हर सुविधा को वहाँ की जानकारी ले सकता है।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए तेज हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में कुल्हान डायनेमोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स ने ईसा केशरी के 54 रनों की मदद से 136 रन बनाए। जवाब में कुल्हान डायनेमोज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: झारखंड की फिल्म प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त मंच देने के लिए 26 से 28 जून तक होगा चित्रवट झारखंड फिल्म फेस्टिवल। पूरा आयोजन सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची परिसर में होगा। महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इसे लेकर डाल्टनगंज में आयोजन समिति के सचिव पुलिन मित्रा ने पत्रकारों से बातचीत की और विस्तार से बताया।
2: मुख्य रूप से झारखंड राज्य स्तरीय है और झारखंड के ही लोक चाल भाषा, यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति, ये सबसे रिलेटेड ही हम लोग को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक सोच, समाज में जो विघटन हो रहा है उसपे रिलेटेड ये सारे मुद्दों को रखते हुए 3 तरह के हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक शॉर्ट स्टोरीज पर जो शॉर्ट मूवी, इसके अलावा जो झारखंड की जो सभ्यता या यहाँ पर जो हेरिटेज है, ये सब के लिए वित्त सकते हुए हम लोग उसके लिए डॉक्यूमेंट्रीज भी हम लोग मान रोजगार परक भी हो, रोजगार से जुड़े। और मुख्य रूप से झारखंड राज्य स्तरीय है और झारखंड के ही लोग।
1: पलामू में थाना एवं चेकिंग पॉइंट के लिए डायल 112 के तहत 36 नई बाइक दी गई। पुलिस लाइन में समारोह आयोजित हुआ। पलामू के डीआईजी किशोर कौशल एवं एसपी कपिल चौधरी ने बाइक रवाना की। मौके पर डीआईजी किशोर कौशल एवं एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि
3: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि सघन रूप से गति सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, 2 पहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिसे पलामू पुलिस के द्वारा और उसके गाड़ी जैसे GPS उसमें लगाया गया।
4: 12 बाइक गाँव समझ 6 बाइक है, इसी समय में 6 बाइक सुधर ना रहा है। इसके अलावा जो 10 बाइक है जो हमने शहर के जो चारों तरफ जो एंट्री एग्जिट पॉइंट थे जिनको नया हमने चेक पोस्ट बनाया है, 5 चेक पोस्ट बनाए गए, जिससे 5 चेक पोस्ट हर चेक पोस्ट में 2 व्हीकल हमने प्रोवाइड कराया है, जो नई बाइक 2 बाइक हर चेक पोस्ट में। इसके अलावा 2 बाइक हमने ट्रैफिक को दिया है ताकि कोई ट्रैफिक का एक बाइक दस्तर रहे, सूचना मिलने पर तुरंत कहीं जाम हटाया जा सके।
1: पलामू जिले की हैदरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह एक कंपनी के साइट पर गोलीबारी की योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने विस्तार से मामले पर प्रकाश डाला।
5: हैदरनगर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राहुल सिंह गैंग के द्वारा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है उससे द्वारा लेवी मांगने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है। SDPO हुसैनाबाद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और एक छापेमारी दल के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा जाने लगा, तो उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जब पुलिस के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया तो उनके पास बैग में पिस्टल रिकवर हुई, जिसमें कि 2 9mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
1: पलामू जिले की छतरपुर थाना क्षेत्र में चिल्हो खुर्द में पारा शिक्षक उदय सिंह की हत्या उसके साथ ही पारा शिक्षक सुरेंद्र यादव ने ही की थी। हत्या से पहले दोनों ने साथ बैठकर बियर भी पी थी। हत्या का कारण 25,000 के बदले 50,000 रुपया मांगा जाना था। छतरपुर के SDPO प्रशांत कुमार ने पूरे मामले की ब्रीफिंग की।
6: मृतक के पत्नी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसके बेस पे हम लोगों ने FIR दर्ज किया, सुरेंद्र यादव से पूछताछ किया और उसने अपने कन्फेशन में यह बताया। उसके साथ उदय सिंह ने हाथापाई किया था, तो इससे वह बहुत राहत था और इसी कारण उसने प्लान बनाकर कि इस घटना को कार्य।
1: झारखंड कैडर के वर्ष 2025 बैच के 7 भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक दल ने फील्ड दौरे के तहत पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क का दौरा किया। यहां उन्होंने बाघों के संरक्षण, मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की पूरी जानकारी ली। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 बस होने ही वाले हैं। ये वक्त है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा का। आज आप ये कार्यक्रम सुनेंगे हो भाषा में।

0: Bururia.
1: Radio re hokuruduru adivasi akhada ayumten sanam haga ondo misiko aling Soni Kumari ondo Lalita Deogam teking paete ikir jibunte ibil sibil johar. Haga ondo misiko asra minachi saben tik ge minabue. Acha dai tisingge ujuk namchi chai basate?
2: Iya tisingling ujuk kene inpadono isu guru gorom gya inpadon.
1: Endo inpadon gama kompeta terachika ge.
2: Inka gama do musing barsing bad do gama etan gya endio ando inpado pure ge gorom acha inpado.
1: Eta chiru ge gorom ge chip chip leka ge.
2: Iya chip chip leka ge gama do. Gama do wano wa lekin gorom do isu gorom tana. Bal bal koi minot tana.
1: Sari ge dai. Nen chandure isu gorom ge atkaro tana. Abu abu ya dhyan riketia esu dorkara suti lije ko tusintia sasang sunum ko joka komge ondo da nuitia dorkara pati panati lage do japao senre da ondo chatum ko editia dorkara ha gaondo misiko nikan huding huding kaji ko dhyan re abu abu dhyan rike deyebu tisinga kuru duru re durung ondo tutka jagar ko agutaraling
2: मांगते तिसिंगे टुटका जगर बालिका शिक्षा आज की आवश्यकता कोई हुनकुवा ओल पढ़ाओ इनामें दूर करा चीना में ची आर्थिक रूप ते सुमें कोई हुनको आत्मनिर्भर ची आर्थिक रूप ते ची आत्मनिर्भर सशक्त बाई को अनिकु अगर आको को पढ़ाओ रदो बल्कि नेन रेंगे रबंग रिया दुष्चक्र मिना इना को एते आको आयर पाको सेसेना उन्डो समाज सी राष्ट्र रिया साबिन लेकन विकास करे कोई हन को देंगा को एमिया कोई हन को पढ़ा जान रहे ने को बुगिन बुगिन नाला नौकरी करे को सेन दहिए ओंडो जा साबिन लेकन निर्णय अपन ते को इदी दहिए चिना मिंचे पढ़ा जान दो साबिन लेकन निर्णय जागे जान फैसला को पाए ना तो को इदी की जा
1: सारी के जी
2: ओंडो इसु पुरे न अखबार करे ची टीवी करे वीडियो करे वो नेल को तना ची पढ़ाओ तना ची नेन दिसुम रे कोई होन को अमृतियों दर इसु पुरे मिना चीना अमें ची आको अपना रा स्वास्थ्य रे आ ध्यान भूगे ते काको रिके दिए तरन चीना अमें ची ओल पढ़ाओ बनो ते जा जिताय को ताईने ओंडो जो को रियो अगर आको को कोई होन को पढ़ाओ जान रे दो इसु पुरे जो माँ जिनिस को यो मानिए तो को इसीन दे ये चिलके मांडी वा सपा सुतरे चिलके रिकेत या उत्तु को बाई इसी ने ता यार चिलके इनको अबुंग सपा ऐते मिना ची चिलके न लीजे को तुसिंग ऐंतिया साबिने को ऐतो या अंडो निया को स्वास्थ्य स्वास्थ्य चिलके ता

jang ko akringten hoko hati singkula silib ando sukuri ko sabin ko akring ko tana nen karan abua ote jibon sabi chabao tana ando abu ho hon ko jiu ando jantu kuwa jibon sankat re bitan tana buru bachao abhiyan ko chalao lagil hoko jagruk ko tia dorkar chi buru daru ko alachako get idaeka ondo nen abhiyan re bajar disum hoko hatu tala ren hoko sabin muli ren hoko nen abhiyan re ko judaon ka sabin muli ren hoko nen pait lagit ko japaan ka sengel lagit mandi utu lagit ita budi ko ko budi ka nen re sunget ko nirbar ko tain do abu buru chabawa chimiteng daru ma ujdo otana ente gel guna pura daru ko laga urai re do bu jao sirme tandi tired ko re daru ko bu laga re do hunang isu baniye e daru ko ete bayu suman ko begar joka komai ka ko ondo sahi bebar re ko agui ke bekar paiti lagit daru buru ko alo chako ma ada aeka ente ge baba chauli ko hobana buru abu e सुयल अंडो दा गोनों गोनोर आसड़ा तापमान को मीट बरबरी रिके रे अबु देंगाए देंगाबू तेने अबु लगिन हो अबु लगिन जेटे तुतकन रबंग अंडो गामा दिन रे दा समय रे एमाबू इना लगिन बुरु जरूरी तेना बुरु हातु आतु तेन दा के अवशोषित केते रिकया अंडो गामा दाओ जमा केते रिकया एन चनम ओते भीतर दा रे बढ़ोतरी होबाना एन दा गे जेटे सिंगी अबु पाइटी रे हुजुए दा ते अबु कबू रिंगे वा अंडो गामा दिपलंग बाड़ रे बाड़ रिया गोते को कोमुआ इना मेंते दारू को अबु इसु पुर लगावतिया दोरकर बुरु कार्बन डाइऑक्साइड अंडो कार्बन मोनोऑक्साइड लिकन अबू लगी नुकसान गैस को आए इडी केते अबू सुद पुयल सापा होयो इमाबुतेना नेले का बुरु अबू लगी निमिन जरूरी मिना बुरु को नेन कारंते इसु पुरे चबाओ तना बुरु कुआ इसु पुरे कटाई हुबाओ तना जा जा चिमितंगे हो को बुरु को गेडे तना दारु को गेट चबाय तना उवा को खर खाना को अंडो गे किसम किसम रिया पाइटी लगिन बुरु को इसु पुरे को गेट चबाय तना चासी बासी पाइटी लगिन कुंडी गोड़ा को लगिन बुरु सबिन को माए तना जाटा सान सकम उरी मेरोम को जोमे लगिन दुम्बू को लगिन सभी बुरु दारु को मा अड़ा चबाए तना बुरु इनकन चीज तना जो अबू जीबोन लगिन इसु पुरे रिना दोर करा बुरु अबुए हुडिंगेते हुडिंग अंडो मरंगेते मरंग सबिन चीज को आएगे पुरे तना अब बुरुई तेगे जोमा नुए पता सकम कर कर दारू जा सबिये बुरुई तेगे बु अगुई तेने बुरु गे अबु असुलकट बुए इना मेन बुरु अबु अबु तायते जानाओ काए इडिबु तना जानाओ काए असिबु तना उल्टा अबु इसु पुरे एमाबु तना बुरु पायते अबु सदाए गे री चीडा रेगे रेगे बु सेसेन तना अंडो ओ अबु मानवा को सदाए गे री चीडा रेगे बु ताइने अंडो पुदुगल जोरंग जोरंग जोका काबु हल उरे दये ना दो अबु इसु रासा रे मिना अबुए मेन दो अबुए हुजु पीढ़ी नेन सुख सुविधा नेन दारू उम्बुल बुरु को काको नामिया काको नेल

0: कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा अभी आप सुन रहे थे। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना हो भाषा में। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की कड़ी में 7:45 हो चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम सहिया का। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार हैं।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सही रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। आज के इस अंक में हम खास चर्चा करेंगे छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल के तहत छोटे बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने के बारे में। इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने में हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं हमारी पूर्णिमा बहन। जोहार पूर्णिमा बहन।
1: आपको भी जोहार चंपा मुनि दीदी। असल में बच्चों का सही पोषण ही उनके स्वास्थ्य का आधार होता है। अगर देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो भारी पड़ सकती है। इसलिए चंपा मुनि दीदी, आज के इस अंक में हम लोग छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल के तहत पोषण पर ध्यान देने के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे श्रोता भाई बहन के लिए यह जानना जरूरी है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सही देखभाल और पोषण बहुत जरूरी है। और इसलिए सहिया बहनें भी गृह भ्रमण के दौरान माताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे जन्म से लेकर 6 माह तक के बच्चे को केवल अपना दूध पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे को सभी पोषण तत्व मिलते हैं और उनके रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। सहिया बहनें माताओं या देखभालकर्ताओं से स्तनपान से जुड़ी जानकारियां देती हैं। यदि इससे संबंधित कोई समस्या हो तो उचित सलाह और सहायता भी देती है।
0: हाँ बहन, माँ का दूध तो सचमुच बच्चों के लिए अमृत होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार है, इसलिए जन्म के तुरंत बाद या 1 घंटे के अंदर नवजात को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जरूर मिलना चाहिए। माँ के दूध से बच्चे को भरपूर पोषण तो मिलता ही है, इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। एक बात और पूर्णिमा बहन, अगर बच्चे को दस्त हो तब भी उसे स्तनपान कराना चाहिए ताकि उसे सही पोषण मिलता रहे। सहिया बहने माताओं को स्तनपान कराने का सही तरीकों की जानकारी देने के साथ साथ ये भी बताती हैं कि 6 माह के बाद बच्चों को स्तनपान के साथ

0: कितना और किस प्रकार का पूरक आहार मिलना चाहिए ताकि बच्चों का विकास सही हो सके।
1: चंपा मुनि दीदी, बहुत ही बढ़िया बात समझाई। चलिए हम लोग बच्चों की गृह आधारित देखभाल के तहत शिशुओं के पोषण के महत्व के बारे में श्रोताओं को अधिक जानकारी दिलाने के लिए राज्य कार्यक्रम समन्वयक अकेम इंज जी से मिलते हैं।
0: आप ठीक बोल रही हैं पूर्णिमा बहन, फिर अच्छे काम में देर कैसी। चलिए अकेम इंज जी से मिल लेते हैं।

0: जोहार अके दीदी, अच्छा हुआ कि आपसे भेंट हो गई।
1: आओ पूर्णिमा, कैसी हो? बहुत दिन बाद नजर आई हो, कोई खास बात है?
0: हाँ कह दीदी, खास बात ही है। आज हम अपने सहिया रेडियो के श्रोताओं को HPYC कार्यक्रम के तहत बच्चों के पोषण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे लेने आए हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूछो पूर्णिमा, तुमको क्या पूछना है?
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल के तहत सहिया बहनें छोटे बच्चों में पोषण स्तर बढ़ाने के लिए किन मापदंडों पर कार्य करती हैं?
1: ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गृह आधारित देखभाल जो बच्चों की करनी है, 3 महीने से लेके 15 महीने के बच्चों का सहिया गृह आधारित देखभाल करती हैं। इसमें जो मुख्य विषय होता है कि उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग, उनका विकास कैसा हो रहा है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, ये 3 मापदंडों पर कार्य करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पोषण स्तर बढ़ाने के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के मापदंडों को क्यों लिया गया है। तो मैं बताना चाहूंगी कि पोषण बहुत मायने रखता है हमारे हर एक मनुष्य प्राणी के विकास के लिए, और बच्चों, छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल के समय में इसको बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया गया है।
0: अब यह बताएं कि छोटे बच्चों के पोषण के लिए स्तनपान कितना जरूरी है, और 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को किस प्रकार का पूरक आहार देना चाहिए?
1: स्तनपान जो बोलते हैं ना, स्तनपान अमृत तुल्य है, अमृत समान है। और जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर अगर बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, स्तनपान कराया जाता है, जैसे हम खिरसा दूध भी कहते हैं, तो बच्चे को, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉम होता है, तो बच्चे के शरीर में अपने आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। और उसके बाद जब बच्चा माँ के साथ स्तनपान में जुड़ा रहता है, तो वो माँ के साथ इमोशनली जुड़ता है या संवेदात्मक रूप से माँ के साथ विचारों में जुड़ता है। और इसमें माँ को जरूरी होता है कि अगर वो उससे बातचीत करती है और बातचीत करके स्तनपान कराती है, तो बच्चे का लगाव माँ के प्रति बढ़ता जाता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक हम स्तनपान बच्चों को कराते हैं, कोई ऊपरी आहार, कोई पानी नहीं देते हैं, तो वो बच्चे आगे चल के बहुत अधिक तंदुरुस्त बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भी। और जिन बच्चों को स्तनपान कराया जाता है, वो बच्चे इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से लड़ने की ताकत उनको, मानसिक समस्याओं से भी लड़ने की ताकत उनको होती है। 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को जब पूरक आहार देना होता है, तो ऐसा नहीं है कि जब वो पूरक आहार खा रहा है कहके स्तनपान छुड़ा देना है। बच्चे को कम से कम 2 साल तक स्तनपान भी कराना है 6 माह के बाद भी, और उसके साथ साथ पूरक आहार में जो सुपाच्य भोजन है, जो बच्चे उसको पचा सकते हैं, वैसे खाना देना, दे करके आरंभ करना है उसका पूरक आहार। जैसे कि पतला खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ, सूप हुआ, दाल का पानी हुआ, उससे शुरू करते हुए फिर ठोस आहार की ओर लाना है।
0: 6 से 12 महीने के बच्चे को सही मात्रा में पूरक आहार मिले, इसके आकलन में MCP कार्ड से किस प्रकार की मदद मिलती है?
1: मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, मतलब MCP कार्ड, मतलब कि जच्चा बच्चा कार्ड को अगर आप खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें टीकाकरण के बारे जानकारी है, बच्चे के वजन के बारे जानकारी है, इसके साथ ग्रोथ चार्ट भी वहां पे है, और पूरक आहार के लिए उसमें देखेंगे कि फोटो बना हुआ है कि अगर 6 महीने का बच्चा है तो एक कटोरी बनी हुई है, एक चम्मच बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कितने समय, कितने अंतराल में क्या क्या देंगे, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, वैसा बना हुआ है, जो कि अगर माता पिता पढ़ने किसी कारण से अशिक्षित है, तो पिक्चर के माध्यम से भी सहिया उन्हें बताती है कि पूरक आहार 6 महीने से लेके 12 महीने तक, छठवें महीने में कैसे देना चाहिए, सातवें महीने में कैसे देना चाहिए, आठवें महीने में कैसे देना चाहिए, इसके साथ पिक्चर भी बना हुआ है कि आप आधा अंडा दीजिए, पूरा अंडा दीजिए, और दूध का भी ग्लास ऊपरी आहार में दिया हुआ है। तो वो पिक्चर के माध्यम से, एमसीपी कार्ड के माध्यम से इसका आकलन किया जा सकता है।
0: सामान्य रूप से कई छोटे बच्चों में अनीमिया और कृमि की समस्या होती है, इसे नियंत्रित करने के लिए HBYC के तहत क्या प्रावधान है?
1: सबसे बड़ी चीज है कि एनीमिया खून की कमी है, और खून की कमी के लिए जब HBYC में छठवां महीना जब आता है, तो बच्चे के लिए छठवें महीने से जो हम भोजन देते हैं उसमें लौह तत्व की भी मात्रा आनी चाहिए, जैसे जो लोकली अवेलेबल हमारे यहाँ जैसे मड़ुआ है, तो मड़ुआ का पॉरिज बना के माताएं बच्चों को खिला सकती हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ एनीमिया को दूर करने के लिए साग सब्जियों को भी अच्छे से उबाल करके, मैश करके उसको भोजन के साथ में बच्चों को खिलाया जा सकता है। और सिरप भी है, जो IFA सिरप है, बच्चों के लिए एनीमिया को दूर करने के लिए दिया जाता है, जो HBYC के विजिट में सहिया देखती है कि माताएं प्रदान करें। कृमिनाशक के लिए बच्चों को जो कोशिश की जाती है कि माताओं को सिखाया जाता है कि जब बच्चे नीचे गिरी हुई चीजों को उठाकर ना खाएं, खाना बनाने से पहले, खाना खिलाने से पहले माताओं को सिखाया जाता है कि अपने हाथ को बेहतर रूप से धोएं, बच्चों को भी हाथ धोने के लिए, स्वच्छता के लिए सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ कृमि की समस्या होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से उपचार के लिए भी सहयोग करने में सहिया माताओं की सहायता करती हैं।
0: आखिर में यह जरूरी बात बतलाएं कि 5 अतिरिक्त गृह भ्रमण के दौरान सहियाओं को माताओं या देखभालकर्ताओं से पोषण संबंधित किन प्रमुख बातों को जानना जरूरी होता है?
1: सबसे पहली बात है कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, और जन्म से लेके 6 माह तक केवल माँ का दूध स्तनपान, ये सबसे जरूरी बात है। दूसरी बात है कि छठवें महीने से ऊपरी आहार, स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार, ऐसा आहार जिसे बच्चे पचा सकें। तीसरी बात है कि सरल और सुपाच्य भोजन, जिसमें तिरंगा भोजन कहते हैं, जिसमें दाल भात और सब्जियां, भात का रंग सफेद है, दाल का रंग पीला है, और उसके बाद सब्जियों का रंग हरा है, तो माताओं को ये सिखाना है कि तिरंगा भोजन जो सरल हो और उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, परंतु छोटे बच्चों को उचित मात्रा में हमें तेल और घी भी खिलाना है जिससे मानसिक विकास हो सके। सही मात्रा में बच्चों को हमें, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो छोटे बच्चों को अंडा, और उसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको भी खिलाने की ज़रूरत है, तो ये सिखाना है। चौथी जो बात है कि जो हमारे आसपास में ही मिलने वाले भोजन है उसको बच्चों को खिलाना है, ना कि सेरेलेक आप डब्बा बंद लेकर के खिलाइए, पर आप जो आपके पास अवेलेबल दाल है, चना है, मूंगफली है, जो फल है, मौसमी फल, उन सबको

0: बच्चों को सही मात्रा में सही रूप से खिलाना, और पांचवा चीज है पोषण के लिए कि समय से टीकाकरण, ताकि सभी बीमारियों से बच्चे रहें और बच्चे सुस्वस्थ रहें।
1: अक्षय मेंजी जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतनी व्यस्तता के बीच भी समय निकालकर बच्चों के पोषण से जुड़ी इतनी ज़रूरी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं के साथ साझा की।

0: पूर्णिमा बहन, सही में बहुत उपयोगी जानकारी मिल गई। इससे माताएं तो जागरूक होंगी ही, पूरा परिवार भी जागरूक होगा।
1: चंपा मुनि दीदी, यहाँ एक और बात का जिक्र करना जरूरी है। राज्य भर की सहिया बहनों को कुपोषण के उपचार में सहयोग करने के लिए 150 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जबकि अति गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में रेफर करने के लिए 50 रुपए मिलते हैं। है ना बढ़िया बात?
0: बिल्कुल पूर्णिमा बहन, प्रोत्साहन राशि से सहियाओं का आत्मविश्वास ही नहीं, काम के प्रति लगन भी बढ़ता है।
1: अब चलते चलते अपने श्रोता भाई बहन को बता दे कि आप स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
0: तो प्यारे श्रोता भाई बहन, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे जन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत।
1: जोहार।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है। प्रायोजित कार्यक्रम सहिया अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 8 बज रहे हैं दोस्तों। ये वक्त है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए, क्या आपने
4: रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। घर के बाहर ढूंढते रहते हैं दुनिया, और घर के अंदर बेकरारी रहती है।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: लहजे याद रहते हैं, बातें याद रहती हैं, तारीखें भूल भी जाऊं अगर मुलाकातें याद रहती हैं।

0: was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे अर्जुन जी चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
3: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता

0: और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
7: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं
6: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
7: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hogi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे
6: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
7: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी हेल्थ एजुकेशन टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे
6: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis.
7: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बुहरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रूपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल कदर तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ्त की क़यादत करेंगे और अवाम के लिए जिंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में है, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल GDP के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल GDP की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज़ की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मनसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत BSF और SSB करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से

सुनहरी यादें, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। देखा हमने लम्हों को सालों में गुजरते हुए, देखा हमने खुद को समय की धार में बहते हुए, देखा हमने अक्सर ही गुजरे समय का बाइस्कोप कई बार, बिना कोई बटन दबाए, बिना बिजली मुझ में चलता रहा कई बार ये बाइस्कोप। साथ लेकर चलते हैं हम यादें अपने वर्तमान में, जा कहाँ पाते हैं ये लम्हे, रहते हैं हमेशा ध्यान में, खासकर तब जब रात की तन्हाई हो और कोई वो सब बातें बोल रहा हो जो आपने जिया हो, और बच पड़ा हो वही गाना जो सिर्फ गाना कहाँ होता है, उससे तो लोग जुड़े होते हैं, वक्त होता है और कहीं खोया हुआ हमारा ही वजूद होता है।

क्या कहें कितना डूबे थे हम, क्या कहें उन्हीं यादों से कभी ना उबे थे हम। अभी सोच कर बस हंसी आई, यूं ही तुम्हें बस देखते रहना क्या था, देख कर बस मुस्कुरा देना क्या था, कुछ कहना नहीं कुछ पूछना नहीं, बस हर सोच का किसी कोने में चुपचाप बैठ जाना क्या था, और कभी बस उनसे गुजर कर जाना क्या था।

वो नोक झोंक वो शरारतें, तुझको देखने से मिलती वो राहतें, तुम्हारी तकलीफ को महसूस कब कैसे करने लगी, मैं खुद को इतना कितना समझने लगी। 100 कली, कुछ फूल और कुछ पेड़ हैं, इससे इतर बाग का किस्सा कोई बताए मुझे। मैं हूँ इंतज़ार में एक शाख की तरह, कोई चिड़िया मुझ पे बैठे हिलाए मुझे। कोशिश भी करके देख लिया, मुमकिन नहीं कि कभी भी भूल पाए तुझे।

वो आंखें थी कि मेरा करार थी आंखें, मेरे लिए बस उसका इंतज़ार थी आंखें। कुछ बोला न समझा, बस जाना यही मेरा पूरा एतबार थी आंखें। दुनिया बस यही कहती रह गई, आंखें आंखें न थी बस प्यार थी आंखें। जुबान ना कहते रह गए और आंखें थी कि इकरार थी आंखें।

कभी ऐसा हुआ है दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है? एक दिन में न जाने कितने भावों से होकर गुजरते हैं हम। कभी दोस्तों के साथ रहे, साथ में लंच किया, डिनर किया, हंस रहे थे ना ठीक ठाक, फिर अचानक कुछ याद आता है, जैसे किसी ने अचानक स्टैच्यू बोल दिया हो। रुक जाता है सब कुछ, फिर वो झूठी हंसी जो बस दिखाने के लिए होती है। औरों को क्या हुआ, किसकी याद आ गई आपको?

0: प्यार नहीं एक कसम की बात थी, तुमसे खाई नहीं गई, हमसे खिलाई नहीं गई। शिकवों का क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये भी कि आईने को आईने की शक्ल दिखाई नहीं गई। सितम ये भी क्या कम है अगर हो रहा, मेरे ही कानों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं गई। कुछ चीज़ें कभी न बदलने वाली रह गईं, कुछ चीज़ें कभी न बदलने वाली रह गईं। हमारा प्यार न बदला, तुम्हारी बेवफाई नहीं गई।
1: ये गाना तुमने क्यों गाया? नहीं, जैसे किसी ने फिर से पुराना

कार्यक्रम सुनहरी यादें अभी आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो चुके हैं दोस्तों। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो चुके हैं। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज के कलाकार हैं उस्ताद अली अकबर खां। प्रस्तुत है सरोद पर राग रामदासी मल्हार में एक रचना।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आपने उस्ताद अली अकबर खां द्वारा राग रामदासी मल्हार में सरोद वादन का आनंद लिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। ये वक्त है हिंदी और अंग्रेजी में समाचार का हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं

0: योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत में तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।